अभी आप उषा अमोनकर की आवाज़ में ये भजन सुन रहे थे, और अब आइए सुनते हैं दीपाली और सोहेल की आवाज़ों में ये भजन।

0: लक्ष्मी शंकर के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करते हैं टिकाऊ ग्राम विकास के बहुमूल्य संसाधन सुबबूल के बारे में। घटते वन क्षेत्र, क्षीण होती मृदा तथा उर्वरा शक्ति और बदलते मौसम विश्वव्यापी परिवर्तन के रूप में आने वाले वर्षों में हमारे लिए एक गंभीर चुनौती है। भारत जैसे अति विशालकाय जनसंख्या के देश में ये समस्याएं और जटिल हो जाती हैं, जहां प्रतिवर्ष अन्न, लकड़ी, कागज, लुगदी आदि की निरंतर बढ़ती मांगों से वनों का लगभग सफाया होता जा रहा है, भूमिगत जल स्तर का अत्यधिक दोहन हो चुका है और मृदा उर्वरकता कम होती जा रही है। देश को काष्ठ आधारित उद्योगों जैसे पेपर, लुगदी, प्लाईवुड, खेल के सामान आदि के आयात के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। किसान भाइयों, वनों की बहुलता ईंधन और चारे की पूर्ति के लिए आवश्यक है। इनसे जहां एक तरफ पशुओं को चारा सुरक्षा और पोषक तत्व मिलता है, वहीं दूसरी तरफ जलाऊ ईंधन, मृदा संरक्षण और उर्वरता के साथ पर्यावरण संतुलन भी बढ़ता है। वर्तमान में खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग से पहले से ही कम खेती योग्य भूमि को और कम नहीं किया जा सकता। अतः भविष्य की चारा, लकड़ी, कागज, लुगदी और पर्यावरण की दूरगामी जरूरतों को ध्यान में रखकर बहुआयामी और उद्योग पूरक वृक्षों का चुनाव तथा त्वरित प्रचार प्रसार की महत्ता बहुत ज्यादा है। सुबबूल एक ऐसा ही वृक्ष है जिसको विभिन्न प्रबंध परिस्थितियों, उपयोगों आदि से संबंधित किया जा सकता है। सुबबूल अत्यधिक तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है और काटने पर अच्छे कल्ले निकलते हैं जो कि बहुत ही तीव्र गति से बढ़ते हैं। ग्रामीण भारत और देश के अन्य भागों में पाए जाने वाले वृक्षों जैसे कि आम, महुआ, नीम, सिरिस, देशी बबूल, अंजन आदि एक वर्ष की अवधि में काटने पर पुनः एक वर्ष में विकसित होकर ईंधन और चारा देने में और इस तरह की कई कटाई देने में सक्षम नहीं है और सुबबूल की यही विशेषता इसको ईंधन और चारे के लिए सर्वोपयुक्त बनाती है। वर्षों के अनुसंधान और अनुभवों के पश्चात सुबबूल को चारा, ईंधन, लुगदी, बाड़ सामग्री, कार्बनिक खाद, लीफ मील आदि की अल्प और दीर्घकालिक प्राप्ति के लिए उपयुक्त माना गया है। किसान भाइयों, सुबबूल विभिन्न जलवायु, मृदा और प्रबंध परिस्थितियों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। सुबबूल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की विशेष क्षमता के कारण यह हल्की भूमि के लिए भी उपयुक्त है, विशेषकर नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्रों में जहां पर अधिकांश फसलें नहीं उग सकती। सुबबूल की गहरी जड़ें होने से सूखा सहन करने की अच्छी क्षमता है, जिसके कारण देश के अनेक राज्यों में इसके फैलाव की अच्छी संभावनाएं हैं। हमारे इन द्वीपों में भी सुबबूल को लगाकर आप लाभान्वित हो सकते हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
1: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केशगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारे संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवोभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंचे। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिसे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। आपसे थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया

0: exception. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के श्रीविजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार्निकोबार की यात्रा पर आज सवेरे 8 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल रविवार 19 तारीख को शाम 4 कार्निकोबार से लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी भारत सीमा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर आज रात 8 श्री विजयपुरम से चलेगा और इसकी वापसी कल 19 तारीख को दोपहर बाद 2 डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11 श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान आज दोपहर 1 शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 2:30 स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी हडवे स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान आज दोपहर बाद 2 स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी आज ही दोपहर बाद 3:30 पर। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा आज दोपहर बाद 2:30 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज शाम 5 श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान कल 19 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। और अब सुनिए कल रविवार 19 तारीख को जाने वाले जलयानों के बारे में। एमवी कैंबल में लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रविवार 19 तारीख को सवेरे 8 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान कल ही रात 9 लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल रविवार 19 तारीख को प्रातः 6 श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 रंग से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा कल 19 तारीख को प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल 19 तारीख को प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर कल 19 तारीख को दिन के 11 श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान कल ही दोपहर 1 शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 2:30 स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल 19 तारीख को दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही दोपहर बाद 2 स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी कल ही दोपहर बाद 3:30 पर। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी रानी चंगा कल रविवार 19 तारीख को दोपहर बाद 2:30 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। और एमवी हडवे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल 19 तारीख को शाम 5 श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान अगले दिन 20 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा।

अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:15 हुए हैं।

0: अब प्रस्तुत है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का इंद्रधनुष कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त गीता। दोस्तों, कार्यक्रम में आज बातें कहानी की। कहानी केवल मनोरंजन नहीं होती, बल्कि अनुभवों का आईना होती है। ये हमें हंसाती है, रुलाती है, सोचने पर मजबूर कर देती है और कई बार जीवन जीने की नई दिशा भी देती है। वैसे दोस्तों, प्यार भरी कहानियां किसे नहीं पसंद।

व्यक्ति के पास अपनी एक कहानी है। किसी ने संघर्षों से सपनों तक का सफर तय किया, तो किसी ने अपनों को खोकर भी मुस्कुराना सीखा, तो किसी ने दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ली।

कहते हैं हर इंसान की जिंदगी एक किताब है और हर नया दिन उसका एक पन्ना। कुछ पन्नों पर मुस्कान लिखी होती है तो कुछ पर आंसू, कुछ कहानियां शब्दों में बयां हो जाती है तो कुछ आंखों की खामोशी में छिपी रह जाती है।

0: दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी एक कहानी ही तो है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे लिखता है तो कोई उसे जीता है। इसलिए दोस्तों, अपनी कहानी सिर्फ लिखे नहीं बल्कि उसे भरपूर जिए। इसी विचार के साथ अब दीजिए कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रामचरित मानस गान की 303 कड़ी।

लंका में श्री राम के वानरदीज सेनानियों ने उत्पात मचा दिया है। मंदोदरी की अपने पति रावण से प्रार्थना है कि वो विषय भोग छोड़कर उन प्रभु की शरण में चला जाए। कौशलाधीश की दया उसे प्राप्त हो जाएगी।

अभी आप रामचरित मानस गान की 303 कड़ी सुन रहे थे। गायिका थी शोभना राव तथा संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 6:40 हुए हैं। वतन के गीत कार्यक्रम के तहत श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कुछ देश गान।

अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के तहत कुछ देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी जानकारी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। और अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद सवेरे 7:00 सुनिए जन सूचनाएं, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा 7:05 पर। सवेरे 7:15 पर आप देश गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुन पाएंगे देशरागिनी, जबकि आप विविध भारती मुंबई से सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो डॉक्टर 7:30 पर, जिसमें विषय रहेगा दस्त पर विराम, स्वस्थ बचपन का पैगाम। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर प्रतिभा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर कलाकार होंगे उस्ताद अहमद हुसैन व मोहम्मद हुसैन। सवेरे 9:00 आनंद लीजिएगा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तरानी सुहाने का। सवेरे 9:10 पर पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ की 10वीं कड़ी हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:40 पर TR महालिंगम का कर्नाटक शैली में बांसुरी वादन आप सुन पाएंगे। सवेरे 10:00 आनंद लीजिएगा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम कशिश का। गीत गुंजन कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए दिन के 11:00। पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत अतीत का आनंद आप ले पाएंगे 11:30 पर। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम में श्रोता कुछ गीत सुन पाएंगे। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम होगा। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे सीमा शर्मा और मन्ना डे। फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का लुत्फ उठाइए 1:30 पर। और दोपहर 12:30 मौसम की जानकारी के बाद हमारे प्राइमरी चैनल पर पहली सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा नॉनस्टॉप म्यूजिक और 3:30 पर कार्यक्रम होगा सैनिकों के लिए। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम से, जिसमें सूचनाओं के अलावा आप कुछ गीत सुन पाएंगे। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 14वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी शाम 4:30 पर। शाम 4:40 पर हम आपको कार्यक्रमों के विवरण से अवगत करवाएंगे। बहारों की शाम फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का आनंद आप ले पाएंगे शाम 4:45 पर। शाम 5:00 श्रोता तमिल कार्यक्रम सुन पाएंगे। 5:10 पर पॉडकास्ट सीरीज पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी की 33वीं कड़ी हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। बांग्ला कार्यक्रम में 5:30 पर बुजुर्ग नागरिकों के लिए कार्यक्रम होगा। संध्या 6:00 किसानवाणी कार्यक्रम में प्रगतिशील कृषक शिवरतन से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी। आमने सामने कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 6:30 पर। संध्या 6:45 पर प्रकाश शुक्ला की लिखी झलकी आप सुन पाएंगे यस सर। संध्या 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम पर जन सूचनाएं। दिल ने फिर याद किया फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए 7:20 पर। संध्या 7:30 पर युवाणी के तहत कार्यक्रम होगा ऐसा भी होता है तथा अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस पर चर्चा भी आप सुन पाएंगे। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का आनंद आप ले पाएंगे रात 8:30 पर। सुनिए रोजगार समाचार तत्पश्चात गौरव गान, जबकि रात 10:00 आप विविध भारती मुंबई से सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती और रात 10:00 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में देवव्रत मिश्रा से सितार वादन आप सुन पाएंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: तति रेलस्थानकानाम् उद्घाटनम् अकरोत्। एतेषां स्थानकानाम् अमृतभारतस्थानकयोजनायाः अन्तर्गतम् आधुनिकीकरणं जातम्। एषा योजना विश्वस्य बृहत्तमासु स्थानकपुनर्विकासयोजनासु अन्यतमा अस्ति। प्रायः 70-75 कोटिरूप्यकाणां व्ययेन विकसितानि एतानि स्थानकानि यात्रिसौविध्यैः समलङ्कृतानि सन्ति। पुनर्विकसितेषु स्थानकेषु पंजाबस्य जालंधर कैंट, SAS नगरम, श्री मुक्तसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब इत्येतेषां स्थानकानां समावेशः अस्ति। तदतिरिक्तं गुजरात, ओडिशा, दक्षिण रेल क्षेत्राणां अनेकानि स्थानकानि अपि अत्र सम्मिलितानि सन्ति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री करटोली अम्बाला रेलसेवां, अमृतसर वाराणसी संत रविदास एक्सप्रेस चेत्येताभ्यां हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। ह्यः जालंधरे प्रधानमंत्रिणा लोकार्पितानि, राष्ट्राय समर्पितानि च एतानि पुनर्विकसितानि स्थानकानि एते द्वे रेलसेवे च रेलमार्गावसंरचना परियोजनानां भागाः सन्ति। एतासां परियोजनानां व्ययः 70-75 कोटिरूप्यकाधिकः अस्ति। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमंत्री अवदत् यत् 75 पुनर्विकसितरेलस्थानकानाम् उद्घाटनं भारतीयरेलविभागस्य विगतेषु कतिपयवर्षेषु अभवत्, तीव्रपरिवर्तनस्य द्योतकं च अस्ति।
1: केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना, और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: पूर्वाह्ने एव प्रधानमंत्री हरियाणा राज्यस्य जिंद रेल स्थानकात् भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन इत्यनेन चालित रेलयानाय अपि हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। एतत् रेलयानं जिंद सोनीपत रेलस्थानकयोः मध्ये सञ्चरिष्यति, अथ 90 किलोमीटरमिता दूरता प्रायः द्विहोरायां पूर्णं करिष्यति। वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः ह्यः एस्टोनियादेशस्य राजधान्यां ताल्लिन् नगरे तत्रत्य विदेशमन्त्रिणा मार्गुट साह्यकना इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। उभाभ्यां नेतृभ्यां भारत एस्टोनिया देशयोः मध्ये व्यापार, निवेश, अंकिकीय परिवर्तन, साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी चेत्येषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य सुदृढीकरण विषये विचार विमर्शः कृतः। अनन्तरं साक्यकना इत्यस्य उपस्थितौ मन्त्रिणा भारत एस्टोनिया व्यापार मञ्चम् अपि अभिसम्बोधितम्। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः गतरात्रौ पश्चिमबंगालराज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां सिलिगुड़ी इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। सिलिगुड़ीनगरस्य बागडोगरा विमानस्थानके आगमनावधौ पश्चिमबंगालस्य मुख्यमन्त्रिणा सुवेन्दु अधिकारिणा तस्य स्वागतं विहितम्। श्रीशाहः अद्य जुमागाछ नगरस्य सीमाचौकी इत्यत्र VSF इत्यस्य 18वां बटालियन इत्यस्य भ्रमणं करिष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय क्रीडिका तथा द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः अद्य प्रातः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः महिला एकलस्य उपांत्य चक्रीय स्पर्धायां चीन देशस्य चेन युफेई सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7 बजे हैं जन सूचनाएं।

और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 90% और न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.8 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:04 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:47। और अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी उड़ान भरेगा आज दिन के 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज सवेरे 7:15 पर देश गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा देश रागनी, जबकि आप विविध भारती मुंबई से सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो डॉक्टर 7:30 पर, जिसमें विषय रहेगा दस्त पर विराम, स्वस्थ बचपन का पैगाम। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर प्रतिभा। सवेरे 9 बजे आप आनंद ले पाएंगे फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का।

संध्या 6:45 पर प्रकाश शुक्ला की लिखी झलकी आप सुन पाएंगे। यस सर। संध्या 7:30 पर युवाणी के तहत कार्यक्रम होगा, ऐसा भी होता है। इसी के साथ ही जनसूचनाएं समाप्त हुई।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। इस अंतराल के बाद
1: भाइयों और बहनों, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपने नसबंदी कराई है, क्या आपने IUD लगवाई है, क्या आप कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं, क्या आप गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करते हैं, और ऐसे ही कई तरीके हैं परिवार नियोजन करने के, तो फिर इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अब जनता को भाषण दो तो बस तालियां बजा देती है। अब आप तो काम की बात सुनिए, परिवार नियोजन को अपनाइए, अपने बच्चों में अंतर लाइए, परिवार को सीमित रखिए, क्योंकि हमारा आज का फैसला आपके बच्चों का भविष्य बदल सकता है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल DK जोशी ने कल परिवहन विभाग की 3 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, लोकतंत्र में मीडिया सबसे महत्वपूर्ण हितधारक है। कला एवं संस्कृति निदेशालय

ओडिशी नृत्य की बुनियादी अवधारणाएं और अभ्यास विषय पर कार्यशाला का आयोजन करेगा और बिडनाबाद में कल निशुल्क बहु विशेषज्ञता स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी ने कल निवास में परिवहन विभाग द्वारा मंगाई जा रही कुल 17 बसों में से 3 नई बसों को पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इन 3 नई बसों में मध्योत्तर अंडमान ज़िले में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को और मजबूत करने तथा बसों की कमी को दूर करने के लिए रंगत, मायाबंदर और डिगलीपुर की राज्य परिवहन सेवा इकाइयों में तैनात किया जाएगा। चरणबद्ध खरीद योजना के तहत अगले सप्ताह के भीतर 6 और नई बसें आने की उम्मीद है, जबकि शेष 8 बसें इस महीने के अंत तक मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन में सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 350 से अधिक मीडिया पेशेवरों को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य मीडिया के साथ एक मजबूत साझेदारी बनाना और पत्रकारों को देश के चुनावी प्रक्रियाओं की बेहतर समझ से लैस करना है। मीडिया को लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हितधारक बताते हुए उन्होंने पत्रकारों से सटीक, जिम्मेदार और तथ्य आधारित चुनावी रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने में निर्वाचन आयोग के साथ भागीदारी करने का आग्रह किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जनवरी माह में शुरू किए गए आयोग के एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म ACNET और विशेष गहन पुनरीक्षण पर प्रकाश डाला। उन्होंने आगे बताया कि देश भर में मतदाता सूचियों के निरंतर अद्यतनीकरण और सत्यापन में लगभग 12 लाख बूथ स्तर के अधिकारी और 15 लाख बूथ स्तर के एजेंट लगे हुए हैं। द्वीप समूह के दौरे पर आए गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉ एस शांता कुमार, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई के कुलपति प्रोफेसर डॉ दिलीप उके, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला की कुलपति प्रोफेसर डॉ प्रीति सक्सेना और उनके साथ आए GNLU के रजिस्ट्रार एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज हॉस्टल एलुमनी एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के सदस्य डॉ नितिन मलिक ने कल लोक निवास में उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल DK जोशी से शिष्टाचार भेंट की। ये सभी पदाधिकारी कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की आम सभा की बैठक के सिलसिले में द्वीप समूह के दौरे पर हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को गलत बताया है जिनमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निवेश प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इन दावों में कहा गया है कि 22,000 रुपये के शुरुआती निवेश पर नागरिकों को हर महीने 25 लाख रुपये की कमाई की गारंटी दी जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये वीडियो फर्जी है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार किया गया है। अंडमान निकोबार पुलिस नशा मुक्त अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दृष्टिकोण को साकार करने और युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग तथा अवैध तस्करी के खतरे से बचाने के लिए निरंतर जागरूकता अभियान चला रही है। इस संबंध में विभाग ने द्वीप समूह से प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों से जनसेवा संदेश के रूप में अपने प्रत्येक संस्करण के ईयर पैनल या फुटनोट में नशा विरोधी जागरूकता नारा प्रकाशित करने का अनुरोध किया है। संदेश में मानस, राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 और एंटी नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन के समर्पित मोबाइल नंबरों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कला एवं संस्कृति निदेशालय उत्कल समाज के सहयोग से कल चिन्मय मिशन में ओडिशी नृत्य की बुनियादी अवधारणाएं और अभ्यास विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। कार्यशाला सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को ओडिशी

के नृत्य की मौलिक अवधारणाओं, तकनीकों, सौंदर्य शास्त्र और अभिव्यंजक तत्वों से परिचित कराना है। इसमें छात्र, नर्तक, शिक्षाविद, सांस्कृतिक संगठन शामिल हो सकते हैं। ओडिशी भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है, जो अपनी भव्यता, लयात्मकता, गति और समृद्ध अभिव्यंजक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक प्रतिभागी उत्कल समाज से संपर्क कर सकते हैं। सेवा भारती द्वारा नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सहयोग से कल सुबह 9:30 बजे से गैरा शर्मा जिला अस्पताल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बिडनाबाद में निशुल्क बहुविशेषज्ञता स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। इस निशुल्क चिकित्सा शिविर में विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञ अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। सभी जरूरतमंद मरीजों से इस अवसर का लाभ उठाने को कहा गया है। पर्यटन विभाग की ओर से 3 दिवसीय द्वीप मॉनसून खाद्य एवं संस्कृति महोत्सव 2026 का दूसरा संस्करण कल प्रदर्शनी मैदान में शुरू हुआ। इस महोत्सव का उद्घाटन प्रशासन की आयुक्त सह सचिव चंचल यादव ने मुख्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया। मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने स्टॉलों का दौरा किया। महोत्सव में कृषि, जनजातीय कल्याण, उद्योग, मत्स्य, समाज कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, पुलिस और श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद ने भी स्टॉल लगाए हैं, जो अपने प्रमुख कार्यक्रमों, जन कल्याणकारी सेवाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। कल तक चलने वाला ये महोत्सव शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक जारी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निजी विश्वविद्यालय विनियमन 2026 के प्रारूप अधिसूचना को हितधारकों से दावे, आपत्तियां और टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। दावे, आपत्तियां या टिप्पणियां इस प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों के भीतर सहायक सचिव उच्च शिक्षा के पास जमा किए जा सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2026 सत्र के लिए सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों में नए प्रवेश तथा पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। इच्छुक विद्यार्थी इग्नू की वेबसाइट समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। द डेली टेलीग्राम्स ने निर्वाचन आयोग द्वारा अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन आयोजित कर निर्वाचन प्रक्रिया में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालने के समाचार को अपनी बड़ी खबर बनाई है। द्वीप समाचार ने इस खबर के अलावा उपराज्यपाल द्वारा परिवहन विभाग की 3 नई बसों के प्रथम जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के समाचार को प्रमुखता दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रशासन के विभिन्न पदों में भर्ती के आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने की मांग के समाचार को द अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी में जगह मिली है। इन्फो इंडिया ने कदमतला क्षेत्र में अनियमित बिजली सप्लाई को देखते हुए निवासियों द्वारा NH4 जाम करने की घोषणा के समाचार को, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने डॉलीगंज चौक पर बाइक रेस के दौरान एक महिला के घायल होने के समाचार को प्रमुखता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल DK जोशी ने कल परिवहन विभाग की 3 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, लोकतंत्र में मीडिया सबसे महत्वपूर्ण हितधारक है। कला एवं संस्कृति निदेशालय कल ओडिशी नृत्य की बुनियादी अवधारणाएं और अभ्यास विषय पर कार्यशाला का आयोजन करेगा और बिडनाबाद में कल निशुल्क बहुविशेषज्ञता स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

देश रागिनी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जब भी देश की बात आती है हमारे दिलो दिमाग जोश और देशभक्ति से भर जाती है। फिर तो देश और उसके सम्मान के आगे कुछ नहीं सोचता और फक्र से हमारा सर ऊपर उठाकर तिरंगे को सलाम करता है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है।

श्रोताओं, देशभक्ति वह भावना है जो हमें अपनी मातृभूमि से जोड़ती है। देशभक्ति का मतलब देश के प्रति प्रेम और उसकी भलाई के लिए जीना होता है। देश के खातिर मर मिट जाएं, ये प्रण आज हम अपनाएं। सरहद पर जो वीर खड़े हैं उनकी शान बढ़ाएं हम। रक्त की हर बूंद से अपने तिरंगे को सजाएं हम। एकता और अखंडता की मिसाल से अपने देश को आगे बढ़ाएं हम।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोनिंग कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।
1: हेलो डॉक्टर।
2: हेलो डॉक्टर।

0: हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है दस्त पर विराम, स्वस्थ बचपन का पैगाम। दस्त यानी डायरिया बच्चों में होने वाली एक आम लेकिन गंभीर समस्या, जिसके सही समय पर जानकारी तथा स्वच्छता अपनाकर इसके खतरे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जी हाँ श्रोताओं, आज हम इसी विषय से संबंधित बातें करेंगे। विषय है दस्त पर विराम, स्वस्थ बचपन का पैगाम। इस विषय से संबंधित प्रश्नों के जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिभा। मैम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारा नंबर है 232540। नंबर एक बार फिर सुन लें, 232540। हमारा एसटीडी कोड है 03192। मैम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। मैम, सबसे पहले तो आप श्रोताओं को बताइए कि दस्त यानी डायरिया क्या है और ये बच्चों में क्यों होता है।
1: सबसे पहले मेरे श्रोतागण को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रतिभा, बाल रोग विशेषज्ञ, यहाँ पे आपको डायरिया यानी कि दस्त, जिसे आम तौर की लैंग्वेज में लूज मोशन भी बोला जाता है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। डायरिया यानी बार बार पतला और पानी जैसा दस्त, अधिकतर ये वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, पैरासाइट या दूषित पानी और भोजन के कारण होता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है कि उनकी इम्यूनिटी अभी कम विकसित हुई होने के कारण समय पर ORS और पर्याप्त तरल देने से अधिकांश बच्चों में ये ठीक भी हो जाता है।
0: मैम, ये छोटे बच्चों को दस्त होने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं?
1: मुख्य कारण आमतौर से गंदा पानी पीना, दूषित भोजन खाना, हाथों की सफाई ना करना, खुले में शौच, मक्खियों द्वारा संक्रमण फैलना, वायरस या बैक्टीरिया का संक्रमण। इसीलिए हमेशा साफ पानी, स्वच्छता, हाथ धोने की आदत बहुत ज़रूरी है।
0: जी, दस्त के शुरुआती लक्षण क्या हैं और किन संकेतों को गंभीर माना जाता है?
1: मैं अपने श्रोतागण को बार बार यही बताना चाहूँगी, शुरुआती लक्षण जो जिस पे आपको खास तौर से ध्यान रखना है, लक्षण बार बार पतला दस्त, उल्टी, बुखार, पेट दर्द और कमजोरी। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी, बार बार पतला दस्त, उल्टी, बुखार, पेट दर्द और कमजोरी। यदि बच्चा बहुत सुस्त हो जाए, बार बार उल्टी करे, खून वाला दस्त आए, पानी ना पी पाए, पेशाब कम हो, बच्चे में कम आए या आंखें अंदर की तरह धस्ती दिखें, तो इसे गंभीर माने और तुरंत अस्पताल जाएं और अपने नज़दीकी डॉक्टर को तुरंत दिखाएं।
0: मैम, दस्त के दौरान शरीर में पानी की कमी होती है यानी डिहाइड्रेशन, ये क्यों होती है और इसके क्या लक्षण हैं?
1: देखिए, बार बार दस्त और उल्टी होने से शरीर में पानी और ज़रूरी जो पोषक तत्व हैं, ज़रूरी जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, इनके निकल जाने से डिहाइड्रेशन होता है। इसी को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। इसके लक्षण हैं बहुत प्यास लगना, मुंह सूखना, आंखें धंसना, पेशाब कम या बिल्कुल बंद हो जाना, बच्चा सुस्त होता है, रोते समय आंसू कम आना। ऐसे में आप तुरंत ही ORS देना शुरू करें और ज़रूरत होने पर अस्पताल ज़रूर जाएँ।
0: जी, क्या हर दस्त संक्रमण के कारण होता है या इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं?
1: जी, ज़रूरी नहीं है हर डायरिया संक्रमण से हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अधिकांश मामलों में संक्रमण के अलावा खान पान में कभी कभी बदलाव, कुछ दवाइयाँ जैसे कि एंटीबायोटिक, फूड एलर्जी, अन्य बीमारियों की वजह से भी दस्त एक कारण हो सकता है। यदि दस्त लंबे समय तक रहे या बार बार हो, तो ऐसे में अपने नज़दीकी डॉक्टर से अवश्य सलाह लें।
0: जी मैम, दस्त के दौरान बच्चों को

0: या खिलाना या पिलाना चाहिए, और अगर जो गर्भवती महिला प्रेग्नेंट लेडी है उनको कैसे इस समय सावधानी बरतनी चाहिए?
1: देखिए, दस्त के समय बच्चे के लिए मैं हमेशा, अगर 6 महीने या दूध पीता हुआ बच्चा है तो स्तनपान को बिल्कुल ना रोकें, स्तनपान जारी रखें। बच्चे को ORS, साफ पानी, उम्र के अनुसार हल्का पौष्टिक खाना जैसे दाल, खिचड़ी, चावल, केला, दही, नारियल पानी अवश्य दें। खाना बंद बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इससे बच्चे को जल्दी स्वस्थ होने की ताकत मिलेगी। और गर्भवती महिलाओं के लिए मेरा यही है कि आप समय पे अपने नज़दीकी स्वास्थ्य सेवा केंद्र में जरूर दिखाएं और समय पे ORS और ज़रूरी दवाइयाँ ज़रूर लें।
0: जी मैम, ORS क्या है और इसे सही तरीके से कैसे घर पर बनाकर हम पी सकते हैं?
1: ORS एक रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, जो कि हम जिसमें सही मात्रा में ग्लूकोज, पानी और पोषक तत्व, जो हमारे ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट हैं जिन्हें हम सोडियम और पोटेशियम बोलते हैं, इसका एक मिश्रण होता है, जो हमें सही बनाने का तरीका, सही समय और सही तरीका भी ज़रूर पता होना चाहिए। सही तरीका है हमारा कि 1 लीटर पानी में एक पूरा WHO द्वारा प्रमाणित ORS ही लें। हमेशा 1 लीटर पानी में इसको सही से घोलें। पानी हमेशा स्वस्थ, अगर आपके घर में RO वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप अपने पानी को 20 मिनट तक उबाल के ठंडा करके ये पूरा सैशे उसमें मिलाएं, और 24 घंटे से पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर दस्त के बाद अपने बच्चे को ये ज़रूर पिलाएं। और घर में अगर आपके ORS का सैशे अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, होममेड ORS भी आप बना सकते हैं, जिसमें आप 1 लीटर पानी में 6 छोटा चम्मच शुगर, चीनी और आधा चम्मच नमक डाल के भी बनाया जा सकता है।
0: जी तो मैम, यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, एक कॉलर लाइन पे हैं, हम उनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, आप अपना नाम बताइए, मैम सुन रही हैं आपको।
2: नमस्ते
0: जी, नमस्कार मैम, सुन रही हैं, बताइए।
2: डायरिया का दिन आ रहा है, बच्चों के लिए पूछना। मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से।
1: जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? आपका पूरा स्वागत है, आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप डायरिया के बारे में।
2: मैं पैसे से जनरल फिजिशियन हूँ, बच्चों की सेवा करता हूँ। बरसात का दिन आ रहा है, बहुत बच्चे का डायरिया बढ़ जाता है करते करते, कृपया बताएं कि क्या किया जाए।
1: देखिए, ऐसे में सही सलाह, सही टाइम पे ट्रीटमेंट और सही टाइम पे उनके सही लक्षण को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो आप हमेशा सही सलाह सभी को अवेयर करें इस चीज़ को लेकर के, कि जब गर्मियाँ या बरसात का जी जी जी जी जी क्या आप मुझे सुन, तो सही समय पे हमेशा उनको अवेयर कराएं कि साफ सफाई, सही हाथों को धोना, सांस के बाद अपने हाथों को धोना, बासा खाना नहीं खाना, रखा हुआ खाना नहीं खाना, ये सब के साथ उनको अवेयर कराएं। और अगर डायरिया होता है, अगर उनको बार बार पतला दस्त आता है उल्टी के साथ, अगर वो आपके पास आते हैं तो सही समय पे ORS या घरेलू ORS के लिए उनको अवेयर कराना, इस सब के साथ। और जिंक जो हमारे बच्चों में डायरिया के साथ हम देते हैं, उनके लिए उनको महत्वपूर्ण जानकारी देना, उसका सही डोज बताना।
0: जी, तो हमें उम्मीद है कि इन्हें इनका प्रश्नों का जवाब मिल चुका होगा। मैम, दस्त के दौरान कौन सी चीज़ें बच्चों को खानी चाहिए, इनके बारे में आप बात कर रही थी, इन्हें थोड़ा संक्षेप थोड़ा बताइए इनके बारे में।
1: दस्त के दौरान स्तनपान पे अगर बच्चा है तो स्तनपान बिल्कुल जारी रखें। बच्चे को उस दस्त के दौरान ORS, साफ पानी, उम्र के अनुसार हल्का पौष्टिक भोजन देते रहें, जैसे खिचड़ी, दाल, चावल, केला, दही, नारियल पानी। खाना कभी बंद ना करें, हमेशा खाना जारी रखें, खाना खिलाते रहें।
0: जी जी
1: और तरल लिक्विड हमेशा कंटिन्यू करें।
0: जी मैम, किन परिस्थितियों में तुरंत अस्पताल या डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए?
1: जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि बच्चे को बार बार दस्त और उल्टी हो रही हो और दस्त में अगर खून भी दिख रहा है, तो बच्चा बहुत सुस्त है, पानी नहीं पी पा रहा है, पेशाब कम आ रहा है, तेज बुखार है, और डिहाइड्रेशन के लक्षण जिसमें आपको आंखें दस्ती हुई, पेशाब कम आना, अगर इस तरीके के लक्षण दिखा रहे हैं, तो तुरंत ही अपनी नज़दीकी स्वास्थ्य सेवा के केंद्र पर ज़रूर जाएँ और अस्पताल

0: हमें किसी डॉक्टर से संपर्क करें।
1: जी, क्या हर दस्त में एंटीबायोटिक या दूसरी दवाओं की ज़रूरत होती
0: जी
1: है?
0: बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। हर दस्त में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। छोटे बच्चों में अधिकांश जो दस्त होता है वो वायरस के कारण होता है, जिनमें एंटीबायोटिक का कोई लाभ नहीं होता। इलाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ओआरएस, पर्याप्त तरल लिक्विड जो आपके हैं, जिंक की दवा और सही पोषण है। एंटीबायोटिक केवल तभी दी जा सकती है जब डॉक्टर को बैक्टीरिया होने के संक्रमण का संदेह हो। इसीलिए आप बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी एंटीबायोटिक स्टार्ट ना करें।
1: जी, मैम यहाँ पर एक कॉलर लाइन पे है, हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
2: हेलो
0: हेलो
2: जी, नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: जी, बिल्कुल नमस्कार, आपका स्वागत है, पूछिए आपको क्या पूछना है।
2: मुझे ये पूछना है, जो छोटे बच्चों में जो अक्सर जो है डायरिया की समस्या आती है, तो ये जो बच्चे 12 साल से नीचे आती है या 12 साल के बच्चे से ऊपर आती है, या जैसे कि 1 साल का या 2 साल का बच्चा या 6 महीने का, क्या
0: देखिए
2: उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है?
0: देखिए डायरिया तो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। डायरिया तो बूढ़े बुजुर्ग को भी हो सकता है, डायरिया किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, पर जनरली 5 साल या 5 साल से कम के बच्चे जिनमें इम्यूनिटी अभी विकसित पूर्ण तरह से नहीं हुई है, उनमें डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
1: जी, आपका और कोई प्रश्न है?
2: और ये प्रश्न ये है कि जैसे कि बच्चों की जो डायरिया की, और ये हमें किस तरह से बचाव करना चाहिए, लेकिन खासकर जो है बच्चों को जो जंक फ्रूट से, क्या इस समस्या होती है कि क्या जंक फ्रूट से भी प्रॉब्लम
0: परहेज
2: ना पता
0: करना
2: है
0: चाहिए वो
2: बच्चों?
0: कह रहे हैं। देखिए जंक फूड के लिए जो आपके स्ट्रीट फूड जो होते हैं जनरली वो ओपनली रखे हुए होते हैं काफ़ी समय तक, तो ज़्यादातर उससे बचाव ही करना चाहिए। और मैं छोटे बच्चे जो कि मैं उनके लिए हमेशा यही अवेयर कराती रहती हूँ सभी को, सभी हमारा यही अवेयरनेस प्रोग्राम है कि हमेशा 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाया जाए, बोटल फीडिंग को रोका जाए, ठीक, इससे डायरिया को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। और अपने बड़े बच्चे हैं उनको कॉर्नर स्ट्रीट फूड में कौन सा खुला, जो घर में भी आपका जो खुला भोजन रखा हुआ है, घर में साफ़ सफाई रखना, मक्खियाँ नहीं आने देना, ये सब के लिए भी आप डायरिया के बचाव कर सकते हैं। हाथों की सफाई, दूषित भोजन को नहीं करना, इससे भी आप डायरिया से रोकथाम किया जा सकता है।
1: तो हमें उम्मीद है कि आपके आप प्रश्नों का जवाब मिल चुका होगा। मैम यहाँ स्वच्छता की बात आई, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि स्वच्छता और हाथ धोने की भूमिका हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है?
0: देखिए दस्त से बचाव का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है साफ़ सफाई और सही तरीके से हाथ धोना,
1: जी
0: शौच के बाद, बच्चे को मल साफ़ करने के बाद, खाना बनाने से पहले, खाना खिलाने से पहले साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक हाथ धोना आवश्यक है। इससे संक्रमण फैलने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है।
1: जी जी और सुरक्षित पेयजल और साफ भोजन का कितना महत्व है?
0: दूषित पानी, अस्वस्थ भोजन दस्त के प्रमुख कारण होते हैं, इसीलिए हमेशा उबला पानी या असुरक्षित पानी का इस्तेमाल ना करें।
1: जी, क्या रोटा वायरस का टीका बच्चों को दस्त से बचने में मदद करता है?
0: जी हाँ बिल्कुल, रोटा वायरस का टीका जो कि हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, हमारा जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है, इसमें 2016 में लॉन्च किया था। रोटा वायरस का टीका छोटे बच्चों में होने वाला रोटा वायरस से जो इन्फेक्शन होता है, काफ़ी दस्त से होने वाली जो गंभीर समस्याएं हैं, इसको रोकने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया था। ये बच्चों के जीवन के शुरुआती महीने 6, 10 और 14 वीक में दिया जाता है। इससे माता पिता को अपने बच्चों का टीकाकरण इसीलिए अवश्य कराना चाहिए।
1: जी, मैम अक्सर बरसात और गर्मियों के दौरान दस्त के मामले अधिक बढ़ जाते हैं, और इस मौसम में हमें क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
0: बरसात और गर्मियों में भोजन, पानी जल्दी दूषित हो सकते हैं, जिनमें संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में साफ और सुरक्षित पानी पिएं, ताज़ा भोजन खाएं, कटे हुए फल, सड़क किनारे का अस्वच्छ भोजन खाने से बचें, और हाथों की सफाई पे जो मैं बार बार आपको यही अवेयर करा रही हूँ कि हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखें।
1: जी, क्या ठंडी चीज़ें खाने से डायरिया होती है?
0: जी बिल्कुल नहीं, ठंडी चीज़ों का इनसे

0: कोई मतलब नहीं है,
1: जी जी
0: डायरिया सिर्फ आपका दूषित भोजन। अगर आप मार्केट से डायरेक्ट कोई भी फल या सब्जी खरीद के लेकर आते हैं तो उनको अच्छे साफ पानी में धो कर के अच्छे से पका कर ही खाएं। ठंडा गरम खाने से कभी भी डायरिया नहीं होता।
1: जी जी क्या बार बार डायरिया होने से किसी दूसरी बीमारी का संकेत हो सकता है?
0: जी हाँ, अगर डायरिया 14 दिन या 14 दिन से ज़्यादा पसिस करता है तो हमेशा दूसरी बीमारी के लिए भी आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य सेवा केंद्र में डॉक्टर से जाके संपर्क करके दूसरी बीमारी के भी लक्षण के बारे में पता कर सकते हैं।
1: जी, डायरिया यानी दस्त, इस होने पर नारियल पानी या सूप हम पी सकते हैं, इसका सेवन क्या हम कर सकते हैं?
0: जी हाँ, नारियल पानी बहुत ही अच्छा उपाय है क्योंकि इसमें हमारे सारे तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के डिहाइड्रेशन के टाइम पे निकल जाते हैं। तो आप नारियल पानी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप हमेशा पी सकते हैं इसको डायरिया के टाइम पे। अगर आपका बच्चा ORS के टेस्ट से परेशान है, आपको नहीं पी रहा है, जनरली जो माता पिता मेरे पास आते हैं उनकी कंप्लेंट यही रहती है कि बच्चा हमारा
1: ORS नहीं
0: ORS
1: पी
0: नहीं
1: रहा।
0: पी रहा
1: जी
0: है,
1: जी
0: तो आप नारियल पानी भी दे सकते हैं, घर में बना हुआ नींबू पानी भी दे सकते
1: जी
0: हैं।
1: जी जी नींबू पानी बनाने का तरीका थोड़ा सा उनको बता दीजिए कि इसमें।
0: नींबू पानी आप सिंपल उसी तरीके से ही बना सकते हैं जैसे मैंने बताया था आपको कि 1 लीटर पानी में 6 स्पून आपको, 6 छोटे चम्मच आपको चीनी, आधा आधा छोटा चम्मच आपको नमक और थोड़ा सा पिंच ऑफ नींबू, थोड़ा
1: जी
0: सा
1: जी
0: आधा स्पून आपको नींबू मिला करके, आप नींबू पानी मिला कर भी आप बच्चे को दे सकते हैं।
1: मैम, कई लोग घरेलू नुस्खे पर भरोसा करते हैं, ऐसे कौन से नुस्खे सुरक्षित हैं और किन से बचना चाहिए?
0: घरेलू नुस्खा एक ही सुरक्षित है, वो है बच्चे को हाइड्रेट करके रखना। क्या आप तरल पदार्थों का सेवन बच्चे को कराते रहें, नारियल, आप बच्चे को छाछ, ये सब का सेवन कराते रहें, यही घरेलू नुस्खे हैं। अगर बच्चा इसके बाद भी आपका गंभीर रूप से बीमारी की तरफ जा रहा है, उसमें आपको डिहाइड्रेशन के साइन दिखाई दे रहे हैं, आंखें धंसती हुई, पेशाब का कम आना, या बच्चा सुस्त होता चला जा रहा है, तो आप घरेलू नुस्खे की बजाय तुरंत ही अपने स्वास्थ्य सेवा केंद्र के पास, करीबी नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके तुरंत संपर्क करें। ऐसे में आपको घरेलू नुस्खा नहीं अपनाना है।
1: जी, क्या दस्त होने पर उल्टी और बुखार भी हो सकती है
0: जी
1: सर?
0: बिल्कुल, दस्त के साथ आपको उल्टी, बुखार और कभी कभी जिसे हम खूनी पेचिस, डिसेंट्री भी बोलते हैं, तो दस्त में खून भी आने की समस्या हो सकती है।
1: जी, बच्चों में कौन से लक्षण खतरे की निशानी है दस्त के दौरान?
0: बच्चे का सुस्त हो जाना, पेशाब कम आना, बच्चे का पानी नहीं पीना, रोते समय आंसुओं का कम हो जाना, ये बच्चे के खतरे के निशान है। इसके लिए आपको घर की बजाय आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य सेवा केंद्र में जाके डॉक्टर से तुरंत ही संपर्क करें।
1: मैम, कोई कोई लोग सोचते हैं कि दस्त आज हो रहा है कल ठीक हो जाएगा, तो ये क्या उनका सोचना ठीक है या फिर वो तुरंत डॉक्टर से मिले?
0: देखिए, अगर 2 दिन से ज़्यादा का दस्त अगर एक्सटेंड हो रहा है, 2 दिन से ज़्यादा, तो आपको हमेशा डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, नज़दीकी स्वास्थ्य सेवा केंद्र में जाके संपर्क करना चाहिए। पर अगर आपका पहले दिन में ही बहुत ज़्यादा दस्त है, उल्टियाँ भी हो गई हैं और बच्चे को हाई ग्रेड फीवर भी आ गया है, तो ऐसे में मैं पहले दिन के लिए भी यही बोलूँगी अपने श्रोतागणों से कि ऐसे में पहले दिन ही जा करके अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें।
1: जी मैम, सामान्य मल और दस्त में क्या अंतर है?
0: देखिए, सामान्य मल जो हमारा दस्त होता है, जो हमारा पतला पतला बार बार पानी की तरह जो एक आता है, जिसे हम अगर जो बार बार ये पतला सामान्य दस्त, आप सामान्य जो मल होता है वो दिन में 1 से या 2 बार हो जाता है, बच्चों में जनरली ये 2 से 3 बार भी होता है, पर अगर इसकी फ्रिक्वेंसी 3 से 4 बार पतले और पानी जैसे मल में अगर कन्वर्ट होता है तो ये खतरा है। इसके लिए आपको तुरंत ही
1: डॉक्टर से सलाह
0: डॉक्टर से
1: लेनी
0: सलाह
1: चाहिए।
0: लेनी है।
1: जी मैम, एक कॉलर लाइन पे हैं, हम उनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, मैं,
2: जी डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: जी बिल्कुल, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में।
2: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बोल रहा हूँ, अविनाश।

0: सवाल ये है कि देखिए दोस्तों, जब कभी ऐसे भी टाइम मतलब मान लीजिए रात के होता है और हमें डॉक्टर के पास जाने का मतलब कि साधन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि घरेलू नुस्खे या फिर ORS के घोल बना के पिलाने की कोशिश करते हैं, तो इनमें क्या फायदेमंद होगा? जैसे कि मान लीजिए ORS भी नहीं होगा तो चीनी और जो बोलते हैं नमक का घोल बना के पिलाते हैं, इससे क्या कोई मतलब कोई नुकसान तो नहीं होगा?
1: जी बिल्कुल नहीं, आप सही तरीके से सही मात्रा में बनाएंगे, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। अगर आपके बच्चे को कभी भी रात के टाइम पे दिक्कत आती है तो मैं पहले तो यही बोलूँगी कि अगर ऐसे में ORS अगर घर पे पैकेट अवेलेबल नहीं है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 लीटर पानी जिसको उबाल के ठंडा करके आप उसमें 6 छोटे चम्मच चीनी और आधा छोटा चम्मच नमक मिला करके अपना घरेलू ORS भी बना करके हर एक 10 के बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में बच्चे को पिलाते रहें, तो ये
0: जी
1: इससे आपको
0: जी
1: काफ़ी सहायता मिलेगी।
0: जी धन्यवाद।
2: जी धन्यवाद। मैम, डायरिया क्या दस्त यानी डायरिया ये जानलेवा हो सकती है?
1: जी बिल्कुल, अगर सही टाइम पे सही संकेतों को अगर लाइटली लिया जाए, कि अगर आपके बच्चे को, मैं बार बार से वही सिम्टम्स बता रही हूँ कि अगर आपके बच्चे का डिहाइड्रेशन बढ़ता चला जाता है, डिहाइड्रेशन में आपको बच्चा सुस्त होता दिखाई दे रहा है, आंखें अंदर की तरफ धंसती दिखाई दे रही हैं, पेशाब कम होता चला जा रहा है, बहुत इरिटेबिलिटी है, बच्चा रो रहा है, रोने में आपने देखा कि आंसू भी सूखते जा रहे हैं, कम आंसू आ रहे हैं बच्चे को, और मुंह भी बिल्कुल सूख गया है, और अब बच्चा कुछ पीना बंद कर देता है, तो ये बहुत ही खतरे के संकेत हैं। इसमें आपको घर पे इलाज करने की बजाय अपनी नज़दीकी स्वास्थ्य सेवा केंद्र पे डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें।
2: जी मैम, माता पिता और जो देखभाल करने वाले लोग होते हैं उनके लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या होगा ताकि दस्त से विराम, स्वस्थ बचपन का पैगाम हर घर तक पहुंचे?
1: देखिए, मेरा यही संदेश है कि 10 से घबराएं नहीं, लेकिन लापरवाही भी ना करें। 10 शुरू होते ही ORS देना शुरू करें। अगर आपके पास घर में ORS नहीं है तो मैंने घरेलू नुस्खा भी, घरेलू ORS का भी बताया हुआ है आपको। जिंक की दवा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें, स्तनपान, सामान्य भोजन जारी रखें, बच्चे में डिहाइड्रेशन के लक्षणों को नज़र रखें, यदि बच्चा सुस्त हो जाए, पानी ना पी रहा हो, बार बार उल्टी हो रही हो या खून वाला दस्त हो, तो तुरंत अपनी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल जरूर जाएं।
2: जी मैम, एक कॉलर लाइन पे है, हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो
3: डॉक्टर की बंद कर जा।
2: हेलो
1: हेलो
3: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। मैं डॉक्टर प्रतिभा यहाँ आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हूँ, उपस्थित हूँ।
3: जी मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे कि बच्चों को तो पता नहीं होता, स्कूल जाते हैं और कभी गलत तरीके से कुछ खा भी लेते हैं तो बताते नहीं है, फिर उसके बाद हमको जैसे आने के बाद उसको ट्रीटमेंट के लिए कुछ अपने पास दवा होती है कि भाई हमारे पास नॉर्फोलॉक TZ है, बड़े भी खा लेते हैं छोटे भी, तो अगर छोटों को दी जाए उस टाइम उस समय अगर हमारे को, तो उनकी दवा की कितनी मात्रा दी जा सकती है?
1: देखिए, मैं एंटीबायोटिक के सख्त खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को एंटीबायोटिक घर पे ही दें, और हर दस्त में एंटीबायोटिक की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर बच्चा बाहर कुछ खा भी लेता है और दस्त की समस्या जैसे ऐसे होती भी हैं, तो मैं हमेशा बोलूँगी कि आप एंटीबायोटिक की जगह उसमें सबसे पहले अपना ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS यूज़ करें, और हर दस्त से पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको ORS पिलाते रहें, और जिंक का डोज जो मैंने बताया है कि आपको 6 महीने से जो कम के बच्चे होते हैं हम उनमें 10 मिलीग्राम देते हैं, और 6 महीने से जो बड़ा बच्चा होता है उनमें हम 20 ग्राम, 14 दिनों तक जिंक का डोज हम फॉलो करते हैं। तो आप जिंक दे सकते हैं, आप उनको प्रोबायोटिक खिलाने के लिए घर में ही आपके छाछ और कर्ड होता है, आप उससे प्रोबायोटिक की कमी भी पूरी कर सकते हैं। इस तरीके से एंटीबायोटिक के लिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगी कि आपको एंटीबायोटिक
3: ये डॉक्टर साहब, एक दवा और होती है कि सब गोल की भूसी दही में मिला के देने से भी आराम पड़ जाता है,
1: जी
3: बड़े
1: जी
3: तो
1: जी
3: खाते हैं, बच्चों को दे सकते हैं।
1: ये
3: और एक चीज मैं और पूछूंगा कि साथ साथ आप फोन ना करिए, कि पेट को सेट करने के लिए मतलब अगर 10 लगे हैं तो उसको सही तरीके से पूरा नॉर्मल अपने सही टाइम पर आने के लिए

0: क्या 4-5 दिन ये दवाई जो भी हम देते हैं इसबगोल का घोल या भूसी, तो 4-5 दिन तक देने कंटिन्यू रखनी चाहिए? और कब तक देनी चाहिए? जब तक हमें मालूम हो जाए कि हमारा मोशन ठीक हो गया है तो उस समय तक ही देना चाहिए क्या?
1: देखिए, 3 से 4 दिन आप कंटिन्यू रख सकते हैं। दस्त कभी कभी आपके इमिडिएटली ठीक नहीं होते हैं, और इमिडिएटली ठीक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जो आते हैं उनका जो मोशन एक साथ जो बढ़ गया है वो जो आपकी जो इतनी मोटिलिटीज़ उनकी बढ़ चुकी है, ऐसे में अगर आप तुरंत से ही दस्त को रोक देंगे तो इससे आपकी आंत पे गलत इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो हमेशा दस्त धीरे धीरे करके ही जाता है, तो ऐसे में आप 3 से 4 दिन अपना इसबगोल या प्रोबायोटिक जो आपका छाछ दही जो भी है आप उसके थ्रू भी आराम आराम से खा दूर कर सकते हैं। और सबसे मेन जो हमारा है ORS, जो ORS आपको हमेशा कंटिन्यू रखना ही है 4 से 5 दिन, जब तक दस्त आपके पूरी तरह से नहीं ख़त्म हो जाते, तो ORS हमेशा कंटिन्यू रखें।
2: तो मैम, चलते चलते आप हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को क्या कहें?

0: कि आपकी जो आते हैं उनका जो मोशन एक साथ जो बढ़ गया है वो जो आपकी जो इतनी मोटिलिटीज़ उनकी बढ़ चुकी है, ऐसे में अगर आप तुरंत से ही दस्त को रोक देंगे तो इससे आपकी आंत पे गलत इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो हमेशा दस्त धीरे धीरे करके ही जाता है, तो ऐसे में आप 3 से 4 दिन अपना इसबगोल या प्रोबायोटिक जो आपका छाछ दही जो भी है आप उसके थ्रू भी आराम आराम से खा दूर कर सकते हैं। और सबसे मेन जो हमारा है ORS, जो ORS आपको हमेशा कंटिन्यू रखना ही है 4 से 5 दिन, जब तक दस्त आपके पूरी तरह से नहीं ख़त्म हो जाते तो ORS हमेशा कंटिन्यू रखें।
1: तो मैम, चलते चलते आप हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं अपने सभी श्रोताओं को अपने स्टॉप डायरिया कैंपेन 2026 के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। ये हमारा स्टॉप डायरिया कैंपेन 2026 पूरे देश में 15 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसका मात्र उद्देश्य है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया से होने वाली मृत्यु को 0 तक लेकर आना। अभियान का संदेश है हमारा जो मैं सभी को बताना चाहूँगी, डायरिया की रोकथाम सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान। इसके थ्रू हमारी ANM आशा वर्कर और हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स सभी घरों में जा जा के ORS के पैकेट देंगे और डायरिया से बचाव की जानकारी और जिंक के बारे में भी कितने सही डोज के बारे में सभी को जानकारी देकर आएंगे।
1: जी मैम, आप इस कार्यक्रम में आई, अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सबों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। चलिए उसी उम्मीद के साथ आपसे लेते हैं विदा, फिर होगी मुलाकात अगले शनिवार इसी वक्त एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। विषय था दस्त से विराम, स्वस्थ बचपन का पैगाम। विशेषज्ञ थी डॉक्टर प्रतिभा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सुनीता, तकनीकी सहयोग दिया एन डंडापानी ने, तथा इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी मीना प्रकाश। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। आपसे थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
3: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
3: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और

0: शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: Working to strengthen each other's...
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2000

0: 27 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचावास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है, और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब मैं लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाया।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
4: हॉकी इंडिया आज से देशभर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
5: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या यह है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने SIR से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, SIR में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज के फनकार हैं उस्ताद अहमद हुसैन व उस्ताद मोहम्मद हुसैन।

अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम सुन रहे थे। आज के फनकार थे मोहम्मद अहमद हुसैन व उस्ताद मोहम्मद हुसैन। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहानी। कार्यक्रम का आगाज़ हम कर रहे हैं फिल्म रोटी से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद भी।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
3: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
4: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ, आखिर मेरी भी कोई अहमियत है। लोग सोचते हैं कि मैं मच्छर के काटने से फैल जाता हूँ। अरे भाई, मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया हो सकता है, मैं नहीं। कोई कहता है कि एक ही टॉयलेट का इस्तेमाल करने से, कपड़े या तौलिया साझा करने से, या फिर HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ खाने पीने, उठने बैठने, पढ़ने, काम करने से, बात करने से फैल जाता हूँ। अरे नहीं भाई, मेरे बारे में ठीक से तो जान लो, मैं इन सब चीजों से नहीं फैलता। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
0: फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अंदाज का ये गीत। बोल हसरत जयपुरी के हैं, बधुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।
6: जिंदगी

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:10 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत पॉन्डमैन के नाम से प्रसिद्ध रामवीर तंवर के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है नीति शुक्ला।
2: जल ही जीवन है, ये कहावत तो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसे सही मायने में समझकर और इसके लिए काफी अच्छा काम किया है आज की हमारी इस शख्सियत ने, जिनसे कि हम आपको मिलवाने वाले हैं। मैं हूँ आरजे नीति और हमारे आज के जो गेस्ट हैं, इन्हें पॉन्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने तालाब के संरक्षण के लिए, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए काफी अच्छा काम किया है और यहाँ तक कि इनका जिक्र मन की बात प्रोग्राम में हमारे प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। तो आइए स्वागत करते हैं रामवीर तंवर जी का। बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: रामवीर जी। आपको पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन कब इसकी आपने शुरुआत की? क्या आपने सोचा कि अब तालाबों का संरक्षण करना है, इन्हें पुनर्जीवित करना है?
1: देखिए, ये अचानक से ऐसी कोई घटना नहीं है जिसकी वजह से मैंने काम किया हो। इस तरह की घटनाएं किताबों में अच्छी लगती हैं, लेकिन ये है, मेरा मानना है कि वो धीरे धीरे धीरे धीरे ना कोई भी इनिशिएटिव आपको अपनी ओर खींच लाता है, और उसके लिए जिम्मेदार होती है कई बार आपकी चाइल्डहुड यादें, बचपन में आपने जो देखा है और जवानी में आप जो नहीं देख पा रहे। मैं 10th क्लास तक अपने गाँव में भैंसों को चराने जाता था जंगल में, और मैंने अपना पूरा होमवर्क किसी तालाब के या नहर के किनारे किया। मुझे याद है मेरे गांव से और जंगल जाते समय पे एक नहर पड़ती है बहुत छोटी सी, और हमें वो नहर क्रॉस करनी होती थी, अदरवाइज तो 2-3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। जब हम जाते थे, मैं 3री-4थी क्लास में जब था तो तैरना नहीं आता था, बहुत छोटा बच्चा था, तो हम भैंस की पूंछ पकड़ के क्रॉस करता था मैं, और कई बार भैंस जो है वो बीच नहर में जाके लेट जाती थी, तो हमें भी लेटना पड़ता था उसके साथ, तो उस वजह से तैरना सीखा। लेकिन आई एम सो सैड टू टेल यू कि वो नहर अब एक नाला है, और वो ऑफिशियली नाला है। वहां पे सिर्फ अभी पूरे शहर का इंडस्ट्रियल वेस्ट और म्युनिसिपल वेस्ट वहां से बहके जाता है। आप वहां किनारे 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, जबकि उस नहर का पानी कई बार हमारे मुंह में चला जाता था, पेट में चला जाता था। मुझे कभी याद नहीं है कि हम बीमार हुए हों। वही नहर मैं कई बार जब वहां से गुजरता हूँ तो आज अपने रुमाल को नाक पे रख के गुजरता हूँ, दुख होता है। जब मैं 11वीं क्लास में गाँव से बाहर 20 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाता था बस में, डेली मुझे 25-30 किलोमीटर जाना था, 25-30 किलोमीटर आना था, तो वहां जब मैं रास्ते में ये देखता था कि जो भी रोड के किनारे के तालाब है वो धीरे धीरे धीरे धीरे लैंडफिल साइट बनते जा रहे हैं, क्योंकि आदत होती है कि जब भी हम जाते हैं हाथ में जो भी कचरा होता है वो सबसे पहला निशाना हमारी बनती है कोई नाली, नाली नहीं मिली तो नाला, नाला ना मिले तो नहर, नहर नहीं मिली तो तालाब। तो आज भी आप गाँव में देखिए तालाब सबसे इजी टारगेट है कचरा फेंकने के लिए। तो जब मैं बाहर निकला गाँव से और मैंने देखा कि ये मेरे गाँव की समस्या नहीं है, ये तो सब जगह सेम इशू होता जा रहा है। जब मैं अपना ग्रेजुएशन में था, कॉलेज डेज में था, तो पॉकेट मनी के लिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मेरे पास 2 स्टूडेंट थे और दोनों भाई थे, उसके पिताजी ने कहा पूरे दिन इधर उधर कंचा खेलते हैं, सारे दिन उधर जाते हैं, तो तुम अगर इनको पास करवा दो 33% से तो मैं तुम्हें जो है इनाम दूंगा। मैंने उनको पढ़ाया और उनके 70% आ गए, तो उन्होंने इतना प्रचार किया कि मेरे पास 40-50 बच्चे आ गए। वो ऐसे प्रचार करते थे, किसी का बच्चा पास नहीं हो रहा हो तो रामवीर के पास भेजते पास हो जाता क्योंकि मुझे मैथ फिजिक्स से बहुत प्यार था। तो मेरे पास इतने सारे बच्चे हुए, वीकेंड पे हमने एक्टिविटी करना शुरू किया। एक्टिविटी क्या थी कि गांव में नए नए समर सर्विल लगे थे पंप, सबके घर में समर सर्विल पंप है, 1 गिलास पानी की जरूरत है तो वो 1000 लीटर पानी निकालेंगे। छोटे बच्चे को नहाना है तो उसको बाल्टी नहीं लाएंगे, उसके लिए बस समर सर्विल का स्विच ऑन कर देंगे, जाओ बेटा नहा लो। अब 10,000 लीटर पानी में बच्चा नहा रहा है, सोचिए जो 5 लीटर बच्चा नहा सकता था वो 10,000 लीटर में नहा रहा है, और वो ड्रिंकिंग वाटर उसकी कॉस्ट जोड़ेंगे 20 रुपए के हिसाब से तो लाखों रुपए में बैठ रही है वो। पूरे परिवार की इनकम 10,000 रुपए महीना है और पानी बहा रहे हैं 5 लाख रुपए का। तो हमने डिसाइड किया खेल खेल में कि जो भी हमारे गांव में सबसे ज्यादा पानी बर्बाद करता है उसके घर के सामने हम जल ही जीवन लिख के आएंगे चुपचाप। वो हमारी एक्टिविटी थी और वो हम वीकेंड में करने वाले थे। जब वो 1 महीना किया, 2 महीना किया, बहुत सारी गालियां भी खाई, कई पेरेंट्स ने अपने बच्चे हटा लिए। हमने सोचा था अच्छा पढ़ाते हो तुम, तो इनको ऐब करना सिखा रहे हो, लड़ाई करना सिखा रहे हो लोगों के साथ। तो कुछ बच्चे हट गए, कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। नेक्स्ट फेज में हमने क्या किया कि एक जगह हम बैठ के मीटिंग करने लगे, गांव की जो चौपाल बनी हुई है चौपाल पे किया, हमने उसका नाम रखा जल चौपाल, और हमने उस ग्रुप का नाम दिया था जागरूक युवा समूह। जब हमने मीटिंग किया और सब कुछ हुआ तो कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोग आए। एक बार क्या हुआ, किसी ने फोटो क्लिक करके मीडिया में लगाया, अखबार में आया, अखबार से डीएम साहब के पास गया, डीएम साहब ने कॉल किया उन भैयाओं के पास कि उन बच्चों को बुला के लाओ, हमको बुलाया, उन्होंने अप्रिशिएट किया और कहा कि अगली बार मैं आऊंगा। वो अगली बार आए तो हम तो 20 लोग थे, वो आए तो 500 लोग इकट्ठा हो गए। देन आई रियलाइज कि ये जो हम कर रहे थे ये कोई छोटी चीज नहीं है, जिस काम के लिए खुद डीएम साहब, कलेक्टर साहब आपके गांव में आ सकते हैं, जिन्होंने अभी तक गांव देखा ही नहीं हमारा, और उनको पता चला। देन आई रियलाइज कि वी आर डूइंग समथिंग बिग। और वहां से ये फिर मैंने कॉलेज किया, 2 साल जॉब के साथ भी मैंने यही किया, अवेयरनेस कैंपेन चलाया, लेकिन अवेयरनेस कैंपेन थोड़ा बड़ा हो गया टाइम के साथ, और फिर मैंने सोचा कि जॉब छोड़ के फुल टाइम अभी मैं ये करूं। वहां से निकल के धीरे धीरे यहाँ तक पॉन्ड मैन की जर्नी शुरू हुई।
0: तो पॉन्ड मैन की जर्नी इतनी आसान तो नहीं रही होगी, कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, तो किस तरह की मुश्किलें सामने आई?
1: शुरुआती दौर में क्या था, आपके पास पैसा नहीं था, रिसोर्सेस नहीं थे, आपके पास टीम नहीं थी, आपके पास नॉलेज नहीं थी, आपके पास रिसोर्सेस नहीं थे, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं था जिसको आप ये बोल सके कि मैंने वो काम

0: किया है जी, आपको लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे। इंडिया में क्या है, वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। कोई भी वाटर बॉडी है, तालाब है, पोखर है, कुआं है, कुछ प्राइवेट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आप उसको बिना परमिशन के गंदा तो कर सकते हैं, लेकिन बिना परमिशन के साफ नहीं कर सकते हो। साफ करना है तो आपको एनओसी लानी पड़ेगी। तो एनओसी के लिए हम चक्कर काटते थे। हमसे यार पूछता था एनओसी तब देंगे, पहले बताओ एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारा। अब एक्सपीरियंस हो तो बताए, हमने तो जीरो एक्सपीरियंस, हमने कभी तालाब ही साफ नहीं किया। गांव वालों से बात करें, वो कहते थे कि यार तुमने कभी किया ही नहीं कुछ, तो ये कैसे करोगे। तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं था जिसको हम उदाहरण के तौर पे बता सके कि हमने वहां पे किया है, उसको देखिए। दूसरा, आप तालाब साफ करेंगे, आप मैनुअली कितना कर लेंगे, 5 किलो कचरा हटा लेंगे, 100 किलो हटा लेंगे। लेकिन बड़ा अगर आपको इम्पैक्ट करना है तो मशीन चाहिए
1: जी,
0: आपको, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, मैन पावर चाहिए, टूल्स चाहिए। उसके लिए हमारे पास फंड नहीं था। हमने क्या किया कि जितना हमारे बस की है उससे करते हैं। तो जो भी सोशल मीडिया से, कॉलेज से जितने लोग जुड़े थे अपने साथ, उन सबको हमने साथ जोड़ा और क्लीन अप ड्राइव शुरू किया। मुझे याद है जब हम पहले दिन क्लीन अप ड्राइव किया था तो हमें लगा था बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन मैं और मेरा दोस्त दो ही रह गए कोई नहीं आया, हम दो ही लोग हो गए क्योंकि बारिश हो रही थी उस दिन, है
1: अच्छा।
0: ना। हम दोनों को तो जुनून था, सबको थोड़ी ना। हम गए वहां पे, हमने फावड़ा शुरू किया। अब बहुत सारे लोगों के साथ तो आपके अंदर हिम्मत होती, लेकिन हम तो दो ही लोग थे। और जब वहां पे हम तालाब साफ कर रहे थे, कोई भी हमसे निकल रहा था, क्यों कर रहे हो, कहाँ से हो, तो हमारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम जवाब दे सके कि हम ये कुछ करना चाहते हैं। कोई भी आता था, हाँ भाई कौन हो, क्यों साफ कर रहे हो, तो हम ये कहते थे जी नगर पालिका से है। अच्छा, वो उधर भी करके जाना। मैंने कहा हाँ जी बाबू जी, करके जाएंगे।
1: अच्छा, तो रामवीर जी मैं ये पूछना चाहूंगी कि बात तो सही है कि आपको सफाई का किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि जो कचरा होता है वो किसी भी तरह का कचरा हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ वो कपड़ा और पॉलिथिन बैग्स हो, उसमें मेडिकल वेस्ट भी हो सकता है, तरह तरह के केमिकल्स हो सकते हैं, कांच हो सकता है। तो किस तरह के प्रिकॉशंस आप लेते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको सामने आई?
0: देखिए, हम शुरुआत में कोई एक्सपर्ट तो थे नहीं कि हम बता सके मेडिकल वेस्ट है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये प्लास्टिक वेस्ट है। तो हमारे लिए तो सब एक प्लास्टिक में बंद कचरा है, हम तो सबको ऐसे ही उठा के फेंक देते। तालाब क्या है, वो सिंक होल है। आपके घर में कुछ भी निकलेगा ना, आपके रजाई, गद्दे, जूते, चप्पल, कांच, जो भी है बस उसमें डाल दो जाके। चाहे वो नाला मिल जाए उसमें डाल दो, तालाब मिल जाए उसमें डाल दो। जब हम तालाब को रिस्टोर करते हैं, और कई बार हम जब डीवॉटरिंग करके उसको खाली करते हैं पूरे तालाब को, ताकि नीचे से खुदाई कर सके वापस से, आप यकीन मानिए कई बार 1 से 1.5 मीटर की एक लेयर मिलती है, पूरी कचरे की लेयर मिलती है। मान लो यही बोतल है, आप इसको फेंकिए तालाब में, अब दो चांस हो सकते हैं, या तो ये इसमें ढक्कन लगा हुआ है और हवा भरी हुई है तो ऊपर तैरेगा, या इसका ढक्कन खुला हुआ है तो पानी भरेगा जाके नीचे बैठ जाएगा। तो जब हमने तालाब को खाली किया तो 1 से 1.5 मीटर की हमें लेयर मिली, और उस लेयर में सिर्फ बोतल नहीं है, उसमें सब कुछ है, उसमें जूते हैं, उसमें चप्पल है, उसमें कांच है, घर का बचा हुआ सामान है, बहुत सारी मूर्तियां हैं, तमाम सारी चीजें हैं जो सालों से वहीं पे पड़ी पड़ी सड़ रही हैं। और कई सारे तालाबों में तो ऐसा भी हमने देखा, क्योंकि जैसे जलकुंभी और सिल्ट और गाद और सिलज हो जाती है तो जानवर भी फंस के मर जाते पानी पीने के चक्कर में, लेकिन उसमें गाद इतनी सारी हो जाती है, उस कचरा डलते वहीं फंस जाता है। तो कई तालाबों में सहता हुआ हमने पानी निकाला तो नीचे ऐसे कंकाल के कंकाल खड़े हुए मिले, जो नीचे फंस गए थे, पानी में डूब गए थे वापस, ऐसे पड़े हुए मिले। बहुत दुख लगा उनको देख के हमें, क्योंकि गांव वाले को लगता था भैंस चोरी हो गई है। भैंस चोरी नहीं हुई थी,
1: डूब गई,
0: भैंस डूब के मर गई थी तालाब में।
1: जब आप कचरा उठाते हैं, आपकी टीम जाती है किसी लोकेशन पर, तो किस तरह से वो कलेक्शन करते हैं कि उन्हें हार्मफुल इफेक्ट से?
0: देखिए, उसके लिए तो सेफ्टी टूल्स होते हैं, एक स्पेशली ग्लव्स आते हैं जो इस तरह के वेस्ट को एक तरह से उठाने के लिए काम आते हैं। वहां पे प्रॉपर मास्क, और हमारे पास ना एक ड्रेस होती है प्रॉपर जो पूरा पहन लेते हैं, तो यहाँ तक आती है वो बहुत मोटी होती है, प्लस उसमें पानी भी नहीं घुसता है, सेफ्टी किट होती है, तो उसी को पहन के वो तालाब में घुसते हैं। एक तो आपके कपड़े भी गंदे नहीं होते, प्लस आपको नहीं पता कि पानी में क्या केमिकल घुला हुआ है, तो वो भी आपके टच में नहीं आता है, और वो उसी तरह से फिर वो उठाते हैं। अब तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, नगर पालिका गाड़ियों में भी अलग अलग बॉक्स बने हुए होते हैं, क्योंकि हम कचरे को निकाल तो सकते हैं लेकिन उसको अपनी मर्जी से डिस्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं क्या करूंगा, एक्स जगह से उठा के वाई जगह पे डाल दूंगा, बात तो एक ही हुई। तो इसलिए हम जब भी कोई तालाब करते हैं तो वो एक उसमें मल्टीपल पार्टी होती है, एक ट्राई पार्ट एग्रीमेंट होता है, एक होता है कॉर्पोरेट या स्पॉन्सर, एक होता है हम एग्जीक्यूटिंग पार्टनर, एक होता है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जहाँ पे भी उनका निस्तारण एक प्लांट है वहां तक उसको लेके जाए। जी जी, लेकिन अभी क्या है, टाइम के साथ हमें भी नॉलेज हुई है, तो उसको अच्छे से सेग्रीगेट करते हैं, और जिस तरह से उसका एक आधुनिक तरीका होना चाहिए उसको सेग्रीगेट करने का, निस्तारित करने का, उसी को उसी से निस्तारित किया जाता है। क्योंकि तालाबों में सिर्फ 2-3 तरह का ही वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट तो तालाब के अंदर

0: चला जाता है, स्लज ले लेता है, इनऑर्गेनिक वेस्ट, जूते चप्पल प्लास्टिक ये सारे। हमने क्या है, कुछ स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, वो प्लास्टिक उनको देते हैं, उस प्लास्टिक से हमें वो बेंच, ट्री गार्ड, मेज, उसको मोल्ड करके वापस से पिघला के वो हमें देते हैं, और उसी बेंच को हम तालाब किनारे रख देते हैं वापस से लाके,
1: अच्छा,
0: ताकि उसी बेंच पे बैठ के लोग शाम को फिर तालाब को निहारे।
1: तो पूरा आपने एक ये सिस्टम क्रिएट
0: यस
1: कर दिया
0: यस
1: है,
0: यस
1: तो
0: यस
1: ऑटोमेटिकली वो
0: बिल्कुल
1: अच्छे
0: बिल्कुल
1: तरह से, वो जो कचरा है वो जा रहा है और स्टार्टअप
0: यस यस
1: उसे
0: यस
1: किसी अच्छे फॉर्म में लेकर वापस
0: बिल्कुल
1: कर रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: तो जब आप तालाबों को पुनर्जीवन देने की कोशिश करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, तो लोकल्स का किस तरह से सपोर्ट मिलता है या विरोध करते हैं, क्या रिएक्शन
0: देखो,
1: होता है?
0: लोकल दोनों तरह के ही है। जिन लोगों ने तालाब के किनारे घर बनाया हुआ है, उनका हमेशा सपना रहता है कि अगले साल 100 गज और कब जाएंगे, उससे अगले साल 100 गज और एंक्रोचमेंट करेंगे। उनका, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है ना तालाब को बचाने की, वो सबसे ज्यादा तालाब को कब जाने की फिराक में रहते हैं। और ये 90% सक्सेस रेट है मेरी इस बात का। आप कहीं भी जाके देखिए, तालाबों को उन लोगों ने कब्जाया हुआ है जो तालाब के किनारे पे रहते हैं, क्योंकि वो उस जगह को अपनी मानने लगते हैं। उनका डायरेक्टली कोई फायदा नहीं हो रहा है तालाब से, इनडायरेक्टली तो बहुत सारे हैं भाई। पर्यावरण बच रहा है, आसपास का माहौल ठंडा होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलती है।
1: जी
0: डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली तब मिलता था जब पानी पीते थे उस तालाब से, जब उसमें नहाते थे, जब उसमें से मटका भर के लाते थे। तो इसलिए अब उसको लैंडफिल की तरह यूज करते हैं। ऐसे लोग तो हमेशा विरोध करते हैं जो उसको कब्जाना चाहते हैं, कुछ भी करके आपका काम रुकवाना चाहते हैं। दूसरे टाइप के लोग हैं जो थोड़े अवेयर हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा है कि सपोर्ट करने वाले लोग अभी भी भारत में विरोध करने वालों से ज्यादा है, इसलिए शायद हमारा काम चल भी रहा है। दूसरा, जो अलग अलग टाइप के लोग मिले, कुछ लोग हैं जैसे आज हमने तालाब पे काम शुरू किया, शाम तक आ जाएंगे, पहले ये बताइए पैसा कहाँ से मिला, क्यों कर रहे हो, वो सारे लोग हैं। कुछ होते हैं जो अच्छी सलाह भी देते हैं कि भाई यहाँ पे ये पेड़ लगाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों को इसलिए उसमें पार्टिसिपेट कराते हैं, इसलिए हम जन भागीदारी करते हैं उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि तालाब एक दिन में तो मरा नहीं होगा, तालाब को मरने में 30, 40, 50 साल लगे हैं, और तालाब को मरते हुए उन्हीं लोगों ने देखा है जो उस गांव में रहते हैं, इसलिए उस तालाब के बारे में सबसे ज्यादा, चाहे उसकी हिस्ट्री हो चाहे मरने की कहानी हो, उन्हीं लोगों को पता है जो वहां पर रह रहे हैं, इसलिए हम उसको पार्ट बनाते और हम बताते हैं कि आपको ही रेस्टोर करना है, हम तो सिर्फ आपको सपोर्ट करने आए हैं। तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं, बहुत विरोध भी करते हैं।
1: तो जैसे आपने एक बार किसी तालाब की सफाई कर दी, उसको पुनर्जीवन मिल गया, तो बाद में उसकी कौन देखभाल करता है?
0: अब मान लो अगर हम घर बना रहे हैं, या मेरा खुद का खेत है, या मेरा खुद का प्लॉट है, हमेशा वही देखभाल करेगा जिससे उसकी इनकम जुड़ी हुई है, या जो ऑनर है उस जगह का। तालाबों के साथ इश्यू क्या है, तालाबों का कोई ऑनर नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब तालाबों को रेस्टोर करते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि तालाबों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाए। सेल्फ सस्टेनेबल बताए मतलब तालाब अपने मेंटेनेंस का खर्चा खुद निकाले,
1: वो
0: है ना,
1: कैसे?
0: तालाब अपने लिए इनकम करे। सिंगाड़ा कहाँ से आता है, तालाबों से। लोटस कहाँ से आता है, तालाबों से। मछली कहाँ से आती है, तालाबों से। और आजकल ये बिहार में तो मखाना देखिए, तालाबों से। बहुत सारी चीजें हैं जो तालाबों से आती है। और अब दिल्ली में, गुड़गांव में तो तालाब इको टूरिज्म के लिए, आप तालाब के किनारे रेस्टोरेंट खोलिए और एक दूसरी जगह खोलिए, तालाब किनारे वाला के इनकम ज्यादा होगी। तो तालाब अपने लिए इनकम करना सीख, तो तालाबों की इज्जत भी बढ़ेगी, और इज्जत बढ़ेगी मतलब तालाब के किनारे वाले जो रेस्टोरेंट है या कोई भी चीज है वो आपको मेंटेन करेंगे। तो इसीलिए हम तालाबों को इस तरह से एक्वा कल्चर, इको टूरिज्म या किसी ना किसी एक्टिविटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका अगर कोई 5 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं तो वो 50,000 रुपए तालाब के मेंटेनेंस पे खर्च करें। अदरवाइज तो फिर हम अपने ऊपर ले लीजिए भाई, अगर हम ये उम्मीद करके चले कि मैंने तालाब को रिस्टोर कर दिया और अब जनता इसको खुद ही मेंटेन कर लेगी, तो हम भी जनता है। हम महीने में कितनी बार जाते हैं आसपास के तालाबों को मेंटेन करने के लिए, मैं कितनी बार जाता हूँ, आप कितनी बार जाते हैं, आप और जो इस तरह की बातें करते हैं वो कितनी बार जाते हैं। तो तालाबों को हमेशा वही मेंटेन करते हैं जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे कुछ फायदा।
1: तो जैसे आपने किसी तालाब को रिवाइव किया और कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद आप पलट कर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर पक्षी आने लगे, जीव जंतु आने लगे, एक जनजीवन वहां पे पनप रहा है, तो देखकर कैसा फील होता है, क्या इमोशंस होते
0: बहुत
1: हैं?
0: अच्छा लगता है।
1: कोई एक्सपीरियंस भी हो तो बताइए।
0: हम क्या है, हमारे एक USP है तालाब रेस्टोर करने का। हम जब भी कोई तालाब बनाते हैं तो उसके बीच में नेस्टिंग आइलैंड बनाते हैं,
1: अच्छा,
0: बीच में छोटे छोटे टापू बनाते हैं, उस टापू पे वहीं की लोकल नेटिव घास भी लगाते हैं। उसका हमारा जो पर्पज है नेस्टिंग आइलैंड बनाने का, वो ये है क्योंकि हमें लगता है कि देखो पिछले 50-100 साल में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आई है। आजकल तो जो घरों में फिल्टर है वो भी AI वाले आ रहे हैं, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी आई किसके लिए है, इंसान ने बनाई है, इंसान के लिए आई है। आज से 100 साल पहले एक तालाब जिसमें इंसान भी

0: उतना ही डिपेंड था उस तालाब पे, और एक पक्षी भी उतना ही डिपेंड था। इंसान के पास तो पानी आ गया, पाइपलाइन से आ गया, आरओ से आ गया, रिमोट से आ गया, लेकिन उसके लिए तो आज भी उतना ही रिलेवेंट है वो तालाब। तो जैसे ही मेरी पूर्ति हुई, जैसे ही मेरी जरूरत खत्म हुई, अब मैं तालाब को पाट दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को मार दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को कूड़ा घर बना दे रहा हूँ। नहीं भाई, आपके लिए ही तो टेक्नोलॉजी आई है, उनके लिए थोड़ी ना आई है। वो तो आज भी तालाबों पर उतने डिपेंड है। दूसरा, अभी पॉपुलेशन उतनी है, ट्रैफिक साउंड उतना है, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि अब डेवलपमेंट क्या है, बिल्कुल या तो तालाब जो है वो शहर के बीच में आ गए या रोड किनारे आ गया, पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पे बैठने की व्यवस्था करते हैं
1: पक्षियों के।
0: बिल्कुल। आप और मैंने अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाए। आप इस साल बनाइए आईलैंड और अगली साल देखिए, कम से कम आपको 100 बर्ड्स मिलेंगे, एक्वेटिक बर्ड्स मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर बत्तखें मिलेंगे, क्योंकि बीच में फिर अब वो ना घोंसला रख सकती है, बीच में वो अपना नेस्ट बना सकती है, बीच में अपने बच्चों को पाल सक, अपने बच्चों को ट्रेन कर सकती है। मैं अभी एक महीने पहले गया था एक तालाब पर, ग्रेटर नोएडा में हमने वो डेवलप किया था, दुजाना गांव में। मैंने बीच में देखा तो मिट्टी के ना बहुत सारे छोटे छोटे होल थे नेस्टिंग आइलैंड के ऊपर, वहां बत्तखों ने अपने बच्चे छिपाए हुए थे और पूरा तालाब एकदम बत्तखों से भरा हुआ है। आप सोचिए, अगर वो बीच में नहीं होता, किनारे पे तो कोई नहीं रखेगा, रखेंगे भी तो कुत्ते
1: सेफ
0: बिल्ली
1: नहीं
0: खा
1: होगा।
0: जाएंगे, कोई बच्चा उठा लेगा। तो जब भी मैं एक ऐसे तालाब पे जाता हूँ जो मैंने 2 साल पहले रेस्टोर किया था और आज पूरा पक्षियों से भरा हुआ है, बत्तखों से भरा हुआ है, जलीय जीवों से भरा हुआ है, उसको देख के जो तसल्ली मिलती है दिल को, बुरा नहीं लगता कि मैंने जॉब छोड़ दी।
1: जी, अब मैं इसी पे आ रही थी कि इतना मुश्किल रहा होगा कि जॉब छोड़ के आप फुल टाइम इस काम में लग रहे थे। अपने डिसीजन से ज्यादा मुश्किल रहा होगा घर वालों को कन्विंस करना, उन्हें समझाना, क्योंकि आप अच्छी पढ़ाई लिखाई कर चुके थे, तो उसके बाद कैसे कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को।
0: क्या है, 5 भाई बहन है, अभी मैं सबसे छोटा हूँ, और मेरी मम्मी बताती है कि हम 5 नहीं, हम 10 भाई बहन थे, 10 में से 5 नहीं रहे, 5 बचे, और 5 जो भी नहीं रहे वो गरीबी के कारण नहीं रहे। 5ों में से भी मैं ऐसा हूँ जिसने 11th क्लास में पढ़ाई की, पहली बार घर का सबसे छोटा, क्योंकि मेरे बाद तो नेक्स्ट जनरेशन शुरू होने वाली थी, हमारे बच्चे आने वाले थे। तो आई वॉज द पर्सन जिसने 11वीं क्लास में एडमिशन लिया और मैं कॉलेज गया पहली बार, और जिसने पहली बार एमएनसी में जॉब भी की। तो मेरे घर वालों के लिए तो कितना बड़ा अचीवमेंट था कि कोई कॉलेज गया है। जब मैं कॉलेज गया था तो मैं कॉलेज में घुसने के अगले दिन ही मेरे इतने सारे रिश्ते आने वाले थे,
1: ओ
0: क्योंकि रिश्तेदारियों में कोई था नहीं जो
1: हाँ,
0: कॉलेज
1: इतना
0: जा
1: पढ़ा
0: रहा
1: लिखा और एमएनसी में जॉब
0: है।
1: करने वाले।
0: जबकि जबकि जो मेरे साथ के थे वो बता रहे हैं कि मेरे दादाजी वहां के ग्रेजुएट थे, मेरे परदादाजी वहां दरोगा थे, और मैं वहां पहली बार कॉलेज में जा रहा हूँ। वहां पे मुझे शर्म लग रही थी कि हम कितने पीछे हैं, लेकिन मेरे घर वालों को लग रहा था कि हम कहाँ पहुंच गए चांद
1: हाँ,
0: पे।
1: प्राउड फीलिंग रही होगी।
0: प्राउड फील कर रहे थे, घर वालों को उम्मीद थी। और जब जॉब लगती है किसी की, पहली बार कोई जॉब करता है तो अलग बात होती है। तो जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि जॉब छोड़ना मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आपके पास खोने को कुछ है ही नहीं तो आपको डर किस बात का, जॉब ही तो अगले साल फिर लग जाएगी, यहाँ छोड़ के कहीं और लग जाएगी। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जस्टिफाई कैसे करूँ। तो उन दिनों में क्या था, ये 2016 से 18 जॉब किया था, तो 18 में जब मैंने जॉब छोड़ी तो नक्सली वाला कुछ चल रहा था इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरफ, झारखंड की तरफ। मैं जॉब छोड़ चुका था, और मैं जॉब छोड़ने के 1 महीने तक मैं घर से उसी समय निकलता था जिस समय जॉब के लिए निकलता था,
1: अच्छा,
0: और उसी समय घर पे आता था जिस समय जॉब से आता था,
1: तो क्या बताया नहीं
0: ताकि
1: था
0: घर
1: घर
0: वालों को
1: पे?
0: रियलाइज ना हो। और मैं
1: अच्छा,
0: करता क्या था उस बीच, कि कहीं पे कोई पर्यावरण का सेमिनार हो रहा है, एक दो भैया थे जो काम कर रहे थे उनके ऑफिस पे जाके बैठता था, कहीं ऐसा प्रोग्राम चल रहा है उसको जाके सुनना है, और कई बार उधर से मेट्रो में बैठ के आता था, यहाँ एक सीपी में बीच में गोल चक्कर है बहुत बड़ा सा, उस पे जाके बैठ जाता था, तो वो मेरा काम था। तो मैंने फिर एक दिन ऐसे ही कहा अपनी मम्मी से कि वहां जो है मेरा ट्रांसफर उधर हो रहा है छत्तीसगढ़। तो मम्मी ने पूछा छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है, क्योंकि मम्मी तो हमारी कभी स्कूल देखी नहीं, कैसा होता है स्कूल, उन्होंने छत्तीसगढ़ क्या, उन्होंने अपने नोएडा के बाहर कभी जाके नहीं देखा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा छत्तीसगढ़ वही जगह है जहाँ पे आजकल नक्सली और बहुत हमले हो रहे हैं जो टीवी में देखा था। तो उसने कहा, नहीं नहीं बेटा वहां नहीं जाना, तुम जॉब छोड़ दो कहीं और ढूंढ लो। तो मैंने कहा
1: अच्छा
0: ठीक है, कल छोड़ दो वहां। तो
1: तो
0: मैंने
1: पहले आपने पूरा
0: देखा
1: वो भूमिका तैयार की,
0: हाँ,
1: उसके बाद
0: क्योंकि
1: बताया।
0: जस्टिफाई करने में मुझे समय लगा उसको, कि उनको बताऊं कैसे, है ना, मैं बोलूंगा क्या, हाल तो मेरी जॉब मेरा डिसीजन वो वाला नहीं है, बट हम गांव के लोग हैं, हमें पेरेंट्स को भी
1: पूछना
0: साथ
1: होता है।
0: लेके चलना है, को भी बुरा नहीं फील कराना है, उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई है हमसे हमारे। लेकिन पिताजी इस काम से बिल्कुल ना खुश थे, वो मुझसे नहीं कहते थे लेकिन मेरी मम्मी को बहुत डांटते थे, तुम्हारी वजह से ये कर रहा है, तुम बोलती नहीं हो कुछ, ही है घर का नाश हो जाएगा, ये है वो है। तो
1: ऑब्वियसली लगता है कि बेटा
0: हाँ,
1: इंडिपेंडेंट हुआ,
0: बेटा जो
1: जॉब
0: है
1: कर रहा
0: वो
1: है तो।
0: हाँ छोड़ के गलत डायरेक्शन में जा रहा है ना, उनके लिए गलत डायरेक्शन थे, और कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि बच्चा इनसिक्योर फील्ड की तरफ।
1: टाइप
0: तो कई बार

0: ऐसा होता था कि न्यूज पेपर में मेरा आता था, आज इंटरव्यू देकर आया हूँ तो कल आएगा ही आएगा, तो मैं गली के बाहर खड़ा हो जाता था, न्यूज पेपर वाले को रोकता था, वो पेज फाड़ लेता
1: पिताजी
0: था और
1: तक ना
0: बोलता था हाँ कि तुम ले
1: पहुंचे।
0: जाओ अब इसको, तो पिताजी तक नहीं पहुंचता था। लेकिन भाई गाँव में आया तो गाँव वाले खुद ही आ जाते थे, आता तुम्हारे लड़के का अखबार।
1: तो वो बताइए मुझे घटना कि जब मन की बात में पीएम मोदी ने आपका जिक्र किया तो फिर क्या माहौल था, आपने सुना था वो?
0: नहीं मैं तो सुन नहीं पाया था उस दिन, मैं अपने घर पे ही था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। मेरा भतीजा आया था, मैं ऊपर था फर्स्ट फ्लोर पे, वो ग्राउंड फ्लोर पे था, तो वो भगा भगा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है। तो मैंने तुरंत लैपटॉप साइड में रखा और मैं भगा भगा नीचे गया, और जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया। तो मैंने उसको बोला कि तुम मजाक क्यों करते हो, अरे नहीं अंकल अभी देखा था, सच में देखा था मैंने। तो मैं वापिस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था और
1: अच्छा
0: बार बार बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे, कॉल थे, मेरे जितने भी लोग मुझे जानते थे आसपास के तो सब लोग कॉल करके बधाई देना चाहते थे।
1: वाह,
0: तो जब मैंने एक दो मैसेज पढ़ा तो फिर मुझे अपने भतीजे की बात पे
1: यकीन
0: यकीन
1: आया।
0: आया कि हाँ वो सही कह रहा था। उसके बाद से जो लोग कुछ मजाक उड़ाते थे क्या ये ऐसा काम करते हो ये करते हो,
1: वही लोग
0: तो
1: अप्रिशिएट कर
0: मेरे
1: रहे थे।
0: पास एक जस्टिफिकेशन और आ गया
1: हाँ
0: कि जब प्रधानमंत्री जी तारीफ कर सकते हैं तो आप कौन हो के मजाक उड़ाने वाले।
1: और आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था?
0: देखो गांव में ना हमारे एक बेटा और पिताजी के बीच में इस तरह के कन्वर्सेशन होते नहीं है, उनको मनी मन खुशी हुई होगी लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं कि बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ऐसा सिर्फ हम टीवियों में देखते हैं कि पिताजी कहते हैं जाके।
1: तो जब इतने बड़े लेवल पे आपकी तारीफ आ गई और सब कुछ अच्छा चलने लगा, तो आपने अपने पिताजी को फिर कैसे कन्विंस किया?
0: नहीं मैं तो क्या करता था कि जैसे शुरू में जब तालाबों की बात आती थी तो हमारे पिताजी चाहते थे कि तुम कुछ भी करो लेकिन ऐसा काम करो जिससे पैसा आए, तो मैं इसलिए पढ़ाया ताकि तुम पैसे कमा सको। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं जब भी तालाबों के बारे में वो पूछते थे तो मैं कहता था मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मछली पालन में बहुत पैसा आए,
1: अच्छा।
0: हाँ इससे मछली पालन करेंगे और करोड़ों रुपए कमाऊंगा मैं। तो वो उस बात से खुश हो जाते थे, अच्छा मछली पालन का काम करना है, मैंने कहा हाँ जी मैंने सुना उसमें बहुत पैसा है, 1 साल ट्राई कर लेता हूँ, हो जाएगा तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं। तो मेरे पिताजी को किसी भी काम से कोई दिक्कत नहीं है जिससे पैसा आए, तो इसलिए मैंने तालाबों के काम को मछली पालन से जोड़ के मैंने उनको जब बताया तो ही सैड की ठीक है भाई मछली पालन में मैंने भी सुना है बहुत पैसा है।
1: तो कभी फिर ट्राई किया आपने सच में मछली पालन?
0: नहीं मेरे साथ के करते हैं ना,
1: अच्छा
0: मैंने मछली पालन कराया, अगर तालाबों को सस्टेन कराना था तो किसी ना किसी तरह से एक्वा कल्चर से जोड़ना है, अदरवाइज तो आज आप तालाब साफ करेंगे अगले साल फिर उतना ही भर जाएगा, आप 1 साल में तालाब ही तो रेस्टोर कर सकते हैं, लोगों का माइंड सेट थोड़ी ना रेस्टोर कर सकते हैं, जो लोग कचरा फेंक रहे हैं उनको दिमाग को थोड़ा ना अंडू कर सकते हैं कि आज से कचरा फेंकना बंद, क्योंकि आदत खराब होती है धीरे धीरे, धीरे खराब होती है तो धीरे धीरे सही भी होती है। अब हमारा हाथ चलता ही नहीं है डस्टबिन की तरफ, अब तो माननीय प्रधानमंत्री ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और ये स्वच्छ भारत मिशन चलाया तो थोड़ा थोड़ा आदत में आ रहा है डस्टबिन की तरफ, अदरवाइज तो फेंकने की तरफ ही चलता है। मैं तो जब कॉलेज में जाता हूँ स्कूल में जाता हूँ बच्चों को उदाहरण देता हूँ कि भाई अगर मैं आपको आज होमवर्क देके आऊँ, होमवर्क देके जा रहा हूँ कि आपको नेचुरल सीनरी ड्रॉ करके लानी है कल, तो मुझे पता है 90% बच्चे क्या ड्रॉ करके लाएंगे, दो पहाड़ पीछे से उड़ता हुआ, एक पक्षी आगे झोपड़ी, एक
1: सूरज
0: छोटा सा
1: निकल रहा
0: पॉन्ड,
1: है।
0: सूरज निकल रहा है, कहाँ से आया ये, है ना, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही बनाते आ रहे हैं हम, लेकिन अब वो सब झूठ है, अब ऐसे तालाब नहीं बचे हैं, अब तालाबों की असली पिक्चर बनाइए ना कि तालाब कैसे कचरे से भरे हुए हैं।
1: तो अब तक आपने कितने तालाब साफ किए हैं और उन्हें पुनर्जीवन दिया है?
0: अभी तक तो हम 100 से ज्यादा तालाब कर चुके हैं
1: अच्छा
0: और ये 100 तालाब कोई बड़ा है कोई छोटा है ना, कोई 50-50 एकड़ के भी है जिसमें एक में से भी 50 तालाब निकल सकते हैं छोटे छोटे है क्या, जैसे उत्तर भारत में आप रहेंगे तो यहाँ पे अगर 500 एकड़ की भी कोई वाटर बॉडी है ना, ह्यूज वाटर बॉडी, उसको भी तालाब ही बोलेंगे, वैसे आमतौर पर तालाब एक छोटी वाटर बॉडी है और झील बड़ी वाटर बॉडी है, लेकिन यहाँ पे उत्तर भारत में आप चाहे कितनी भी बड़ी वाटर बॉडी ले लीजिए उसको तालाब ही बोलेंगे। उदाहरण के लिए कहता हूँ भोपाल का बड़ा तालाब, आप उसको इस किनारे खड़ा होके देखिए आपको दूसरा किनारा ही नजर नहीं आता और वो समुन्दर लगता है आपको, लेकिन नाम क्या है, बड़ा तालाब, उससे थोड़ा छोटा होता तो छोटा तालाब, तो इसलिए यहाँ अपने झील भी रिवाइव करिए तो वो भी तालाब ही है। तो ऐसे कर करके हमने 100 से ज्यादा तालाब अभी तक रिवाइव किए और अभी हम 11 स्टेट्स में काम कर रहे हैं एक साथ,
1: अच्छा
0: हमने एक गाँव से शुरू किया था लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, पौंडीचेरी, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, एवरीवेयर वी आर वर्किंग।
1: आने वाले समय में किस किस जगह को, कौन से तालाब आपने टारगेट किए कि अब यहाँ पर काम करना
0: नहीं
1: है?
0: टारगेट हम नहीं करते हैं, हम क्या है अगली साल के लिए हमेशा एक नई लिस्ट बनाते हैं
1: अच्छा
0: और वो लिस्ट बनती है लोग

0: आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। भाई मान लो आप स्पॉन्सर है, आप किसी गांव से निकले हैं और आप यूएस में रहते हैं और आपके पास अभी पैसे की कोई कमी नहीं है और आप बोलते हैं मुझे अपने गांव के तालाब की बहुत याद आती है, मैं जिस तालाब में नहाया हूं अभी वो एकदम कचरा घर बन चुका है, मैं इसको रिवाइव कराना चाहता हूं। अच्छा। तो हमारी टीम जाती है, उसको रिवाइव करती है, जो खर्चा होता है वो देते हैं।
1: अच्छा, तो इस तरह से फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है और
0: फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। दूसरा है कुछ कॉर्पोरेट है, मान लो मैं एक कंपनी हूँ और मैंने इस जिले में एक अपनी कंपनी लगाई हुई है और मैं पूरा मेरा प्रोडक्शन ग्राउंड वाटर से है, मान लो मैं कोल्ड ड्रिंक ही बना रहा हूँ, मैं पैक्ड वाटर बना रहा हूँ, तो मैंने ऊपर वाला प्लॉट खरीदा है उस जिले का या उस गांव का, मैंने नीचे का पानी नहीं खरीदा है, क्योंकि जब मैं वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ स्पेशली ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो वो उसी प्लॉट का पानी नहीं कि निकल के आता है, वो वहां से 1 किलोमीटर के दूर का भी पानी आता है, वो 500 मीटर दूर का भी, लेकिन वो तो आपने खरीदा नहीं है, आपने तो सिर्फ वो प्लॉट खरीदा है। तो फिर आपकी एक कॉर्पोरेट जिम्मेदारी बनती है कि जिस क्षेत्र का आप रिसोर्सिस यूज कर रहे हो, जिस पर पब्लिक का हक था, यहाँ की हवा पर पब्लिक का हक है, जितना एक कंपनी के मालिक का हक है उतना ही गांव के एक आदमी का हक है, तो आप कम्युनिटी रिसोर्सिस को यूज कर रहे हो फ्री में, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस सोसाइटी के लिए, उस क्षेत्र के लिए आप कुछ करें। इसीलिए CSR लाया गया, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो बड़े कॉर्पोरेट है वो अपने प्रॉफिट का 2% निकाल के अलग रखते हैं और उस क्षेत्र के लिए खर्च करते हैं जहां पे उनका प्लांट काम कर रहा है, और ये मैंडेटरी है, ये हर कॉर्पोरेट को करना ही करना है। हम क्या करते हैं, उन कॉर्पोरेट को बोलते हैं कि भाई आपकी फैक्ट्री यहाँ पे है, आपसे 20 किलोमीटर दूर एक तालाब है जो गांव वाले रिवाइव कराना चाहते हैं और हम उसको रिवाइव करने के लिए रेडी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है हमें सपोर्ट करने की। तो वो CSR के अंतर्गत जरूरी है, सब मदद करते हैं, कुछ कॉर्पोरेट हमारी मदद करते हैं, और ऐसे करते करते अभी तक हमारा 60 से ज्यादा कॉर्पोरेट पार्टनर्स हमारे बन चुके हैं अलग अलग क्षेत्र।
1: जैसे मेरे जैसे कोई आम जन के लोग अगर जुड़ना चाहें सफाई के या रिवाइव करने के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं?
0: देखो शुरुआत तो घर से होती है, अगर तालाब में जो कचरा है वो भी हर इंडिविजुअल का ही कचरा है ना, किसी ने जाके एक ट्रक कचरा तो डाला नहीं है एक साथ, तो हमारा हर घर से एक एक बोतल निकलती है जब वहाँ पे एक ट्रक कचरा होता है। तो जब मैं स्कूलों में जाता हूँ, मैं बच्चों को बोलता हूँ अगर आपने 5 किलो प्लास्टिक स्कूल में इकट्ठा कर लिया तो मतलब आपने 1 स्क्वायर मीटर पॉन्ड आपने साफ
1: कर लिया, बेहतर है कि उसे गंदा ही ना किया जाए।
0: हाँ, तो तालाब को रिवाइव करने के 2 तरीके हैं, एक आप जाके तालाब से कचरा निकाले, एक आप तालाब में कचरा जाने ही ना दे। तो जब आप जाने नहीं देते तो वो ज्यादा एफिशिएंट होता है और ज्यादा काम का होता है, इसलिए हम स्कूल के बच्चों को जोड़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे ही बदलाव ला पाएंगे, इसके अलावा और कोई, क्योंकि जब आप बड़े पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं और एक छोटे पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं, मतलब अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो बड़े पेड़ का सक्सेस रेट बहुत 5-10% होता है, बड़े पेड़ नहीं बच पाते, छोटे पेड़ तो आप लगाते ही रहते हैं, जंगल लगाइए, तो वो एडॉप्ट कर लेते हैं नई जगह को, उनको अंदर सीखने की क्षमता होती है। तो इसलिए हम बच्चों को जाके बहुत सारी वर्कशॉप करते हैं, हम बच्चों के साथ जाके बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो तालाबों को गंदा ना हो।
1: मतलब हर बड़े काम की शुरुआत जो है वो छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव से की जा सकती है। रामवीर जी, आप यहाँ पर आए और हमारे पॉडकास्ट में इतने सहज तरीके से आपने इतनी अच्छी बातें बताई जल संरक्षण के बारे में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप भी ये छोटे छोटे बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं, कचरा कम फैलाएं ताकि जो हमारी वाटर बॉडीज है वो गंदी ना हो। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए नीति को, नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत पॉन्डमैन के नाम से प्रसिद्ध रामवीर तंवर के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 9:40 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम के तहत आज हम आपको TR महालिंगम का कर्नाटक शैली में बांसुरी वादन सुनवा रहे हैं। इनके साथ वॉयलिन पर दावाराम मंगथाइरू, मृदंगम पर करईकुड़ी आर मणि तथा घटम पर गुरुमूर्ति ने संगति की है। तो आइए पहले सुनते हैं TR महालिंगम का बांसुरी पर बजाया राग केदार कौला, जो आदि ताल में निबद्ध है कृति त्याग राजा के हैं।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं TR महालिंगम का बांसुरी पर बजाया राग केदार कलावती, जो आदि ताल में निबद्ध है, कृति त्याग राजा के हैं।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशेश। इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है ब्रिजेश शांदल्य और स्वाति शर्मा की आवाज़ों में तनु वट्स मनु फिल्म से। गीत रचना वायु की है, संगीत तनिष्क और वायु की है।

अगली पेशकश सनम तेरी कसम फिल्म से, आवाज़ है अरिजीत सिंह और शब्बीर अहमद की। लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

मन कस्तूरी रे। जग दस्तूरी रे।

अमित किलाम और साथियों की आवाज़ों में सुन रहे थे मासन फिल्म का ये गीत। इस गीत की रचना वरुण ग्रोवर की थी। अब आपको सुनवाते हैं बेनी दयाल की आवाज़ में ये गीत। फिल्म है ABCD2। इस गीत को लिखा है मयूर पुरी ने, धुन तैयार किया है सचिन जिगर ने।

मुख्तियार के बोलो व संगीतबद्ध किया हुआ फाइंडिंग फनी फिल्म से आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

अब सुनिए फिल्म डुशुम का एक गीत, धुन दिया है प्रीतम ने, गीत रचना मयूर पुरी की, आवाजें हैं अंतरा मित्रा और अमन त्रिखा की।

आइए अब सुनते हैं मनोज मुंताशिर के लिखे इस गीत को, संगीत से सजाया है अबीज नलानी ने, जिसे गाया है शेखर रावजियानी ने, फिल्म का नाम है अखीरा।

हैप्पी भाग जाएगी फिल्म से आइए सुनते हैं अल्तामश फरीदी की आवाज़ में ये गीत, जिसे लिखा है मुद्दासर अजीज़ ने, संगीत है सोहेल सेन का।

अर्कू के संगीत निर्देशन में तैयार, आइए सुनते हैं अंकित तिवारी और साथियों की आवाज़ों में कुछ कुछ लोचा है फिल्म का गीत।

स्वानंद किरकिरे के बोलों को संगीतबद्ध किया है इलाइया राजा ने, स्वर दिया है अमिताभ बच्चन ने, इसको हमने लिया है शमिता फिल्म से।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम का आगाज़ हम कर रहे हैं साजन फिल्म से। धुन दिया है नदीम शरावन ने, बोल लिखे हैं समीर ने, जिसे गाया है SP बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक ने।

अब सुनते हैं खुदगर्ज़ फिल्म से एक गीत। इंदिवर के बोलों को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने, स्वर दिया है नितिन मुकेश और मोहम्मद अजीज ने।

अब आपको सुनवाते हैं फिल्म बागी से एक गीत। धुन दिया है आनंद मिलिंद ने, गीत रचना समीर की है, गायक व कलाकार है अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार।

लव लेटर फिल्म से आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत, जिसे लिखा है अनजान ने, संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन अब यही समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11:30 होने वाले हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत अतीत। इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में, कहीं और चल फिल्म से। गीत रचना शैलेंद्र की है, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

अगली पेशकश छाया फिल्म से, आवाज़ें ललित मोहम्मद की, राजेंद्र किशन के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है शैलेल चौधरी ने।

मन्ना डे की आवाज़ में सुनिए चिंगारी फिल्म का गीत। इस गीत की रचना शाहिर ने की है, संगीत है रवि का।

सहज बिहारी के बोलों को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने, स्वर दिया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। इसको हमने लिया है शतरंज फिल्म से। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

अब अंत में सुनिए चंदन फिल्म का गीत। धुन तैयार किया है सोनी ओमी ने, जिसे गाया है मुकेश ने।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत अतीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजने को है। अब सुनिए तेलुगु कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

0: പ്രക്ഷേപണം വീണ്ടും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30. നമസ്കാരം.
1: श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे. ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है. दोपहर के 1 बजे हैं. कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे. कृपया प्रतीक्षा कीजिए.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का यह प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि रॉकेट तेज और मांग के अनुरूप प्रक्षेपण सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं, बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नीति को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। ये कार्रवाई राज्य सरकार के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यूफी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यूफी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की

0: कार्यक्रम जारी रहेगा, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत के अंतर्गत सीमा शर्मा और मन्ना डे की आवाज़ में ये गज़लें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए आपको अपना नाम, पता, फिल्म का नाम व गाने के बोल लिखकर हमें भेजना होगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमारा नंबर है 9474234000। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजा है शिवा, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि, दीपाली, गोपनी। तो आइए श्रोताओं, देर ना करते हुए सुनते हैं इनके पसंद का गीत।

सिद्धार्थ अर्चनाता हीरामन प्रणय, हमारे इन दोस्तों ने फरमाइश की है कुछ कुछ होता है फिल्म से। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

अगला गीत आइए सुनते हैं आराधना फिल्म से। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजा है नरवेल जिला बुल्डाना से PS नहावकर निर्मला विशाल ने।

महाराष्ट्र से अगला फरमाइश गीत हमें भेजा है रियांस रक्षता प्रतीक्षा शैलेश ने। ये श्रोता सुनना चाहते हैं राम अवतार फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश गीत हमें भेजा है मोहम्मद यासीन साइमा हसन मिफ्रा बेबी चाहत ने। ये सुनना चाहते हैं मदन मोहन की आवाज़ में चिराग फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप आपके नाम फिल्मी पैगाम फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने को है। कुछ ही क्षणों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम, बहुत बहुत बधाई। दो काम किए, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक

0: और महत्वपूर्ण कदम है।
1: कंग्रेचुलेशंस इन स्पेस फॉर फैसिलिटेटिंग
2: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
1: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी
0: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
3: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में दो दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
4: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
4: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
0: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
4: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तीन दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700

सौ करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4 करोड़ 25 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4 करोड़ 25 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य

0: 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दीं। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब सुनिए मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी जानकारी में बताया जाता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के तट पर वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुछ एक स्थानों पर वर्षा होने तथा गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:31 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्मी संगीत का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

अभी आप फिल्म संगीत नॉनस्टॉप म्यूजिक का कार्यक्रम सुन रहे थे। इस समय शाम के 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे सैनिक भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए स्वदेश फिल्म का एक गीत। इस गीत को स्वर दिया है AR रहमान ने, बोल है जावेद अख्तर के।

अगली पेशकश किस्मत फिल्म से, जिसे आवाज़ें दी है आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा ने, बोल है देव कोहली का।

महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में सुनिए प्रसून जोशी का लिखा हुआ गीत। फिल्म का नाम है फना। धुन दिया है जतिन ललित ने।

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में तैयार, आइए सुनते हैं इंतहां फिल्म का गीत। बोल है राहत इंदौरी की, जिसे गाया है सोनू निगम ने।

अब आपको सुनवाते हैं विशाल ददलानी और सलीम मर्चेंट की आवाज़ों में संदीप सिंह का लिखा हुआ ये गीत, जिसे संगीत से सजाया है शिवम ने। इसको हमने लिया है मेरी कॉम फिल्म से।

अब सुनिए इंसाफ द जस्टिस फिल्म से गीत सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में, जिसे लिखा है समीर ने, धुन दिया है निखिल विनय ने।

सैनिकों के लिए यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल।
2: 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे है। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो श्रोताओं, चलिए सभा की शुरुआत में सबसे पहले सुनते हैं निकोबारी कार्यक्रम।

हाय दोस्तों, स्वागत है आपका लम्हे प्रोग्राम में और मैं हूँ आपका आरजे चेतन। आसपास के वातावरण साफ सुथरा हो तो किसे अच्छा नहीं लगता है, और इसमें नगर निगम और स्वच्छता कर्मी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो तो अपने तरफ से पूरा योगदान देते हैं, परंतु इसके बावजूद कुछ लोग गंदगी और कचरा करने से बाज नहीं आते। वह भी इंसान ही है, आखिर कितना साफ करेंगे। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास को साफ रखने की जिम्मेदारी स्वयं ही करना है, ताकि साफ सफाई से हम स्वस्थ रहे और हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहे। आसपास की रखो सफाई, इसमें हम सबकी भलाई। स्वच्छ रखेंगे वातावरण, स्वस्थ रहेंगे हम हर पल हर क्षण। घर को हर दिन करें सफाई, हमें हमारे

0: घर के हर रोज सफाई करना चाहिए। वह कचरा इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, इससे कीटाणु पनपते हैं और बीमारियां फैलती है। घर में कुछ ऐसे कोने होते हैं जिसे नियमित रूप से सफाई करना चाहिए, जैसे रसोई घर। रसोई घर जहां हमारा भोजन इत्यादि बनता है, उसकी सफाई नियमित होना चाहिए। बर्तन को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए। गैस स्टैंड, बर्तन रखने की जगह, सभी जगह साफ करना चाहिए। रोज किचन की झाड़ू लगाना चाहिए ताकि खाने के साथ हम कोई गंदगी अपने खाने में आने न दें, और साफ सुथरा भोजन ही खाए, साफ सुथरा किचन रखें। नियमित पोंछा और धोने जैसे सामान को धोए, बाथरूम को रोज साफ करें, दीवारें साफ करें, कुछ अच्छे से एंटीमाइक्रोबियल यूज करके साफ करें तो और भी अच्छा है। जहाँ हम हमारी गाड़ी रखते हैं वहाँ रोज झाड़ू लगाए और बगीचे में सफाई रखे हो, कोई भी कचरा और प्रयोग में न आने वाले सामान को इकट्ठा न होने दे। यदि हम हमारे किचन, बाथरूम और पूरे घर में साफ सफाई नहीं रखेंगे तो चचुंडर, कॉकरोच, मक्खी, चींटियाँ, मच्छर आदि पनपते हैं, और साफ सफाई में अगर हम लापरवाही बरतते हैं, बर्तन और अन्य सामानों के साथ ये गंदगी हमारे मुंह में जाते हैं, जिससे हमें कई तरह की बीमारियां पकड़ लेते हैं। यदि मच्छर पनपते हैं तो मलेरिया, कॉलरा, निमोनिया, पीलिया या सब बीमारी होती है जो कि गंदगी की वजह से फैलती है। इसीलिए हमें हमारा घर और आंगन की सफाई पर नियमित ध्यान देना चाहिए। इसीलिए पूरे घर पर नियमित झाड़ू और पोंछा लगाना चाहिए। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। धूल इत्यादि को पहुंचने और बगीचे में कहीं भी पानी नहीं होने देना चाहिए। किसी भी तरह की गंदगी बीमारी का लक्षण होता है, इसीलिए बचना चाहिए और नियमित साफ सफाई करना चाहिए। कुछ लोगों का सोचना है कि जहां गरीब व्यक्ति रहते हैं वही ज्यादा गंदगी होती है, परंतु ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि गरीबी और साफ सफाई का दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। गरीबी तो इंसान की मजबूरी है, परंतु सफाई तो उसकी जिम्मेदारी है। इसके लिए अमीर या गरीब मायने नहीं रखता, और घर की साफ सफाई में सबकी बराबरी से हाथ बांटने की मंशा होनी चाहिए। केवल घर के बड़े, जिसमें माँ होती है, माँ घर के हर काम को करती है, तो क्या ये घर केवल माँ का होता है? उसमें रहने वाले सभी सदस्यों का नहीं होता है। इसीलिए सभी सदस्यों को मिलजुल कर इसकी जिम्मेदारी उठाना चाहिए, और यह सोच परिवार के हर सदस्य के नजरिए पर निर्भर करता है। बचपन से ही बच्चों की देखभाल माता पिता और घर के अन्य सदस्य करते हैं, लेकिन बच्चे जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उन्हें आपको सिखाना होगा कि साफ सफाई रखना जरूरी है। बचपन से ही उसे अपनी सफाई की शिक्षा दे, साथ ही उसे अपने आसपास की जगह को साफ रखना सिखाए। उसे बताए कि अगर साफ सफाई नहीं रखी जाएगी तो बीमारी होगी, और बीमारी होगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए उसे बताए कि अपनी साफ सफाई रखे और अपने आसपास की जगह को भी साफ रखे। साफ सफाई में अपने बड़ों की मदद करे, इससे वह भी साफ सफाई करना सीखेगा और स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।
1: साफ सफाई इंसान की फितरत होती है। वह अपने घर के आसपास तो साफ रखते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं घर ही को अपना समझते और अपने घर के बाहर झूठा और जो भी कचरा होता है उठाकर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी केवल घर के अंदर तक ही सीमित है। इसीलिए अपना फर्ज भूल जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि सड़क, अपने घर का बगीचा साफ रखना उनकी जिम्मेदारी है। सड़क से ही गंदगी हमारे घर तक आती है, और इसके साथ ही कई तरह की बीमारियां भी लेकर आती है। इसीलिए स्वयं साफ सफाई रखें, और जो कर्मचारी और

0: नगर निगम की गाड़ियाँ आती है, उसमें अपने घर को साफ रखकर उन्हें अपना पूरा योगदान प्रदान करें। इस प्रकार हम हमारे घर के और आसपास की सफाई, हमारे स्वास्थ्य के साथ ही वातावरण को भी साफ रखते हैं, और इसका प्रथम पाठ हम हमारे घर से ही मिलता है। यदि हम हमारे घर को और हमारे आसपास के वातावरण को साफ रखेंगे तो धीरे धीरे शहर और शहर देश सभी जगह सफाई दिखने लगेगा। प्रदूषण में जमा हमारे देश की गिनती निचले स्तर पर की जाती है, वही हमें आगे और आगे प्रथम स्थान पर लाना होगा, और इसकी शुरुआत हमें हमारे आसपास के वातावरण से शुरू करना होगा। देश की सफाई एकमात्र सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है। क्या इसमें नागरिकों की कोई भूमिका नहीं है? हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। विद दिस लवली कोट, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे इन लम्हे प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 14वीं कड़ी सुन रहे थे।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। अब सुनते हैं आज व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम होगा। बंगला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। शाम 6 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम किसानवाणी, जिसमें बातचीत होगी कृषि कार्य से जुड़ी महिला श्रीमती इस्तर से। 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम आमने सामने। 6:45 का समय रहेगा झलकी का। 7:05 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचार बुलेटिन, मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाओं से अवगत कराया जाएगा शाम 7:15 पर। आज शाम 7:20 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया के तहत फिल्मी गीत। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा 7:30। रात 8 बजे आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। 8:30 पर रोजगार समाचार और चंद देशभक्ति गीत पेश किए जाएंगे। इसके अलावा 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम में देवव्रत मिश्रा

रात सितार वादन आप सुन सकते हैं, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे आप FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत भी सुन सकते हैं, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। रात 11 बजे मौसम की जानकारी के बाद हमारी स्थानीय सभा की समाप्ति होगी। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

अब सुनते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। 5:55 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम एग्री टिप्स, जिसमें कल जानकारी का विषय रहेगा इंजन व ट्रैक्टर का रखरखाव। 6:10 पर जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। 6:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष, जो केंद्रित होगा इश्क शीर्षक पर। रामचरितमानस गान की 304वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:30 पर। 6:40 पर वतन के गीत, मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:50 पर। 7:05 पर प्रादेशिक समाचार। 7:15 पर आप सुन सकते हैं फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागनी। इसी समय FM 100.9 MHz पर आप प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत भी सुन सकते हैं। 7:30 पर कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग अंडमान, जो मीडियम वेव के साथ FM 100.9 MHz पर भी प्रसारित किया जाएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 8:30 पर मीनू पुरुषोत्तम और रूना लैला का गायन आप सुन सकते हैं। 9:00 सुनिए कार्यक्रम बाल जगत। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित शिव कुमार शर्मा का हिंदुस्तानी शैली में संतूर वादन विभास पेश किया जाएगा। लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश आप सुन सकते हैं कल दिन में 10:00। 11:00 सुनिए कार्यक्रम सलाम सोल्जर्स। जगजीत सिंह के गाय गजल पेश किए जाएंगे 11:30 पर। 12:00 तेलुगु कार्यक्रम। 12:30 का समय रहेगा मलयालम कार्यक्रम का। कल 1:10 पर सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें कलाकार होंगे मेहंदी हसन और कमलिनी मल्होत्रा। 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम घर संसार। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद हमारी स्थानीय सभा की समाप्ति होगी, लेकिन हम आपसे जुड़े रहेंगे FM 100.9 MHz पर कार्यक्रम गीत लहरी के साथ। 3:00 रहेगा एल्बम टाइम और 3:30 का समय रहेगा बोलते नगमों का कार्यक्रम यूं ही गाते रहो का। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 15वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम आप सुन सकते हैं 4:45 पर। शाम 5:00 आनंद लीजिए तमिल कार्यक्रम का और 5:30 पर बंगला कार्यक्रम होगा। शाम 6:00 व्हाट्सएप पर आधारित महिलाओं की फरमाइश पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संगीत संगनी। 6:30 पर धरती के गीत कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे राजस्थानी लोकगीत। 6:45 पर देशगान। 7:05 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार बुलेटिन, मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाओं से आपको अवगत कराया जाएगा 7:15 पर। 7:20 पर कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया, जिसमें आप फिल्मी गीत सुनेंगे। 7:30 पर आप सुन सकते हैं युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी। रात 8:00 चित्रपट संगीत। 8:30 पर रोजगार समाचार और चंद देशभक्ति गीत पेश किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9:00 News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर संसद के समक्ष मुद्दे और रात 10:00 रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विदुषी SRS बालामणि ईश्वर का कर्नाटक गायन आप सुन सकते हैं, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। इस समय शाम के 4:45 हुई है। अब समय है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम बहारों की शाम का।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने लिया है सलमा पे दिल आया फिल्म से। आवाज़ें लता मंगेशकर और कुमार सानू की है, गीत रचना सावन कुमार की और संगीत आदेश श्रीवास्तव का।

श्रोताओं, आप सुनते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे संगीत से सजाया है इस्माइल दरबार ने। बोल प्रकाश कपाड़िया के हैं, स्वर दिया कविता सुब्रमण्यम और के ने। फिल्म है देवदास।

0: श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे है। अब लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி நிலையம் வழங்கும் தமிழ் அமுதம் வணக்கம் நேயர்களே.

श्रोताओं, अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5:10 होने वाले हैं। अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

बिल्कुल चलता रहेगा गाते गुनगुनाते का ये सफर, लेकिन पहले शुरुआत तो हो, बिल्कुल शुरुआत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही सफर का जो मजा है वो आना शुरू होता है। 5:11:40 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1। आज शनिवार की जानदार शानदार शाम आपके साथ मैं सीमा वर्मा, और हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे 80s और 90s के गाने।

हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।

फिल्म आपके साथ का ये गीत। और साथियों, एक टाइम ऐसा था, दौर होता है हर किसी कलाकार का, एक अपना दौर होता है, ये समय वो था जब शब्बीर कुमार के गाने बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते थे और हर किसी को उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत डिफरेंट सी लगी और उनका जो भी गाना आता था फिल्मों में वो हिट हो जाता था, फिर चाहे वो जैसा भी क्यों ना हो। उनमें से एक गीत ये अभी तक हमने आपको सुनाया। और वैसे हम आपको बताएं कि आपके साथ के बाकी के गाने भी बहुत ज़बरदस्त सुपरहिट हुए। बहरहाल, आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला गीत आप तक पहुंचाते हैं। अगले गीत के साथ एक छोटी सी कहानी जुड़ी है और वो कहानी कहती है कि ज़िंदगी में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। आपने सोचा कुछ और होता है, हो कुछ और जाता है, और ऐसा ही अनुराधा पौडवाल जी के साथ हुआ। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि वो फिल्मों में गाएंगी और नसीब में था तो ये हुआ। अब कैसे हुआ? बस एक रोज़ उनके पति घर आए और उन्होंने कहा कि वो किचन में काम कर रही थी, उन्होंने कहा कि एक छोटा सा श्लोक है, ज़रा इसे गा दो, मुझे लेकर जाना है। और वो किस चीज़ का था? अभिमान फिल्म की रिकॉर्डिंग चल रही थी, एसडी बर्मन साहब ने उनसे कहा था कि ये जो छोटा सा श्लोक है इसको अरेंज करके तुम ले आना। तो ऐसा ही होता है, हम घर में एक दूसरे का सपोर्ट ले लेते हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ज़रा सा गा दो इसको, एक थोड़ा सा लय में थोड़ा सा गा दो और मुझे कंपोज करना है। उन्होंने किया। अगले दिन वो जब लेकर गए तो एसडी बर्मन साहब ने कहा कि ये किसने गाया है? तो उन्होंने बोला कि ये मेरी पत्नी ने गाया है, अनुराधा ने। कहते अरे मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो बहुत अच्छा गाती हैं, तो बहुत अच्छा गाया है। अब इतने से श्लोक के लिए लता जी को क्या बुलाएंगे हम स्टूडियो में, बहुत अच्छा गाया है, इसी को रहने देते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है अनुराधा पौडवाल की। और ठीक तकरीबन 11-12 साल पहले वो एक ऐसा गीत गाती हैं जो गाना तो लता जी ने था, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग डेट्स और कारण बहुत सारे होते हैं, उसकी वजह से ये गाना अनुराधा जी के हिस्से में आया। और जब आया तो फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री, अंग्रेज़ी में कहते हैं। कौन सा गाना था, है ना? एक्साइटमेंट हो रही है जानने के लिए, आइए सुनते हैं।

0: इस गीत के लास्ट में जो इंस्ट्रूमेंट बज रहा था उसे मैंडोलिन कहते हैं। बहरहाल कभी किसी दूसरे गीत में इस इंस्ट्रूमेंट का जहाँ पर ज़्यादा प्रयोग होगा उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले गीत की तरफ जाने से पहले कुछ खास आप सबके लिए। तुझे देखते ही चेहरा मेरा खिल जाता है, तुझे देखते ही चेहरा मेरा खिल जाता है, जैसे तेरे होने से मुझे सब कुछ मिल जाता है। कैसे बताऊं तू क्या है मेरे लिए, तुझे एक बार देख लूं मेरा दिन बन जाता है।
1: नजर से फूल चुनती है नजर, नजर से फूल चुनती है नजर, आहे

0: गुजर हसी लगने।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। अब सुनते हैं बंगला कार्यक्रम।
2: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र থেকে শুরু করছি আজকের বাংলা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভ 438.6 মিটার অর্থাৎ 684 কিলো হর্স থেকে।

0: श्रोताओं, अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या की 6 बजे है। अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहनों और भाइयों को हमारा नमस्कार। और साथियों, आप सभी का आज के हमारे इस अंक में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। साथियों, कहते हैं कि ईश्वर कभी किसी को बिना कारण कठिनाई नहीं देते। हर परीक्षा के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। आज जो परेशानी आपको रुला रही है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। बस धैर्य रखिए, अच्छे कर्म करते रहें और भगवान पर अपना विश्वास कभी मत छोड़ें। विश्वास रखें, सही समय आने पर सब कुछ आपके पक्ष में बदल जाएगा। तो जीवन धैर्य का ही दूसरा नाम है। जीवन में अगर आप धैर्य रखेंगे तो अपने साथ साथ अपने परिवार का जीवन भी आप खुशहाल बना पाएंगे। साथियों, आज के इन्हीं विचारों के साथ अब हम कार्यक्रम का आगाज करते हुए आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। और साथियों, आज आपको बताना है कि यूरिया द्वारा पुआल के उपचार से क्या

0: आप है। जी हाँ भाइयों, आपने ठीक सुना, हमारा आज का प्रश्न है कि यूरिया द्वारा पुआल के उपचार से क्या लाभ है। हम समझते हैं कि प्रश्न आपने अच्छी तरह से सुन लिया होगा और अब इसका उत्तर भी आप ही को खोजना है। खैर, यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिलता है तो कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें, कार्यक्रम सुनते रहें। कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस प्रश्न का सही जवाब आपको अवश्य ही बताएंगे।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामा

0: योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान साथियों, कैच द रेन अभियान भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय जल संरक्षण अभियान है। इसका उद्देश्य वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को बचाना और उसका अधिकतम उपयोग करना है। अभियान का नारा है, जहां बारिश हो जब भी बारिश हो वर्षा जल को संचित करो। अभियान के मुख्य उद्देश्य हैं भू जल स्तर को सुधारना, जल की बर्बादी को रोकना, तालाबों, कुओं और जलाशय का संरक्षण एवं पुनर्जीवन करना, लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना। और भाइयों, अभियान के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य हैं घरों और सरकारी भवनों में वर्षा के जल संचयन प्रणाली स्थापित करना है, तालाबों, झीलों और कुओं की सफाई एवं मरम्मत करना, नए जल संरक्षण ढांचे बनाना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, गांव और शहरों में जल संरक्षण संबंधी जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। इस अभियान से भविष्य में जल संकट को कम करने में सहायता होगी, किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा, भू जल स्तर बढ़ने से पेयजल की उपलब्धता में भी सुधार होगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। ये अभियान जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। तो साथियों, इस अभियान के साथ जुड़े, जल को संरक्षित करें और जीवन को खुशहाल बनाएं, क्योंकि जल ही जीवन है। किसान साथियों, अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं नमूना घर की रहने वाली श्रीमती ईस्टर जी से, जो एक महिला कृषक हैं और लंबे समय से कृषि कार्यों से जुड़ी हैं। ये कृषि कार्यों को करके किस तरह से लाभान्वित हो रही हैं, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। तो चलिए साथियों, करते हैं इनसे मुलाकात और जानते हैं इनके अनुभव।
4: ईस्टर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
5: नमस्ते मैडम।
4: ईस्टर जी, बताइए आपके पास कितना बड़ा बगीचा है?
5: ज्यादा नहीं मैडम, 340 स्क्वायर मीटर जमीन है मैडम, अपना जमीन है
4: जी।
5: उसमें थोड़ा मोड़ा पूरा बगीचा था मैडम, 2020 में पूरा सुपारी सब खत्म हो गया
4: जी,
5: नुकसान हो गया। अभी है बच्चा कच्चा होने का फल से बगल बगल में पेड़ हुआ, वही पेड़ से मैंने 20-30 पेड़ होगा
4: जी,
5: सुपारी, नारियल 2-3 पेड़ है। तो उसका बाद मैडम मुर्गी घर का देसी मुर्गी है, फिर 4 बकरी है मैडम, उसी से मेरा गुजारा भी चलता है मैडम। मेरा हस्बैंड सीनियर सिटीजन है
4: जी। आपने बताया कि सुपारी और नारियल के आपके पास पेड़ है, तो सुपारी में कितने पेड़ हैं आपके पास?
5: 15-20 पेड़ है।
4: 15-20 पेड़ है, तो इससे सुपारी अच्छी निकल आती है
5: जी मैडम? कोई साल ज्यादा थोड़ा इनकम मिलता, दो कोई साल कम मिलता है मैडम
4: जी। मिला जुला कर आपका गुजारा लाइक उत्पाद मिल जाता है
5: जी मैडम।
4: अच्छा, तो सुपारी को आप कहाँ बेचते हैं?
5: मैडम हम लोग खुद छीलते हैं मैडम घर पे, उसको छील के हम लोग पैकिंग करके उसको बाजार पे लेके दुकान में बेच देते हैं।
4: उसके अच्छे भाव मिल जाते हैं आपको?
5: जी मैडम, वो रेट को पर है, कभी रेट ज्यादा है कभी रेट कम होता है।
4: सुपारी की बागानों में कभी आपने कोई कीड़ा या नुकसान देखा कि किस तरह का नुकसान हो जाता है?
5: पीने का पानी नहीं मिलता मैडम, पानी नहीं दे सकते हम लोग, वो तो बारिश को थ्रू है बगीचा है मैडम
4: जी। अगर ऐसा कभी होता है कि देखिए सुपारी के पेड़ आपने जैसे बताया कि मौसम पर भी आधारित है ना, कि अगर पानी नहीं मिलता है तो फल जो है आपको जितना होना चाहिए उतना नहीं मिलता है, कम मिलता है,
5: कम मिलता है।
4: इसके अलावा कभी कभी पेड़ों में कीड़ा लग जाता है
5: जी मैडम,
4: जब ऐसी कोई स्थिति आती है तो आप क्या करती हैं?
5: वो हम लोग घरेलू दवाई को बनाते हैं, हम लोग छिड़काव करते हैं।
4: किस तरह की दवाई बनाती है?
5: जैसा नीम का पत्ता
4: जी,
5: और उसमें कुछ कुछ जो कपूर वगैरह होते हैं वो सब कूट काट के पानी में घोल के छिड़काव करते हैं।
4: तो इससे कंट्रोल हो जाता है?
5: होता है मैडम, जैसे अमरूद का पेड़ है, नींबू पेड़ है, फल वगैरह पेड़ है, उसमें सब छिड़काव करते हैं मैडम,
4: उससे कंट्रोल हो जाता है।
5: कंट्रोल ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होने से हम लोग एग्रीकल्चर में जाके बताते हैं, बगीचा में नुकसान हो गया इसके लिए दवाई चाहिए,
4: तो मिल जाती है वहाँ से दवाई
5: जी मैडम।
4: अब आ जाते हैं नारियल में, आपने बताया कि आपके पास कुछ पेड़ नारियल के भी हैं, नारियल में

0: किस तरह का फल होता है?
1: नारियल का बोलने से मैडम मामूली साधारण पेड़,
0: साधारण पेड़ है जी।
1: जो कोकोनट पेड़ है जिसका साधारण पेड़ भी है।
0: तो उस फल को क्या करते हैं आप?
1: मैडम हम लोग तो दो चार पेड़ है कोकोनट, हम लोग गर्मी में पी लेते मैडम, जैसा गर्मी का मौसम में पी लेते, बाकी नारियल को सुखा के उसको हम लोग को टुकड़ा करके हम लोग
0: तेल निकालते हैं,
1: निकालते मैडम वो तो तेल को हम लोग खाते भी है, यूज भी करते लगाने।
0: आपने बताया कि नारियल के फल से ज्यादा आप उसका तेल जो है वो बिक्री करती हैं। अच्छा, तो आप बताइए कि नारियल का जो ये तेल है ये लीटर के हिसाब से बिकता होगा, तो एक लीटर का क्या दाम
1: नहीं,
0: होता है?
1: बेचते नहीं मैडम, हम लोग अपना घर का यूज करते हैं।
0: आप बेचते नहीं है, घर के लिए यूज करते हैं, तो घर के लिए आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती
1: जी मैडम,
0: है ना? अच्छा, तो नारियल का और भी चीजें होती है, जैसे नारियल की मरेटी है ना, बहुत कुछ है। जब आप तेल निकालते होंगे तो नारियल का जो खोल है वो सब तो निकाल के बाहर रख देते होंगे, तो उसको भी कुछ यूज करते हैं या फेंक देते हैं?
1: नहीं मैडम, उसको हम लोग जो बकरी रखे ना मैडम उसको धुआं करने के लिए यूज आता है। फिर बारिश का टाइम मैडम सिलेंडर लेने का दिक्कत होता है तो लकड़ी जंगल से लाते हैं, कहीं कहीं से लाते हैं, उसमें मिक्स करके हम लोग जला के खाना वाना बनाते हैं मैडम, उस तरह यूज आता है।
0: अच्छा, उसको भी आप यूज कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी बागानी फसलें आप करती हैं वो आपको फायदा देती है, आपका घर परिवार का खर्चा जो है वो इनको बेचने से पूरा होता है।
1: जी मैडम, वही इनको बेच के मैं बकरी बिक्री करके दो लड़की को मैं शादी कराई हूँ।
0: अच्छा
1: हाँ, मेरा हस्बैंड सीनियर सिटीजन है
0: जी,
1: महीना में 2,500 पेंशन मिलता है, गवर्नमेंट देती है, उससे तो होगा नहीं। बच्चा लोग ऐसी है, बच्चा लोग दुकान में काम करते हैं मैडम, और उनका वो यहाँ से बाजार जाते हैं मैडम, बोट किराया बस किराया क्या बचता है मैडम, 2-3-4 हजार ही लोगों को हाथ में आता है, उसी से मेरा तो घर गुजारा नहीं हो जाता मैडम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, गुजारे लायक आय जो है वो नारियल सुपारी को बेच के,
1: नारियल सुपारी बकरी मुर्गी में मेरा साथ पूरा साथ देते हैं मैडम।
0: आपकी गुजारे के लायक जो आय है वो नारियल सुपारी बकरी और मुर्गी जो आपने रखी हुई है इनसे आप मिल जाया करती है। अब हम आ जाते हैं आपकी बकरी पालन पर। बकरियां कितनी है आपके पास?
1: मैडम बकरी मेरा पास पूरा था, मेरा बकरी हम नहीं सकती बोल के मैडम थोड़ा बकरी बिक्री कर दिए, अभी है मैडम 6-7 बकरी है, मैं रखी हूँ उसको, हम टाइम से खोलती हूँ, हम लेके जाती हूँ, उन लोग चराते, शाम को हम घर लेके आती हूँ, फिर उनको बंद करती हूँ, फिर हम जो खाना पकाते पानी है ना मैडम उसको रखती हूँ, तो उसमें आटा वाटा डाल के मिला के लोगों को दे देती हूँ, फिर उनके लिए बड़ा अच्छा से सेट बनाई हूँ मचान का, उनका जो पोटी है ना मैडम उनको भी अच्छा जगह रखती हूँ, वेस्ट नहीं होना।
0: उसका क्या करते हैं फिर आप?
1: उनको हम लोग किचन गार्डन बनाए ना मैडम, उसमें अपना खाने के लिए उनको डाल देती
0: है, मतलब वो खाद के रूप में आप उसको यूज करती हैं। तो किचन गार्डन आप बता रही हैं, तो इसमें आप आपके घर के गुजारे लायक सब्जियां वगैरह मिल जाती हैं आपको?
1: मैडम अभी तो हम लोग थोड़ा गाड़ी है
0: जी,
1: क्यों बोलने से मैडम मेरा बगीचा में ना पूरा अच्छा ही है, नहीं होता मैडम, अभी थोड़ा मोड़ा सफाई कर रही है, थोड़ा धूप जगह देख के अभी 2-4 बैंगन लौकी भिंडी सेम इन सब थोड़ा गाड़ी।
0: बकरी को भी आप सेल करती है क्या?
1: हाँ जी मैडम, अभी बकरी बोलने से पिछला साल मैडम एक बकरा मैं बिक्री करी हूँ, इन बार तो छोटा बकरा है अभी तक बिक्री है, इसे 2020 में मैम मैं 2 बकरा बिक्री करी हूँ, मेरा बेटी मेरा सेकंड वाला बेटी को शादी का टाइम मेरा वो बकरा बिक्री करी हूँ, शादी में हम पैसा लगा दिए मैडम थोड़ा।
0: अच्छा अच्छा
1: जी मैडम,
0: हाँ तो आपके लिए आय का अच्छा साधन है ना ये पशु जो है?
1: मैं बकरी पालती हूँ बोलने से मैडम 35 साल हो,
0: 35 साल से आप ये काम कर रही हैं? अच्छा अच्छा, बकरियों में कभी कोई बीमारी वगैरह देखी आपने?
1: मैम बकरी का तो बीमारी होती है, हम घरेलू
0: उपाय करके उन्हें ठीक कर लेते,
1: ज्यादा कुछ प्रॉब्लम रहने से वेटनरी लेके वेटनरी जाके बताते हो, उन लोग दवाई लेके आते हैं, नहीं तो उन स्टाफ आके बकरी को
0: चेक करते हैं और वो दवाई दे जाते हैं। अब आ जाते हैं मुर्गियों पे, आपने बताया मुर्गी पालन भी आप करते हैं, कितनी मुर्गियां हैं आपके पास?
1: जी मैडम, बीच में मैंने नवंबर अक्टूबर में मुर्गी बीमारी पूरा है मैडम, तो बहुत सारा मुर्गी मेरा मर गया, बच्चा मुर्गी मर गया, चूजे सब मर गए मैडम, अभी उसी में बच्चा वाला नए बोल के 10-15 मुर्गी है,
0: अभी 10-15 मुर्गी है,
1: बच्चा सब मिला के मुर्गी 5-6 है, बच्चा लोग 10 बच्चा।
0: इनको आप कोई वैक्सीनेशन नहीं कराती है?
1: नहीं मैडम, वो वेटनरी से मैं बीमार होने से दवाई दे जाके बोलने से दवाई देती, दवाई लेके आके उनको पानी में घोल के ले रहने से दाना में मिला के
0: देते हो आप, क्योंकि इसके प्रबंध कर लेने चाहिए, क्योंकि हमारी वेटनरी और पशु चिकित्सालय जितने भी हैं यहाँ पर इनकी वैक्सीनेशन का पूरा इंतजाम होता है। अगर आप वहाँ जाएंगे वहाँ बात करेंगे तो आपको ऐसी दवाइयाँ मिल जाएंगी, ऐसे वैक्सीन कर दी जाएगी जिससे कि मुर्गियों में बीमारी जो है मुर्गियों बकरियों में बीमारी आएगी ही नहीं। अगर बीमारी नहीं आई तो आप उनसे जो मिलने वाले उत्पाद है वो और ज्यादा आपको मिलेंगे और आपकी आय जो है वो बढ़ सकती है। मुर्गियों से आपको अंडे भी मिलते होंगे
1: जी मैडम,
0: तो एक सप्ताह में कितने अंडे हो जाते हैं
1: मैडम? अभी एक सप्ताह में

0: ऐसे दस अंडा इस तरह
1: देती
0: दे
1: है
0: देती। उनको तो
1: जी।
0: हम लोग घर में खा लेते मैडम, सब्जी नहीं रहने से अंडा बना देते।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हम लोग घर में टोटल 6 जने मैडम,
1: जी।
0: 8 जन थे, उसने 2 बेटी को शादी करा दिया, अभी 4 जन है हम लोग।
1: तो आपने अंडे कभी बाहर बेचे नहीं, घर
0: हम अंडे ज्यादा जरूरत अभी तो नहीं बेचे अंडे।
1: के यूज के लिए उपयोग करते हैं आप। तो चलिए, उससे भी घर के खर्चे में बचत होती है ना, अगर आपको घर से ही मिल जाता है। तो कुल मिला के कहने का यही मतलब है कि आपने जैसे बताया कि नारियल और सुपारी के बागान आपने रखे हुए हैं, उनसे भी आपको आय मिलती है, और इसके साथ साथ आपने मुर्गी और बकरी पालन जो आप करती हैं वो भी आपके लिए आय का एक अच्छा जरिया है।
0: मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी ज्वाइंट
1: सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाँ
0: हूँ,
1: जी
0: ज्वाइंट हूँ मैडम। उसमें मैं लोन ली थी हूँ ये मुर्गी पालने के लिए, लेकिन हम शेड बनाई हूँ,
1: हाँ।
0: लेकिन मुर्गी लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, मुर्गी हम मुर्गी नहीं ली मैडम।
1: ग्रुप से आप लोन ले सकती हैं ना।
0: नहीं मैडम, हम लोन अभी तलक नहीं चुकाई हूँ, थोड़ा थोड़ा
1: अच्छा,
0: करके
1: पहले पहले वाला चुका दीजिए और उसके बाद फिर आप दोबारा लोन लेके आप अपनी मुर्गियां खरीद सकती हैं, बकरियां खरीद सकती हैं, जो भी आपको जरूरत है आप लेके और उनकी संख्या को बढ़ा सकती हैं। संख्या बढ़ेगी तो निश्चय ही आपका लाभ भी बढ़ेगा और आपकी आय जो है उसमें भी इजाफा होगा। मिस्टर जी, आपके साथ इतनी बातें हुई, इतना समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आपने कृषि कार्यों से जुड़ी नमूना घर की रहने वाली श्रीमती ईस्तर जी से की गई ये बातचीत सुनी। और साथियों, इतनी बातों और जानकारियों के बाद अब कार्यक्रम के माहौल को कुछ गीत संगीत की ओर लिए चलते हैं और आपके साथ आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

साथियों, गीत आपने सुना, हम उम्मीद करते हैं इसे जरूर आपने पसंद किया होगा। लेकिन अब रुख कर लेते हैं मौसम की ओर। आने वाले कुछ दिनों में मौसम के मिजाज किस तरह से रहेंगे और मौसम के इन अनुमानों के साथ समझौता करके क्या कुछ कृषि कार्य किस तरह से आपको करने की सलाह दी जाती है, जानते हैं मौसम पर आधारित कृषि परामर्श के तहत। अगले दिनों के दौरान दक्षिण अंडमान में लगभग 48 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है, जिसमें हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की आशंका है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 85% से 86% तक तथा न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 70 से 76% के बीच रह सकती है। पवन की गति 23 से 32 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रहने की उम्मीद है तथा हवाएं मुख्यतः दक्षिण पश्चिम से पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलेंगी। आकाश सामान्यतः बादल युक्त रहने की भी संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 1-2 स्थानों पर मेघार्जन, आकाशीय बिजली एवं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों के आसपास 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज सतही हवाएं, जिनकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है तथा समुद्र की स्थिति उग्र रहने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और इस दौरान कुछ स्थानों पर मेघार्जन, आकाशीय बिजली एवं तेज हवाओं के चलने की भी संभावना है। अतः इसको ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें तथा मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए जैविक मल्च का उपयोग करें। जहां तक संभव हो सके अतिरिक्त वर्षा जल को संग्रह एवं संरक्षण करें। उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण की सिफारिश के अनुसार करें तथा उर्वरकों पौध संरक्षण उपायों का प्रयोग केवल वर्षा रहित अवधि में ही करें। फसलों, पशुओं एवं मछली तालाबों की नियमित निगरानी करें तथा कीट, रोग एवं मौसम से होने वाले नुकसानों पर सतर्क रहें। मौसम की अधिकतम जानकारी एवं कृषि परामर्श के लिए मेघदूत मोबाइल ऐप तथा आकाशीय बिजली की चेतावनी प्राप्त करने के लिए दामिनी मोबाइल ऐप का उपयोग करें। साथियों, इस मौसम पर आधारित कृषि और बागवानी के लिए ये विशेष सलाह दी जाती है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना को देखते हुए जिन किसानों ने अभी तक धान की नर्सरी तैयार नहीं की है, वे उपलब्ध मिट्टी की नमी का उपयोग करें और नर्सरी तैयार करें। बुआई से पहले बीजों में ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम

से उपचारित करें तथा दीर्घ अवधि वाली धान की किस्म द्वीप धान 10 का उपयोग करें और स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए नर्सरी में पर्याप्त नमी बनाए रखें। जिन किसानों की प्रारंभिक अवधि वाली धान की पौध रुपाई योग्य हो गई है, वे पर्याप्त पानी उपलब्ध होने पर रोपाई कर सकते हैं और रुपाई किए गए धानों में जल संरक्षण के लिए वैकल्पिक गीलापन एवं सूखापन पद्धति अपनाएं। बागवानी करने वाले किसानों को विशेष सलाह दी जाती है कि नव रोपित मसाला फसलें जैसे केला तथा अन्य फलदार पौधों के चारों ओर जैविक मल्च बिछाएं, जिससे मिट्टी में नमी बने रहे और खरपतवारों की वृद्धि कम हो। जहां पानी उपलब्ध हो वहां मौसमी बागानी फसलों में आवश्यकता अनुसार जीवन रक्षक सिंचाई करें ताकि नमी की कमी से फसलों की रक्षा हो सके और अच्छी फसल सुनिश्चित हो। पशुपालन करने वाले पशुपालक भाइयों को सलाह दी जाती है कि गर्भावस्था या उन्नत गर्भावस्था में पशुओं को फिसलने और चोट से बचने के लिए सूखी एवं फिसलन रहित फर्श पर रखें। पशुशाला को साफ और सूखा रखें तथा छत में किसी भी प्रकार के रिसाव या लीकेज की मरम्मत करें ताकि वर्षा का पानी अंदर ना आए। बिछावन के लिए सूखे धान का पुआल या जूट गनी की बोरियों का उपयोग करें तथा गीले बिछावन को नियमित रूप से बदलते रहें। इससे पशुओं को आराम मिलेगा, स्वच्छता बनी रहेगी तथा रोगों और तनाव का खतरा भी कम होगा। मछली पालकों को सलाह दी जाती है कि वो तैयार तालाबों में कार्प मछलियों के फ्राई 2 से 3 लाख प्रति हेक्टेयर अथवा फिंगरलिंग 10,000 प्रति हेक्टेयर की दर से संचयन करें। इस अवधि में प्रजनन के लिए अनुकूल वर्षा न होने के कारण कार्प मछलियों का कृत्रिम प्रजनन न करें। अभी आपने मौसम पर आधारित कृषि परामर्श सुनी जो हमें केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान श्री विजयपुरम के सौजन्य से प्राप्त हुई थी। आपने जान लिया होगा कि आने वाले कुछ दिनों के लिए मौसम के किस तरह से रहने के अनुमान हैं और इस मौसम में क्या कुछ कृषि कार्य आपको करने हैं।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: और साथियों, अब हमें लगता है कि आपको इंतजार होगा आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर जानने का। तो भाई, आपका इंतजार होता है यहीं पर खत्म, क्योंकि अब हम बताने जा रहे हैं आज के प्रश्न का सही जवाब। साथियों, कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे पूछा था, यूरिया द्वारा पुआल के उपचार से क्या लाभ है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है, यूरिया द्वारा उपचार से पुआल की पौष्टिकता बढ़ जाती है और ये आसानी से पचाने लायक हो जाता है। साथ ही इसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़कर 8% तक हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी किसान भाइयों ने इस उत्तर के माध्यम से ये जानकारी हासिल कर ली होगी।

और साथियों, इसी के साथ आज के लिए किसानवाणी की ये संध्या यहीं पर होती है मुकम्मल। अब मुलाकात होगी अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
1: श्रोताओं, अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने। आज इस अंक में सुनिए वन महोत्सव 2026 पर वन विभाग के प्रभागीय वन अधिकारी अली अकबर से की गई बातचीत। इनके साथ बातचीत कर रही है हमारी तरन्नुम मोहम्मद।
2: पेड़ धरती की मुस्कान है और हर पौधा आने वाले कल की उम्मीद। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी श्री विजयपुरम के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत आमने सामने के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रकृति केवल हमें जीवन नहीं देती बल्कि हमारी संस्कृति और अस्तित्व का आधार भी है। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश भर में 77वां वन महोत्सव मनाया जा रहा है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों और उनके महत्व पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है प्रभागीय वन अधिकारी श्री अली अकबर जी। सर, आपका आकाशवाणी में हार्दिक स्वागत है।
3: थैंक यू मैडम।
2: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को यह बताएं कि वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी, इसे पहली बार कब मनाया गया और इसके पीछे उद्देश्य क्या है।
3: वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में उस समय के जो यूनियन मिनिस्टर थे फूड एंड एग्रीकल्चर के एम मुंशी द्वारा शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पेड़ों और वनों के महत्व के बारे में जागरूक करना, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करना था। तब से

0: वर्ष जुलाई के पहली सप्ताह में पूरे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। इसका उद्देश्य केवल पेड़ लगाना ही नहीं बल्कि ग्रीन कवर और जो फॉरेस्ट लैंड जो डिग्रेडेड हो गया उसको दोबारा जो है रिस्टोर करना है, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना है, जलवायु परिवर्तन का क्लाइमेट चेंज जो कि आजकल का एक हॉट टॉपिक है उसके प्रभाव को कम करना, मिट्टी के कटाव को रोकना, एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना और जो हमारा रिसोर्सेस है उसको सस्टेनेबल यूज करना, इस सब के प्रति जागरूक करना भी है
1: जी।
0: सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है। और समय के साथ वन महोत्सव केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है जो एनवायरमेंटल एजुकेशन, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन और वनों की सुरक्षा में लोगों की सक्रिय भागीदारी पर विशेष बल देता है।
1: जी, अब यदि इस वर्ष की बात करें तो वन महोत्सव 2026 की थीम क्या है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में इसे किस प्रकार मनाया जा रहा है और इस बार की प्रमुख गतिविधियां क्या है?
0: भारत सरकार ने इस वर्ष 77th वन महोत्सव 2026 की थीम पेड़ लगाओ धरती बचाओ रखी है
1: जी।
0: इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी पूरे देश में जारी है। इस अभियान का संदेश बड़ा सरल और प्रेरणादायक है, हर व्यक्ति अपनी माँ और धरती माँ के सम्मान में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए। वैसे तो वन महोत्सव हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है लेकिन पूरे जुलाई महीने में देश भर में पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बरसात का मौसम पौधा लगाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है
1: जी,
0: इसलिए इस समय ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाया जाता है। अगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ भी वन महोत्सव पूरी उत्साह और लोगों की भागीदारी के साथ मनाया जा रहा है। सभी फॉरेस्ट डिवीजन की ओर से अलग अलग जगह पर पौधारोपण अभियान और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ऐसे ड्राइंग कंपटीशन, रैली, नुक्कड़ नाटक तथा कई अन्य जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सरकारी विभाग, पंचायती राज संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, एनजीओ, तमाम आम लोग भी अच्छी भागीदारी दिखा रहे हैं।
1: जी।
0: खास बात यह है कि इन कार्यक्रम में स्थानीय और जो हमारा यहाँ का नेटिव प्लांट है उसको प्राथमिकता दिया जा रहा है ताकि हमारा द्वीपों की अनमोल जैविक विविधता, बायोडाइवर्सिटी और प्राकृतिक वन संपदा को सुरक्षित रखा जा सके।
1: द्वीप समूह अपनी समृद्ध जैव विविधता और घनी वनों के लिए जाना जाता है, ऐसे में यहाँ के वनों के संरक्षण के सामने वर्तमान में कौन कौन सी चुनौतियां हैं? इन चुनौतियों से निपटने के लिए वन विभाग क्या प्रयास कर रहा है?
0: अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भारत का सबसे रिचेस्ट हॉटस्पॉट क्षेत्र माना जाता है
1: जी,
0: क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, कोरल रीफ है, सी ग्रास समुद्री घास
1: जी
0: का मैदान और कई ऐसे वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं पाए जाते हैं जो दुनिया में केवल यही मिलता है जो कि यहाँ का एंडेमिक है। लेकिन इस अनमोल प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करना आसान नहीं है, इसके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहला चुनौती है क्लाइमेट चेंज। समुद्र के पानी का तापमान बढ़ने से कोरल रीफ को नुकसान पहुंच रहा है और इनमें कोरल ब्लीचिंग की समस्या बढ़ रही है। दूसरी चुनौती है इलीगल जो हंटिंग है, अवैध शिकार और तस्करी, पोचिंग। कुछ लोग वन्य जीवों का अवैध शिकार करते हैं और दुर्लभ पौधे तथा समुद्री जीवों का गैर कानूनी संग्रह भी करते हैं। अनसस्टेनेबल टूरिज्म, असंतुलित पर्यटन। अगर पर्यटन को सही ढंग से नियंत्रित ना किया जाए तो इससे प्रदूषण बढ़ता है। और है नेचुरल डिजास्टर जिसमें कि भूकंप, साइक्लोन और 2004 की सुनामी जैसी घटना से जंगल, मैंग्रोव वन और कोरल रीफ को भारी नुकसान पहुंचता है और पर्यावरण को भी सामान्य होने में काफी समय लगता है। एक यहाँ पे अभी बढ़ता हुआ एक चुनौती हमारे लिए आ रहा है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। जैसे जैसे जंगल और तटीय इलाकों के आसपास मानव गतिविधियां बढ़ रही है वैसे वैसे वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहे हैं और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं भी बढ़ने लगी है। इस सभी चुनौतियों को देखते हुए यह बहुत जरूरी है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच सही संतुलन बनाया जाए। इसके लिए प्रभावी पर्यावरण नीतियां, लोगों की सक्रिय भागीदारी, जिम्मेदार पर्यटन और वैज्ञानिक तरीके से

0: प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन बेहद आवश्यक है तथा हम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की इस अनमोल प्राकृतिक धरोहर और बायोडाइवर्सिटी को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख पाएंगे।
1: जी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के कारण विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। ऐसे में द्वीप समूह के पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखते हुए पर्यटन को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है?
0: टूरिज्म बेसिकली इकोनॉमी से बहुत रिलेटेड है सभी जगह, उसी तरह अंडमान निकोबार में भी जो हमारा इकोनॉमी है मोस्टली जो है टूरिज्म में बहुत डिपेंडेंट है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आजीविका को भी सहारा मिलता है। लेकिन साथ ही साथ यह भी शायद याद रखना जरूरी है कि हमारे द्वीप घने जंगलों, कोरल रीफ, मैंग्रोव फॉरेस्ट, समुद्री घास के मैदान और अनेक एंडेमिक फ्लोरा एंड फौनों का घर है। इसलिए यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देते समय पर्यावरण संरक्षण को हमेशा प्राथमिकता देनी होगी। सबसे जरूरी बात यह है कि पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की संख्या साइंटिफिक असेसमेंट कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर तय किया जाना चाहिए। टर्टल नेस्टिंग बीचेस है और कोरल रीफ है, ये सब में पर्यटन के अनुमति देने के समय थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, बोटिंग जैसे गतिविधियां निर्धारित पर्यावरण नियमों के अनुसार ही संचालन की जानी चाहिए ताकि कोरल रीफ और समुद्री घास के मैदान को कोई नुकसान न पहुंचे। जहां संभव हो बोट के लिए एंकर की जगह पर्यावरण के अनुकूल मूरिंग सिस्टम उपयोग किया जाना चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसमें लाना चाहिए। अंत में हमारा उद्देश्य केवल अच्छा पर्यटकों को अच्छा अनुभव देना ही नहीं, लेकिन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की यूनिक बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेस का संरक्षण करते हुए स्थानीय समुदायों को भी लाभ पहुंचाना, यही हमारा द्वीपों को सुरक्षित एवं समृद्ध भविष्य की आधारशिला है।
1: अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृपया बताएं कि मैंग्रोव वन समुद्री तटों की सुरक्षा, जैव विविधता के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में किस प्रकार सहायक है।
0: जैसे कि आपको ये बात बता दें कि ISFR रिपोर्ट होता है जो हर 2 साल में आता है, जिसको बोलते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि पूरे देश का फॉरेस्ट का असेसमेंट करते हैं। और जो 2023 में आया था, हर 2 साल में करते हैं, जिसके अनुसार अंडमान निकोबार में 608.29 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है मैंग्रोव का है, और जो टोटल इंडिया में जितना भी मैंग्रोव एरिया है उसका हमारा जो है 12.39% जो है हमारा एरिया कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही साथ ये भी है कि हम लोग जो है मैंग्रोव एरिया में तीसरे नंबर पे है।
1: अच्छा,
0: और फर्स्ट जो है वो वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, और हम जो है तीसरे स्थान पे पूरे देश में है।
1: अच्छा,
0: मैंग्रोव वन हमारे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की नेचुरल लाइफलाइन है। ये हमारे पर्यावरण और इकोसिस्टम बैलेंस को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंग्रोव वन हमारे द्वीपों के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। इनकी घनी और मजबूत जड़ें समुद्र तटों को कटाव से बचाती है, तट रेखा को स्थिर बनाए रखती है और साइक्लोन, स्टॉर्म तथा सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को काफी हद तक कम करने में मदद करती है। इसके साथ ही मैंग्रोव वन कई प्रकार की मछलियों, क्रैब, प्रॉन, पक्षियों के लिए सुरक्षित प्रजनन और पालन पोषण का स्थान भी है। इससे न केवल हमारी बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण मिलता है बल्कि स्थानीय मछुआरे कम्युनिटी को आजीविका का भी सहारा मिलता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन को अपने भीतर एब्जॉर्ब करके सुरक्षित रखता है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद मिलता है। ये पानी में मौजूद जो प्रदूषण होता है उसको भी काफी हद तक छानता है और वाटर क्वालिटी को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मैंग्रोव फॉरेस्ट का संरक्षण और उसका रिस्टोरेशन हमारे लिए बेहद जरूरी है। यह न केवल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की यूनिक बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने में मदद करता है बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ, सस्टेनेबल फ्यूचर सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
1: आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती

0: चुनौती का सामना कर रही है। ऐसे में वृक्षारोपण कितना प्रभावी उपाय है?
1: जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए पेड़ लगाना एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावी उपाय है, लेकिन पेड़ लगाना ही पूरा समाधान नहीं है। अगर हम बड़े पैमाने पर डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को फिर से विकसित करना और नए पेड़ लगाएं, तो इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में और पर्यावरण को बेहतर बनाने में निश्चित रूप से मदद मिलेगा। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि सिर्फ पेड़ लगाने से आज जिस तरह से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है, उसकी पूरी भरपाई नहीं की जा सकती। एक नया लगाया गया पौधा बड़ा होकर पर्याप्त मात्रा में कार्बन को अपने अंदर संग्रहित करने में कई साल बल्कि कई बार दशक का समय लेता है। क्लाइमेट चेंज से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हमें कई उपायों को साथ लेकर चलना होगा। पेड़ लगाने और जंगल का संरक्षण करने के साथ साथ ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने का भी उपाय करना होगा। इसके लिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उपायों का यूज करें, पहले से मौजूद जंगलों की सुरक्षा करें, कम प्रदूषण वाले ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना आवश्यक है। पेड़ लगाना जलवायु परिवर्तन से लड़ाई करने का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यही अकेला समाधान नहीं है। हमें पेड़ लगाने के साथ साथ अपने जंगलों की रक्षा करनी होगी, प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा, कार्बन एमिशन को कम करना होगा और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाना होगा।
0: अंत में वन विभाग की ओर से आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण के लिए आकाशवाणी के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि वन महोत्सव केवल पेड़ लगाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि प्राकृतिक और आने वाले पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूँ कि इस वन महोत्सव में बढ़ चढ़ कर भाग लें, स्थानीय प्रजातियों के अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी देखभाल भी करें, साथ ही प्लास्टिक का कम उपयोग करें, पानी और बिजली की बचत करें तथा अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। पर्यावरण की रक्षा केवल वन विभाग ही नहीं बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस पूरे वन महोत्सव के दौरान हमारा जो नर्सरी है, जो कि एक हैडो में है, नया गांव में है, डेयरी फार्म में है और गांधी पार्क में है, तो ये पूरे महीने भर हम लोग फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीडलिंग कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सभी जो है वहां पे आके पेड़ फ्री ऑफ कॉस्ट ले। ये जो है सही समय है कि हम लोग जो है अपने आप को, अपना जीवन शैली को थोड़ा सा बदलाव लाए,
0: जिम्मेदार बने
1: ताकि हमारे आगे वाले पीढ़ी और हम लोग भी इससे प्रभावित न हो।
0: सर, आपने वन महोत्सव, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और वनों के महत्व पर अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरक जानकारी हमारे श्रोताओं को के साथ साझा की, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।
1: थैंक यू मैडम, थैंक यू।
0: पेड़ केवल प्रकृति की धरोहर नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन का आधार है। आज लगाया गया एक पौधा कल की सुरक्षित और समृद्ध धरती का वादा है। आइए वन महोत्सव को केवल एक वार्षिक अभियान न माने बल्कि इसे जन जन का संकल्प बनाएं। इसी संदेश के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम से तरन्नुम मोहम्मद को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: आमने सामने के इस कार्यक्रम में अभी आप वन महोत्सव 2026 पर वन विभाग के प्रभागीय वन अधिकारी अली अकबर के साथ तरन्नुम मोहम्मद की यह बातचीत सुन रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी श्री विजयपुरम के क्षेत्रीय समाचार एकांश की भेंट थी। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:45 हुए हैं। अब सुनते हैं झलकी।
3: Good morning, Miss Rita Faria.
4: Good morning, Mr. Makhanwala. Oh, Mr. Makhanwala.
3: Yes, Miss Rita.
4: मैंने आपको कितनी बार याद दिलाया है कि मैं रीता फारिया नहीं हूँ। रीता फारिया तो मिस वर्ल्ड थी, पर आप हैं कि बराबर कंफ्यूज करते रहते हैं।
3: मैं कहाँ कंफ्यूज करता हूँ मिस रीता, आप आईना तो रोज ही देखती होंगी, भला अपनी जैसी सूरत आपको दुनिया में कहीं नजर आती है?
4: ओ मिस्टर मक्खनवाला, यू टॉक सो

0: मैं तो छोटी सी सच्चाई बयान कर रहा था मिस रीटा, आप नाराज तो नहीं हो गई?
1: नो
0: आप तो जानती हैं ना मिस रीटा कि मैं पिछले एक हफ्ते से छुट्टी पर था और इसी बीच नए साहब ने ज्वाइन कर लिया।
1: हाँ, कोई 3 दिन हुए ज्वाइन कर लिया।
0: तो मिस रीटा, मैं जानना ये चाहता था कि ये नया साहब आदमी कैसा है। अब तक आपने उसे जरूर पहचान लिया होगा। यू आर सो इंटेलिजेंट मिस रीटा।
1: हाँ, कुछ कुछ तो समझा है।
0: क्या समझा है बताइए ना प्लीज। मैं ये पूछना चाह रहा था मिस रीटा कि उठते बैठते उनका ध्यान अमूमन किस चीज पर ज्यादा रहता है?
1: ध्यान तो ज्यादातर मेरी गलतियों पर ही रहता है।
0: ओहो,
1: वैसे कभी कभी चलते फिरते मेरी शक्ल सूरत पर भी नजर डाल लेता है।
0: नो, मैं ये सब नहीं पूछ रहा था। आप मेरी बात अभी तक नहीं समझ पाई।
1: आई एम रियली वेरी सॉरी।
0: मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ मिस रीटा कि बातचीत या तौर तरीके से क्या जाहिर होता है कि समय काटने को वो कौन सा काम अधिक पसंद करता है?
1: वैसे तो सारा समय फाइलों में ही बीत जाता है, पर हाँ, एक आध मैगजीन रोज ही साथ लाती हैं।
0: That's right, मिस रीटा, यही तो मैं जानना चाह रहा था।
1: तो आपने पहले ही बता दिया होता कि आप मैगजीन के बारे में जानना चाह रहे थे।
0: मुझे ख्वाब आते थे क्या?
1: जी, कुछ कहा आपने?
0: मैं ये पूछ रहा था मिस रीटा कि आपने ये भी जरूर देखा होगा कि वो कैसी मैगजीन होती है।
1: हाँ, देखने में अच्छी होती है।
0: No, I mean, उनमें क्या होता है? स्पोर्ट्स, फिलोसफी, पॉलिटिक्स, सेक्स?
1: नहीं, ये सब कुछ नहीं होता।
0: फिर
1: फोटो देखने से कुछ साइंस का मालूम पड़ता है।
0: साइंस मसलन?
1: मसलन चांद, तारे वगैरह वगैरह।
0: That's a point.
1: क्यों, कोई खास बात है मिस्टर मक्खन वाला?
0: कुछ नहीं मिस रीटा, मैं तो यूं ही कभी कभी आपसे बातें करने लगता हूँ। अब बाकी लोग तो बस ऐसे ही वैसे हैं, मैं इन सबको खूब समझता हूँ। पता नहीं मेरे पीछे इन बदमाशों ने बॉस के क्या क्या कान भरे होंगे।
1: Who knows?
0: लेकिन खैर, मेरे पास तो एक ही रामवाण है, उसी से सबको समझ लूंगा। गुनी राम ने कच्ची गोली नहीं खेली है मिस रीटा।
2: यस, कम इन।
3: नमस्ते सर।
2: नमस्ते, बैठिए।
3: जी सर, थैंक यू।
2: कहिए।
3: बस सर, वो क्या नाम है के दर्शनों के लिए चला आया था सर। मुझे सर जी आर मक्खन वाला कहते
2: हैं। जी आर मक्खन वाला?
3: जी, गुनीराम मक्खन वाला।
2: आई सी, अच्छा तो आप ही हैं मिस्टर गुनीराम मक्खन वाला।
3: यस सर, पिछले हफ्ते छुट्टी पर था सर, कल ही वापस आया, लेकिन बड़ी कोशिश के बाद भी अब तक आपके दर्शन नहीं हो सके सर, बड़े बिजी थे ना सर आप।
2: हाँ, अभी चार्ज यही है ना, फुर्सत जरा मुश्किल से निकल पाती है।
3: सो तो है ही सर, मैं क्या जानता नहीं सर अफसरों के पास कितना काम रहता है।
2: Why
3: not, सर? एक अरसे से मैं इसी कुर्सी की तो सेवा करता चला आ रहा हूँ सर।
2: ऐसा है,
3: आपकी मेहरबानी से सर इस दफ्तर की राही रत्ती तक मैं जानता हूँ सर। और इसके अलावा सर, इस कुर्सी पर बैठने वाले हर बड़े साहब ने मुझ में हमेशा एक सच्चा सेवक पाया है सर। यस सर, कभी कोई बात हो सर तो इस सेवक को जरूर मौका दीजिएगा सर। वो बाकी तो सर इस ऑफिस के लोग ऐसे हैं सर कि बस कुछ न पूछिए, दिन भर एक दूसरे की चुगली, कभी इसकी बुराई सर तो कभी उसकी शिकायत, अब कहां तक बताऊं सर।

0: अपने मुंह से ज्यादा कहा भी तो नहीं जाता सर।
1: ठीक है मैं सब सुन चुका हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपके ये हाथ में क्या है, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग।
0: सर ये कुछ नहीं सर, ये बस जरा कभी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता हूँ सर, बस वही है। और तो
1: मैं भी देख सकता हूँ ये मैगजीन?
0: क्यों नहीं सर, सर आप ही के लिए तो है सर।
1: मेरे लिए?
0: जी वो मेरा मतलब ये था सर कि हम सभी आपकी सेवा के लिए है ना, फिर ये किताबें क्या चीज है सर।
1: मिस्टर मक्खन वाला,
0: ये सर
1: आपको स्पेस एडवेंचर से खासा शौक लगता है?
0: क्या बताऊं सर, शौक तो इतना है सर कि बस, लेकिन सर हम लोग तो तस्वीर देखकर ही तबीयत बहला लेते हैं सर।
1: और आप क्या चाहते हैं?
0: चाहता तो था सर मैं भी यान में बैठकर चंद्रलोक की सैर करूं, और सर चांद की उजली सी धरती पर बिचरते हुए वहां की ठंडी ठंडी हवाओं में खो जाऊं।
1: लेकिन गुनीराम जी,
0: ये सर
1: चांद पर कोई ऐसी ठंडी वंडी हवाएं नहीं चलती हैं।
0: जी जी हाँ, वो मेरा मतलब ये था सर कि
1: अभी थोड़ा और पढ़िए, वैसे शौक अच्छा है।
0: जी सर मैं ये कह रहा था सर, मेरा मतलब था कि
1: क्या कोई खास बात?
0: ये सर
1: क्या है?
0: जी जी कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं सर।
1: जाकर अपना काम करिए।
2: क्या बात है गुनीराम, आजकल जमीन पर पैर ही नहीं रखते, हमेशा चांद सितारों के बीच उड़ा करते हो।
3: देखो मेहता, मुझे खाम खां की छेड़छाड़ कतई पसंद नहीं है। मैं कुछ भी करूं, मेरा अपना शौक है। आसमान में उड़ता हूं तो कोई तुम्हारी छत में झांकता नहीं।
4: अरे भाई तो बिगड़ती क्यों हो, मेहता ने तो साधारण सी बात।
3: मैं ये कहता हूँ, क्यों पूछी थी? चांद तारों की तस्वीर देखना कोई गुनाह है क्या?
2: तौबा तौबा, गुनाह? अरे भैया, खून करना भले ही एक बार गुनाह हो, चांद तारों की तस्वीर देखना कैसे गुनाह होगा? आखिर हमारे बड़े साहब भी तो अक्सर यही सब देखा करते हैं।
3: मैं कहता हूँ, शर्म यू ऑल, मैं तुम सबका वार्निंग दिलवा दूंगा। तुमने समझ क्या रखा है? क्या समझ रखा है तुमने गुनीराम?
4: मक्खन वाला को
3: मैं सबको देख लूंगा एक एक।
5: मक्खन वाला?
0: यस मिस रीटा।
5: आपको बड़ा साहब ने याद किया है, अभी इसी वक्त कोई इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस करना मांगते हैं।
0: व्हाट सीम इम्पोर्टेंट इशू? अच्छा,
2: अरे गुनीराम, ये चांद सितारों वाली मैगजीन तो लेते जाओ।
3: मैं कहता हूँ शट अप यू ऑल।
2: क्या बात है मिस रीटा?
0: मे आई कम सर?
1: आइए आइए गुनीराम जी, बैठिए, आइए आइए, इधर आइए।
0: थैंक यू सर।
1: बैठिए
0: जी। यस सर।
1: गुनीराम जी।
0: यस सर।
1: मैंने आपको खास मशवरे के लिए बुलाया है।
0: हुक्म कीजिए सर।
1: आपको तो पता ही होगा कि पिछले जुलाई में 3 आदमी चंद्रमा पर गए थे।
0: यस सर, गए थे।
1: और वहां उन्होंने हर देश का एक एक झंडा बिगाड़ा था।
0: यस सर।
1: आपने देखा तो होगा?
0: यस सर।
1: अच्छा, तो आपने देखा था?
0: जी जी, वो मेरा मतलब ये कि मैंने पढ़ा था सर।
1: ओ, पढ़ा था। तो ये भी पढ़ा होगा कि बदले में तीनों व्यक्ति चंद्रमा की धरती के कुछ नमूने ले आए हैं, पता है ना आपको?
0: यस सर।
1: फिर वो नमूने संसार के हर देश में भेज दिए गए, पता है ना?
0: यस सर।
1: लेकिन अब इस मिट्टी को लेकर कुछ लोग बवाल मचा रहे हैं।
0: ठीक है सर, वो बात
1: ऐसा लगता है जिस मतलब से ये सब कुछ किया गया था वो बात कुछ बनी नहीं।
0: नहीं बनी होगी सर, ये पॉलिटिक्स बड़ी खराब चीज है सर, इसमें अक्सर ही बिगाड़ हो जाती है सर।
1: कुछ भी हो, अब तय ये पाया गया है कि हर देश अपना अपना आदमी चांद पर भेजेगा।
0: ये सर।
1: और चांद की धरती पर सारा लेन देन अपने आदमी के जरिए ही से हुआ करेगा।
0: ठीक बात है सर, दरअसल पहले से ही बात सोच लेनी चाहिए थी सर।
1: खैर, हिंदुस्तान वालों का अब भी कुछ ऐसे ही ख्याल है।
0: ठीक है सर, हम चांद पर अपना अधिकार थोड़े ही खोने देंगे सर।
1: लेकिन गुनीराम जी,
0: सर
1: वहां जाकर रहेगा कौन?
0: जिसे भेजा जाएगा सर वही रहेगा। आगे चंद्रमा पर जाने वाले पहले लोग भी तो आदमी ही थे सर। और सर बीवी बच्चे वाले आदमी थे। और देश की खातिर भला कोई इतना भी काम नहीं करेगा सर?
1: हाँ, करना तो चाहिए।

0: मुनिराम जी, बात दरअसल यह है कि वहां रह पाना इतना आसान नहीं है। सच पूछा जाए तो मुझे वहां भेजे जाने वालों से बहुत हमदर्दी है।
1: ऐसी भी क्या बात है सर, इतने अहम काम के लिए अगर जान भी न्योछावर करनी पड़े तो किसी को हिचकिचाना नहीं चाहिए।
0: नहीं नहीं, जरूरत वहां जाकर मरने वालों की नहीं, जरूरत ऐसे समझदार आदमी की है जो वहां जाकर ठीक से काम चला सके।
1: यस सर।
0: और फिर जब उसे वहां जाकर रहना ही है तो क्यों ना ऐसे आदमी को भेजा जाए जिसे इन सब कामों में दिलचस्पी हो।
1: यस सर, आप ठीक कहते हैं सर।
0: कुछ ऐसा ही ख्याल हमारी सरकार का भी है, इसलिए हर डिपार्टमेंट में सर्कुलर भेजा गया है।
1: अच्छा,
0: और इस बारे में राय मांगी गई है।
1: जी।
0: मेरा ख्याल है कि ये ठीक ही कदम है।
1: यस सर, बिल्कुल ठीक कदम है।
0: कोशिश ये है कि उन्हें ऐसा आदमी मिल सके जो चांद पर जाने के लायक हो।
1: जी सर।
0: गुनीराम जी।
1: यस सर।
0: हमारे यहाँ भी एक ऐसा सर्कुलर आया है, डू यू नो?
1: यस सर।
0: व्हाट? यस सर, आपने देखा है?
1: यस सर जी, मेरा मतलब मैंने सुना था।
0: कहाँ?
1: जी वो और दफ्तरों में भी तो आया है ना सर।
0: अच्छा, तो और दफ्तरों में ये खबर पहले ही फैल गई और हम अपने को इतना हुनरमंद समझते भी पिछड़ गए हैं। ये किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। हम बैठे ही रहे और दूसरा बाजी मार ली जाए, मैं ये बात कतई नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप बर्दाश्त कर सकते होंगे?
1: यस सर।
0: बर्दाश्त कर सकते हैं?
1: जी जी जी नहीं, मेरा मतलब ये था कि
0: मतलब कुछ नहीं, चांद पर वही आदमी जाएगा जो इसका असली हकदार है, समझे आप?
1: यस सर।
0: तो फौरन एक टेलीग्राम दिल्ली भेजिए और अभी तुरंत।
1: यस सर।
0: हाँ,
1: क्या क्या लिख दूं उसमें सर?
0: लिख दीजिए सेंड GR मक्खन वाला चुमून।
1: यस सर। जी सर, जी सर, आपने क्या बोला सर? GR मक्खन वाला?
0: मैंने गलत बोला क्या?
1: यस सर।
0: क्या?
1: जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप भला गलत कैसे बोलेंगे सर?
0: तो जाइए फौरन इस तार को लगवा दीजिए।
1: जी सर, मैं भी जा रहा हूँ सर। लेकिन सर, सर मेरे बीवी बच्चे।
0: कुछ नहीं कुछ नहीं, मेक हेस्ट, फौरन टेलीग्राम दीजिए, वरना इतने हुनरमंद आदमी के होते हुए भी हम पीछे रह जाएंगे।
1: यस सर। यस सर।
2: क्यों गुनी राम जी, किसके लिए वार्निंग टाइप कर रहे हो?
1: अपने लिए।
2: खैरियत तो है, यहाँ से तो तुम साहब के पास ठीक ठाक गए थे।
3: और साहब तुमसे इतने खुश थे?
1: खुश तो अब भी हैं।
2: फिर ये सब क्या है?
1: मुझे भेज रहे हैं।
2: कहाँ?
3: कहाँ?
1: जहन्नम।
4: श्रोताओं, अभी आप झलकी यस सर सुन रहे थे। लेखक थे प्रकाश शुक्ला, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। एक आवश्यक सूचना, प्रसार भारती आकाशवाणी श्री विजयपुरम के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रेडियो कार्यक्रमों ने चयन हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रण सूचना NRIPP के अंतर्गत कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करता है। प्रस्ताव इन तीनों श्रेणियों में आमंत्रित किए गए हैं: राजस्व साझेदारी, प्रायोजित कार्यक्रम तथा निशुल्क कार्यक्रमों में रेडियो नाटक, वृत्तचित्र, कहानी वाचन, ऑडियो श्रृंखला, नवाचारी ऑडियो प्रारूप, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा संगीत आधारित कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम हिंदी में होगा और प्रत्येक एपिसोड की अवधि 14 या 28 मिनट तक होनी चाहिए। इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले प्रसार भारती कंटेंट सर्चिंग नीति 2024 तथा उसके नवीनतम संशोधनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इस नीति में पात्रता, कार्यक्रम संबंधी दिशा निर्देश, अनुबंध की शर्तें, राजस्व साझेदारी, आकाशवाणी प्रसारण संहिता तथा वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। पात्र आवेदक निर्धारित प्रपत्र में सभी आवश्यक विवरण एवं सहायक दस्तावेजों सहित अपना प्रस्ताव ईमेल whoairportblair@prasarbharti.gov.in पर भेज सकते हैं। विस्तृत दिशा निर्देश एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए प्रसार भारती तथा आकाशवाणी की

आधिकारिक वेबसाइट प्रसार भारती .gov.in, NIPP या akashvani.gov.in /files/NIPP.PDF देखें। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। एक और आवश्यक सूचना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल HTP

एक और आवश्यक सूचना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://award.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। ये थी आवश्यक सूचना।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:05 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। विज्ञान मंथन राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा में द्वीप समूह के छात्र ईशायु थावकर हिमालयन श्रेणी में राष्ट्रीय विजेता बने। खेल एवं युवा मामले विभाग की ओर से कार्वाइंस को समुद्र तट में बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। और जहाजरानी सेवा निदेशालय की ओर से अगस्त और सितंबर माह के लिए MV स्वराज द्वीप की संभावित यात्रा कार्यक्रम जारी की गई है।

सांध्य समाचारों के साथ मैं टी जयश्री। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रमवम सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम वन भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित यह रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी। विज्ञान भारती राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की ओर से विज्ञान मंथन राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया। नेवी चिल्ड्रन स्कूल मिनीबे के कक्षा सातवीं के छात्र ईसाई थावकर ने हिमालयन श्रेणी में राष्ट्रीय विजेता बनकर द्वीप समूह का नाम रोशन किया है। पूर्व आंचलिक स्तर पर विवेकानंद केंद्र विद्यालय लंबा

लाइन के कक्षा छठी के छात्र हार्दिक चक्रवर्ती ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि नेवी चिल्ड्रन स्कूल मिनीबे की कक्षा नवी की छात्रा विदिशा मैथी ने तीसरा स्थान हासिल किया। राज्य स्तरीय शिविर में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तरीय शिविर में भाग लेने के लिए पात्र है। इन छात्रों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए विज्ञान केंद्र में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अटल सेंटर फॉर ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार झा ने विजेताओं को ट्रॉफियां और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माई गो मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगो पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त तक है। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष एम विनोद और महासचिव सैकत बिस्वास के नेतृत्व में नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। बैठक के दौरान द्वीप समूह में पर्यटन के विकास और प्रगति से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए पर्यटन बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और गंतव्य प्रचार को मजबूत करने के लिए मंत्रालय से सहयोग का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री से ब्रांड अंडमान के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानन अभियान शुरू करने, श्री विजयपुरम के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानें शुरू कराने और लगातार बढ़ रहे हवाई किराए को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने पर्यटन सलाहकार समिति का गठन करने का भी आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट और जहाजों का यात्रा कार्यक्रम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। खेल एवं युवा मामले विभाग, पर्यटन विभाग के सहयोग से 25 और 26 जुलाई को कार्वाइंस को समुद्र तट में बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य बीच वॉलीबॉल को बढ़ावा देना, खेल भावना को प्रोत्साहित करना है। सभी वॉलीबॉल खिलाड़ियों और टीमों से 23 जुलाई तक वॉलीबॉल कोच अब्दुल खलीद से संपर्क कर अपना पंजीकरण कराने को कहा गया है। उप शिक्षा कार्यालय की ओर से दक्षिण अंडमान क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए इंटर स्कूल अपर प्राइमरी लेवल नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों में खेल भावना, शारीरिक फिटनेस, टीम वर्क और युवा शिक्षार्थियों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। 21 से 30 जुलाई तक बालिका और बालक दोनों श्रेणियों के लिए आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भातुबस्ती खेल मैदान में आयोजित की जाएगी। अंडमान निकोबार पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि हाल ही में व्हाट्सएप के माध्यम से द्वीप समूह में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों आदि के नाम पर धोखाधड़ी के मामलों में अचानक तेजी आई है। ये स्कैमर्स उच्च अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों की फर्जी प्रोफाइल का उपयोग कर पैसों की मांग करते हैं या उनके लिए ऑनलाइन सामान या उपहार खरीदने का अनुरोध करते हैं। इस संबंध में पुलिस ने सभी से इस प्रकार के घोटाले के प्रति जागरूक रहने और व्हाट्सएप पर अज्ञात नंबरों से बातचीत करते समय सावधानी बरतने का आग्रह किया है। ऐसे मामलों की रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर अपराध वेब पोर्टल या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी की जा सकती है। जहाजरानी सेवा निदेशालय की ओर से अगस्त और सितंबर माह के लिए एमवी स्वराजद्वीप के संभावित यात्रा कार्यक्रम जारी किए गए हैं। जहाज 3 अगस्त को सुबह 8 बजे कोलकाता, 17 तारीख को सुबह 10 बजे चेन्नई और 31 अगस्त को सुबह 10 बजे विशाखापट्टनम के लिए रवाना होगा। सितंबर माह में जहाज 12 तारीख को सुबह 10 बजे चेन्नई जाएगा। इस यात्रा के लिए टिकटों की अग्रिम बुकिंग 20 जुलाई सुबह 9 बजे से ई टिकटिंग पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए सीधे पोर्टल से जोड़ने वाला एक QR कोड भी प्रदान किया गया है। इसके

अलावा टिकट सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक और शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्टार टिकटिंग काउंटर से भी बुक किए जा सकते हैं। विशाखापट्टनम से आ रहे जहाज एमवी स्वराजदीप के कल सुबह 10 बजे तक श्रीविजयपुरम पहुंचने की संभावना है। जहाज में लगभग 550 यात्री सवार है। जहाज हेडो जट्टी पर लगेगा। इस बीच एमवी स्वराजदीप 22 जुलाई को सुबह 10 बजे श्रीविजयपुरम से चेन्नई के लिए रवाना होगा। अतिरिक्त सामान की जांच 21 जुलाई को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने का कार्य जहाज रवानगी के दिन सुबह 7 बजे से 9 बजे तक किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। विज्ञान मंथन राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा में द्वीप समूह के छात्र ईशायु थावकर हिमालयन श्रेणी में राष्ट्रीय विजेता बने। खेल एवं युवा मामले विभाग की ओर से कार्रवाइंस को समुद्री तट में बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। और जहाज रानी सेवा निदेशालय की ओर से अगस्त और सितंबर माह के लिए एमवी स्वराजद्वीप की संभावित यात्रा कार्यक्रम जारी की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:15 हुए हैं। अब सुनते हैं मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएं। सबसे पहले मौसम।

मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनते हैं जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी जॉलीबॉय सोमवार 20 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए जिगलीपुर के लिए रवाना होगा। इस जलयान की वापसी अगले दिन 21 तारीख को सवेरे 7 बजे जिगलीपुर से उसी बंदरगाह होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। 22 तारीख को सवेरे 7 बजे एमवी हटबे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए जिगलीपुर के लिए छूटेगा। 23 तारीख को सवेरे 7 बजे ये जलयान जिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी बाराटांग 24 तारीख को सवेरे 7 बजे इन्हीं स्थानों के लिए रवाना होगा और 25 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। एमवी भारत सीमा 25 तारीख को रात 8 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए जिगलीपुर के लिए अपनी यात्रा आरंभ करेगा। इस जलयान की वापसी अगले दिन 26 तारीख को दोपहर 2 बजे जिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कैंबलवे कल 19 तारीख को सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा। उसी रात 9 बजे ये जलयान लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। 21 तारीख को भी ये जलयान सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए छूटेगा और उसी रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। इस जलयान की यानी एमवी कैंबलवे की श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए

अगली यात्राएं 24 तारीख और 26 तारीख को भी होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड 22 तारीख को सवेरे 6:30 पर श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा और उसी दिन 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापसी करेगा। एमवी बम्बुका 23 तारीख को सवेरे 6:30 पर श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा और उसी दिन 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी भारत सीमा 21 तारीख को दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम से कार निकोबार के लिए रवाना होगा। इस जलयान की वापसी अगले दिन 22 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कालीघाट 23 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान, कार निकोबार, चौरा, तरासा, कचाल और नानकौरी होते हुए कैंबल बे के लिए छूटेगा। 26 तारीख को दिन में 12 बजे ये जलयान कैंबल बे से रवाना होगा और इन्हीं सभी बंदरगाहों से होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। जलयान नालंदा 21 तारीख को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से नानकौरी होते हुए कैंबल बे जाएगा। 23 तारीख को सवेरे 8 बजे ये जलयान कैंबल बे से छूटेगा और नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। इस जलयान की श्री विजयपुरम से नानकौरी होते हुए कैंबल बे के लिए अगली यात्रा 28 तारीख को सुबह 9 बजे होगी। 30 तारीख को ये जलयान सवेरे 8 बजे कैंबल बे से छूटेगा और उसी बंदरगाह होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। ये था जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

अब सुनते हैं जन सूचनाएं। गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। 112-03192-232-100, 03192-233-077 और 03192-232-400। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। ये थी जन सूचनाएं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब समय है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का।

इस कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने लिया है जब प्यार किसी से होता है फिल्म से। आवाज़ें अलका याग्निक और कुमार सानू की है, गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत जतिन ललित का।

श्रोताओं, अब सुनते हैं इस कार्यक्रम की अंतिम पेशकश कुमार सानू और जयश्री की आवाजों में। गीत रचना आनंद बख्शी की है और संगीत विज्जू शाह का, और इस गीत को हमने लिया है रावण राज फिल्म से।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। अब सुनते हैं युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी।

0: युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आपकी मेहनत और धैर्य आपको सफलता की ओर ले जाएगा, इसीलिए दोस्तों निरंतर मेहनत करते रहें। मेहनत करने पर सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों आज 18 जुलाई है और प्रत्येक वर्ष आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण अफ्रीका के महान नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2009 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य लोगों को मानवता की सेवा, समानता, शांति और सामाजिक न्याय के प्रति प्रेरित करना है। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद की अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने लगभग 17 वर्ष जेल में बिताए, लेकिन कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, सहनशीलता और क्षमाशीलता ने उन्हें विश्व भर में सम्मान दिलाया। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने सभी लोगों को साथ लेकर चलने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का कार्य किया। इस अवसर पर दुनिया भर में लोग समाज सेवा, स्वच्छता अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरतमंदों की सहायता जैसे कार्य करते हैं। मंडेला का संदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस हमें मानवता, समानता, प्रेम और सेवा की भावना अपनाने की प्रेरणा देता है। हमें उनके आदर्शों का पालन करते हुए एक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। दोस्तों आज शनिवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम ऐसा भी होता है।
1: ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है।

दोस्तों, पेड़ पौधे हमारे ग्रह पर जीवन का आधार हैं। वे केवल प्राकृतिक सुंदरता का स्रोत नहीं हैं, बल्कि वे एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का केंद्र है, जिसके बिना मानव जीवन असंभव है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन अमेजन जंगल को धरती का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यह अकेले ही दुनिया का लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पुराना जंगल कौन सा है? डेंट्री वर्षावन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो दुनिया का सबसे पुराने जीवित वर्षावनों में से एक माना जाता है। यह लगभग 180 मिलियन वर्ष पुराना होने का अनुमान है। और दुनिया का सबसे बड़ा जंगल टैगा या बोरियल जंगल है, जो एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक फैला हुआ है।

दोस्तों, पृथ्वी पर कई ऐसे जीव जंतु हैं जो काफी रहस्यमय और आकर्षक हैं। उन्हीं में से एक सांप पृथ्वी पर मौजूद एक आकर्षक जीवों में से एक है। क्या आप जानते हैं, सांपों की पलकें नहीं होती। सांपों की आंखें हमेशा खुली रहती है क्योंकि उनकी पलकें नहीं होती। उनकी आंखों पर एक पारदर्शी सुरक्षात्मक परत होती है जिससे वे समय समय पर अपनी त्वचा के साथ ही उतार देते हैं। सांपों के बाहरी कान नहीं होते। वे हवा में आवाज की तरंगों को सीधे नहीं सुन सकते। इसके बजाय वे अपने जबड़े की हड्डियों के माध्यम से जमीन पर होने वाली कंपन यानी वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं और इस तरह अपने आसपास की गतिविधियों का पता लगाते हैं। दोस्तों, सांप शीत रक्त वाले जानवर होते हैं जिसका अर्थ है कि वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए बाहरी गर्मी पर निर्भर करते हैं। इसीलिए उन्हें धूप सेकने या ठंडी जगह पर जाने की जरूरत पड़ती है। ये पृथ्वी पर लगभग हर जगह पाए जाते हैं। भारत में भी इनकी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं।

दोस्तों, विश्व में पक्षियों की लगभग 10,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं फास्टर फ्लायन, पेरिग्रीन फॉल्कन, घुमंतू बाज दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी है, जो डाइव लगाते समय 186 मील प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकता है। और दोस्तों, क्या आपने कभी लायर बर्ड के बारे में सुना है? यह बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यह दूसरे पक्षियों के गाने, जानवरों के आवाज, यहाँ तक कि गुजरती हुई कारों के हॉर्न की आवाज का भी नकल कर सकता है। ये 20 से अधिक अन्य पक्षियों की आवाजें निकाल सकते हैं। इनकी खासियत यह है कि यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टॉकर, बेस्ट टॉकर कहा जाता है। यह केवल आवाजों की नकल ही नहीं करते, बल्कि कुछ शोधों के अनुसार यह मानव शब्दों को समझदारी से इस्तेमाल करने की क्षमता भी रखते हैं। इन्हें नकलची पक्षी भी कहा जाता है, जो दूसरों की आवाज निकालकर हूबहू नकल कर सकते हैं।

दोस्तों, जानवर हर जगह है। पृथ्वी पर जानवरों की 80 लाख से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। हम मनुष्य के रूप में सोच सकते हैं कि हम ग्रह पर सबसे रोमांचक प्राणी हैं, लेकिन अन्यथा सोचें तो चींटी से लेकर बड़ी वेल तक हमारे सभी प्राणियों में अद्भुत क्षमताएं हैं और वे अपना अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए हर दिन अविश्वसनीय कारनामे करते रहते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर जिराफ है, जो पृथ्वी का सबसे कम समय तक सोने वाला जानवर है, जो 24 घंटे में सिर्फ 30 मिनट से 1 घंटे के ही सोता है सिर्फ, अन्यथा वह बाकी समय पे जागा ही रहता है।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ कार्यक्रम
1: ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है।

दोस्तों, स्वच्छता मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है, या केवल हमारे शरीर और आसपास के वातावरण को साफ रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वस्थ, सुखी और अनुशासित जीवन का प्रतीक भी है। कहा जाता है, स्वच्छता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। यदि हम अपने शरीर, घर, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखते हैं तो अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता में प्रतिदिन स्नान करना, साफ कपड़े पहनना, समय पर हाथ धोना और दांतों की सफाई करना शामिल है। इसी प्रकार घर और सार्वजनिक स्थानों की सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। कूड़ा कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। स्वच्छ वातावरण से प्रदूषण कम होता है और समाज स्वस्थ एवं सुंदर बनता है। तो एक अच्छा युवा और देश के नागरिक होने के नाते साफ सफाई का ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, अब इसी विचार के साथ कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सबीना बानो को इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। शुभ रात्रि।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं और अब समय है आपके मनोरंजन का। श्रोताओं, आपके मनोरंजन के लिए हम लेकर आए हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म हमराज का ये गीत।

इस समय आप सुन रहे हैं खयाम के संगीत निर्देशन में तैयार साहिर का लिखा गीत, आवाज मुकेश की। इस गीत को हमने लिया है कभी कभी फिल्म।

श्रोताओं, अभी आप गुमराह फिल्म का गीत सुन रहे थे। आवाज थी महेंद्र कपूर की, गीत रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत दिया था रवि ने। श्रोताओं, अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

श्रोताओं, अभी आप सुनैना फिल्म का गीत सुन रहे थे। आवाज थी येसुदास की। गीत रचना और संगीत दोनों रविंद्र जैन का था। अब सुनते हैं छोटी सी बात फिल्म का गीत, आवाजें येसुदास और आशा भोसले की।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनते हैं रोजगार समाचार। पर्यावरण एवं वन विभाग के अंतर्गत APCCF नोडल अधिकारी FCA एवं MS अंडमान एवं निकोबार तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संविदा आधार पर कंसल्टेंट के 2 पदों पर योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमा 40,000 रुपये का समेकित मानदेय प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति का स्थान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह होगा। शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फॉरेस्ट्री पर्यावरण विज्ञान, मरीन बायोलॉजी, ओशन स्टडीज अथवा समकक्ष विषय में स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। साथ ही पर्यावरण अध्ययन, इंस्पेक्ट असेसमेंट, इकोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, रिस्क एनालिसिस अथवा पर्यावरण प्रबंध के संबंधित कार्य अनुभव तथा SS ऑफिस का कार्य सार्थक ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन 100 अंकों की विजिट आधारित मूल्यांकन प्रणाली द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। केवल शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र अंडमान एवं निकोबार वन विभाग तथा अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की वेबसाइट https://forest.and.nic.in https://andaman.gov.in में डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रणालित प्रतियों सहित कार्यालय APCCF वन सदन हैडो श्री विजयपुरम में केवल ऑफलाइन जमा करना होगा। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 29 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए विभाग से संपर्क किया जा सकता है। ये थे रोजगार समाचार।

श्रोताओं, अभी आप देशभक्ति गीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में समाचारों का प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 AD को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के

0: विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
1: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
3: टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री
4: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
3: इट्स ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
0: हुर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमरीका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसैलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसैलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसैलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि

रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के दो विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में एक व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। PV सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही PV सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय

0: क्षेत्र सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस्ड। Yami Gautam wins Best Actress Award for Article 370, Mammootty for Brahmayugam and Kartik Aaryan for Chandur Champion share Best Actor Award. 20 rebel TMC MPs who joined National Citizens Party of India get Lok Sabha Speaker's approval for separate seating in the House. Massive fire at a firecracker factory in Ahmedabad claims 5 lives. Prime Minister Narendra Modi expresses grief. US-Iran fighting over Strait of Hormuz escalates with attacks on key infrastructure and military targets. Olympic medalists Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain to be India's flag and baton bearers at opening ceremony of Commonwealth Games in Glasgow. And in FIFA World Cup, France to clash with England for third place at Miami Stadium tonight. Hindi film Article 370 has won the Best Film Award in the 72nd National Film Awards. Announcing the awards today in New Delhi this evening, Chairman of Jury Feature Film Jairaj said Mammootty and Kartik Aaryan have won the National Film Awards in Best Actor category for their movies Brahmayugam and Chandur Champion. He said Yami Gautam will be given the Best Actress Award for her performance in the film Article 370.
2: Best actress in leading role, Article 370, Hindi film. Renowned performance that portrays a law enforcement agent's unwavering pursuit of truth and justice with sensitivity, courage and compassion. A performance that leaves a profound and lasting impact. Actress Yamini Gautam. Best actor in a leading role, Shade, Chandu Champion, Hindi, for a performance that transcends the conventions of a sports biopic, bringing an unsung hero's story to life with dignity, sincerity and lasting impact. Actor Kartik Aaryan.
1: Chairman of Jury Non-Feature Film Asim Kumar Sinha said Bhangar, directed by Sumira Roy, has bagged the Best Non-Feature Film Award. Best short film is Humsafar in Marathi. He said Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity, Ekta Ka Pratik.
3: Best Direction, Statue of Unity, Ekta Ka Pratik, Hindi, Citation, for creatively chronicling the making of the world's tallest statue through dynamic cinematic storytelling, transforming and engineering marvel into a stirring tribute to Sardar Vallabhbhai Patel, Unity and National Pride, Director Anand L. Rai. Best Short Film, Humsafar Marathi. Through a compassionate cinematic narrative, the film reveals how ordinary objects become deeply personal and how their loss opens a poignant void, sparking and heartfelt search for memory, identity and emotional connection.
1: Best Film Critic Award will be given to Sanjeev

0: नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में स्मृति शेष में नमन, फिल्म जगत की कुछ ऐसी हस्तियों को जो इस बीच हमसे बिछड़ गईं, जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक विजया मेहता।
1: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, सवाल उठाना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी, जाने माने फिल्मकार, अभिनेता, गायक और संगीतकार के भाग्यराज, और जाने माने फिल्म निर्देशक, निर्माता, लेखक और अभिनेता भारती राजा।

सबसे पहले संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष हैं। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। जुलाई का महीना प्रेमचंद की याद का महीना होता है, इसलिए संपादकीय में आज हम चर्चा कर रहे हैं उन फिल्मों की जो प्रेमचंद की कृतियों पर आधारित हैं। प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज, भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की पीड़ा और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का बाकायदा यथार्थवादी चित्रण करता है। आज भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि विभिन्न भाषाओं के फिल्मकार अपनी फिल्मों के लिए प्रेमचंद की कृतियों को चुनते रहे हैं। उनकी कृतियों पर बनी फिल्मों की बातें हम आगे करेंगे, पर पहले एक दिलचस्प बात। मुंशी प्रेमचंद स्वयं भी मुंबई सिनेमा जगत से जुड़े रहे थे। असल में हंस और जागरण पत्रिकाओं के संपादन की वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए लिखने और कमाई करने का मन बनाया था। सन 1934 में आर्थिक तंगी के चलते वे बंबई आए और फिल्म कंपनी अजंता

सिनेटोन में लेखक के रूप में काम करने लगे। यहां उन्होंने दो फिल्में लिखी, मिल मजदूर और नवजीवन। अपने समय के विख्यात फिल्मकार नानूभाई वकील ने 1934 में उनके प्रख्यात उपन्यास सेवा सदन पर इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आई थी। उन्हें फिल्म जगत का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना अनुबंध तक पूरा नहीं किया और साल भर के अंदर ही बनारस लौट गए। मशहूर तमिल फिल्मकार कृष्णस्वामी सुब्रमण्यम ने सन 1938 में सेवा सदन पर तमिल भाषा में इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी। हिंदी फिल्म के उलट तमिल फिल्म मूल कृति के प्रति ज्यादा ईमानदार थी। इस फिल्म में प्रसिद्ध गायिका एमएस सुब्बलक्ष्मी ने नायिका सुमन की भूमिका निभाई थी। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम की फिल्म बनी सन 1941 में। मुंशी प्रेमचंद भले ही वापस लौट गए हों, लेकिन मुंबई में उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1959 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पर कृष्ण चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई, हीरा मोती। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा राय मुख्य

मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास पर सन 1963 में इसी नाम की फिल्म आई, जिसे त्रिलोक जेटली ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थीं राजकुमार, कामिनी कौशल, शशिकला और महमूद की। इस फिल्म के गाने अनजान ने लिखे और संगीत दिया जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने।

सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर इसी नाम की फिल्म बनाई थी। कलाकार थे सुनील दत्त, साधना, मीनू मुमताज, लीला मिश्रा और कन्हैया लाल वगैरह। संगीत शंकर जयकिशन का था।

0: बांग्ला के महानतम फिल्मकारों में गिने जाते हैं सत्यजीत रे। उन्होंने पूरे करियर में सिर्फ दो हिंदी फिल्में बनाई और संयोग देखिए कि दोनों ही फिल्में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थीं। सन 1977 में सत्यजीत रे ने बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म थी जो प्रेमचंद की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। इसमें अवध के दो कुलीन मित्रों मीर और मिर्जा की कहानी है, जो शतरंज में इतने डूबे रहते हैं कि अंग्रेजों के हाथों अपने राज्य के पतन की परवाह तक नहीं करते। मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, सईद जाफरी, अमजद खान और शबाना आजमी वगैरह।
1: प्यादे तो ठीक है
2: जी,
1: तो वजीर और बादशाह भी ठीक है, लेकिन ये पीले घोड़े और रुख में गड़बड़ ना कीजिएगा।
2: तो सुन लीजिए ना, पीला टमाटर, लीमू घोड़ा, मिर्ची रुख।
0: सत्यजीत रे की दूसरी हिंदी फिल्म थी प्रेमचंद की कहानी सतगति पर आधारित इसी नाम की फिल्म। इस फिल्म में ओमपुरी, स्मिता पाटिल और मोहन अगाशे ने अभिनय किया था।
3: विद्या की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चले चलते और उसका साइड सगन विचार करें।
4: क्या खड़ा होगा यहाँ?
5: मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो।
0: ये कहानी जातिगत शोषण की एक क्रूर और मार्मिक कथा है। बांग्ला के दिग्गज निर्देशक मृणाल सेन ने प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन को आधार बनाकर 1977 में तेलुगु की एक फिल्म बनाई ओका उरी कथा। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। छोटे पर्दे पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां खूब लोकप्रिय हुईं। दूरदर्शन के सुनहरे दिनों में उनके उपन्यास पर आधारित एक धारावाहिक आया निर्मला, जिसे बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा गुलजार ने दूरदर्शन पर प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियों को लेकर एक धारावाहिक बनाया तहरीर मुंशी प्रेमचंद की। ये सीरियल भी काफी चर्चित रहा। इसके तहत पूस की रात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं और नमक का दरोगा जैसी कई कहानियों को छोटे पर्दे पर शिद्दत से पेश किया गया था।

0: ही प्रेमचंद को जीते जी बंबई की फिल्मी दुनिया रास नहीं आई, पर कमाल की बात यह है कि उनकी जाने के बाद सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे कालजयी फिल्मकारों ने उनकी कहानियों को वो सम्मान और गहराई दी जिसकी वे हकदार थी। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को हमारा नमन। ये था संपादकीय मुंशी प्रेमचंद की कृतियों पर बनी फिल्में। और अब स्मृति शेष। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज हम चार हस्तियों को नमन करने जा रहे हैं जो हमसे बीते दिनों बिछड़ गईं। सबसे पहले नमन करते हैं जानी मानी अभिनेत्री और फिल्मकार विजया मेहता को, जिन्होंने 30 जून को इस असार संसार से विदा ली। बरसों पहले की बात है, तकरीबन 90 का दशक, दूरदर्शन पर एक सीरीज आती थी लाइफलाइन। अस्पतालों के जीवन, डॉक्टरों और इंटर्न्स के जूझने और मरीजों से जुड़े अनुभवों पर केंद्रित था ये धारावाहिक। इसकी निर्देशक थीं विजया मेहता। एक से बढ़कर एक कलाकार थे इस सीरीज में। तन्वी आजमी, के रैना, मोहन जोशी, शफी नामदार, इला अरुण, पंकज कपूर, ए के हंगल जैसी नामी हस्तियों का जुड़ाव था इस धारावाहिक से। विजया मेहता की पहचान सिर्फ लाइफलाइन टीवी सीरियल नहीं है, उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को कुछ कालजयी और बेहद कलात्मक फिल्में दी हैं, पिस्टन जी, राव साहब और हमीदा बाई की कोठी वगैरह। उन्होंने रुपहले पर्दे पर कई बार अभिनय किया, खासतौर पर श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग में, गोविंद नेहलानी की फिल्म पार्टी में दमयंती राणे की उनकी भूमिका सबको याद है। उनकी निर्देशित फिल्म राव साहेब सन 1985 में आई थी और जयवंत दलवी के मराठी उपन्यास पर आधारित थी। इसी उपन्यास पर जयवंत दलवी ने बैरिस्टर नाम का एक नाटक भी रचा था। इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। विजया मेहता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के लिए श्याम भूतकर को मिला सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1988 में विजया मेहता ने पिस्टन जी नामक फिल्म बनाई। असल में ये फिल्म मुंबई में 50 और 60 के दशक में मौजूद पारसी समुदाय की कहानी है।
1: तूने जरू की सूरत देखी है? उसकी आवाज सुनी है? 5 वर्ष के अंदर जरू की क्या हालत बना दी तूने? बच्चा मर गया, पप्पा स्ट्रोक थी बीमार, नहीं तू सुख नहीं बात करे। उस औरत ने तेरी को इतना सेल्फिश बना दिया है। पन खुदाए सब देखता है, याद रख जे।
0: इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम का राष्ट्रीय पुरस्कार।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी,
0: जाने माने फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर
2: से दिग्गज कहना भी कम होगा। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया, अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, अलग किस्म के सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया। मैं इतना ही कहूंगा कि विजया जी मेरी सीनियर थी, क्योंकि मैं सत्यदेव दुबे ग्रुप से था, उसको राइवल ग्रुप माना जाता था। मेरी और विजया जी की एक बड़ी प्यारी सी दोस्ती थी, एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था।
0: विजया मेहता को हमारा विनम्र नमन। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी का 4 जून को निधन हो गया। पहलाज नेहलानी की कहानी संघर्ष की दास्तान है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1948 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद परिवार सब कुछ छोड़कर आ गया। पहलाज नेहलानी का बचपन मुंबई के कोलाबा में बीता। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पहलाज नेहलानी ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम पकड़ लिए। फिल्मों से बचपन से उन्हें लगाव रहा था। वे कोलाबा की टॉकीजों के बाहर घंटों खड़े रहते। जेब खर्च के लिए वो कभी कभी फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे। इसी रास्ते उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के कुछ लोगों से हुई और वे फिल्म संसार में बतौर क्लैपर बॉय शामिल हो गए। यहां उन्हें समझ में आया कि अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो फिल्मों से जुड़ा कोई बिजनेस करना होगा। धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। वे छोटी फिल्मों के राइट्स खरीदते और उन्हें छोटे थिएटर्स में लगवाते। कुछ ही सालों में पहलाज नेहलानी बंबई और गुजरात सर्किट के एक बड़े वितरक बन गए। सन

0: 1982 में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की चिराग दीप इंटरनेशनल। उनकी पहली फिल्म थी हथकड़ी, साल 1982। हथकड़ी कामयाब रही और पहलाज नेहलानी फिल्म जगत के दिग्गज प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गए। सन 1985 के आसपास उन्होंने विरार के एक दुबले पतले लड़के को देखा जो कमाल का डांस करता था। उसका नाम था गोविंदा आहूजा। पहलाज नेहलानी ने इस नौजवान को लेकर 1986 में बनाई फिल्म इल्जाम। इस फिल्म ने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में की। 1992 शोला और शबनम, 1993 आंखें,
1: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: पहलाज नेहलानी की प्रमुख फिल्में हैं आग ही आग, पाप की दुनिया और अंदाज 1994।
2: किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो।
0: पहलाज नेहलानी भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। विनम्र नमन। 27 जून को हमसे विदा हो गए तमिल सिनेमा के जाने माने फिल्मकार, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। भारतीय सिनेमा, विशेषकर तमिल और हिंदी सिनेमा के इतिहास में के भाग्यराज एक वन मैन आर्मी रहे। एक ही समय में फिल्म के लेखक, निर्देशक, अभिनेता और संगीतकार, सब कुछ एक साथ। मणिरत्नम से लेकर शोमैन राज कपूर तक पटकथा की उनकी जादुई समझ का लोहा मानते थे। जब रजनीकांत और कमल हासन अपनी अपनी स्टाइल से अभिनय की दुनिया पर राज कर रहे थे, तब के भाग्यराज एक साधारण सीधे साधे और डरपोक आम आदमी के रूप में तमिल सिनेमा में दर्शकों के दिल में उतर गए। के भाग्यराज का जन्म 7 जनवरी 1993 को तमिलनाडु के इरोड जिले के एक साधारण गांव में हुआ था। भाग्यराज का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वे अक्सर स्कूल से भागकर सिनेमा घरों में पाए जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके पिता ने एक बार हताश होकर कह दिया था, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। पिता की ये कड़वी बात उनके दिल को चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे फिल्मी दुनिया में नाम कमाकर सबको दिखा देंगे। कॉलेज के दिनों में असफल होने के बाद अपनी जेब में कुछ रुपए और दिमाग में ढेर सारी कहानियां लेकर वे चेन्नई आ गए। यहां भाग्यराज ने कई हफ्तों तक निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर काटे। उन दिनों तमिल सिनेमा में एक नए निर्देशक अपनी यथार्थवादी फिल्मों से धूम मचा रहे थे। नाम था भारती राजा। भाग्यराज जब भारती राजा से काम मांगने गए तो उन्होंने कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं सुनाया। उन्होंने भारती राजा को अपने गांव के किरदारों और वहां के लोगों के बात करने के अजीबोगरीब लहजे को इतने मजेदार ढंग से सुनाया कि भारती राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने तुरंत के भाग्यराज को अपना सहायक निर्देशक बना दिया। के भाग्यराज ने भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्म 16 वैथिनीले में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। इस फिल्म के कलाकार थे कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। 2 सालों के अंदर भाग्यराज ने अपनी काबिलियत साबित की और साल 1979 में फिल्म सुवरिल्लाद सिथिरंगल में बतौर निर्देशक और अभिनेता के रूप में एक शानदार शुरुआत की। ये फिल्म सुपरहिट रही।
3: நீ வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எந்திரிச்சேன்.
4: நினைச்சேன் பணத்தை காணாமே நினைச்சேன்.
3: ஐயோ சத்தியமா எனக்குன்னு தெரியாது.
5: என்னம்மா
4: இந்த அறையாட்டு பாத்தியாடா, பணத்தை எண்ணி வச்சிருந்தாடா. 30 ரூபாய் காணாமடா, 30 ரூபாய் காணாம்.
3: ஏடா அழகப்பா, நீ தானே போட்டிக்கோள இருந்து பணத்தை எடுத்த.
5: ஏப்பா விளையாடுறியா? நான் காலையில போனோம், இப்பதானே வர்றேன்.
0: अस्सी के दशक में भाग्यराज का नाम फिल्म हिट होने की गारंटी बन गया था। उन्होंने तमिल सिनेमा को 2 ऐसी फिल्में दी जो आज भी फिल्म मेकिंग के छात्रों को दिखाई जाती हैं। मौन गीतोंगल, सन 1981 में आई ये फिल्म पति पत्नी के अहंकार पर बनी एक परिपक्व फिल्म थी।

सन 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म जुदाई के कई हिस्से इसी फिल्म से प्रेरित थे। सन 1983 में के भागीराज की फिल्म आई मुंथा नई मुदिचू। एक शिक्षक और गांव की शरारती लड़की की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।

उनकी कुछ कामयाब फिल्में हैं चिन्नावीडू और इधू नम्मा आलू। बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 और 90 के दशक की हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्में के भाग्यराज के दिमाग की उपज थी। अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म थी आखिरी रास्ता। ये फिल्म असल में के भाग्यराज की फिल्म ओरू कैथियन डायरी की आधिकारिक रीमेक थी। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन तीनों की बागडोर खुद के भाग्यराज ने संभाली थी।

अनिल कपूर की 1983 में आई फिल्म वो सात दिन असल में के भागीराज की कल्ट तमिल फिल्म अंधा सात नाटकल की हूबहू।

गोविंदा की फिल्म राजा बाबू के भागीराज की सुपरहिट तमिल फिल्म रासुकुट्टी की रीमेक थी। जितेंद्र की फिल्म मास्टर जी के भागीराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुथानई मुदुचू पर आधारित थी। 27 जून 2026 को भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। विनम्र नमन।

के भाग्यराज को याद करते हुए हमने जिक्र किया उन्हें पहला मौका देने वाले निर्देशक भारती राजा का। कैसी विडंबना है कि इसी महीने भारती राजा भी हमसे बिछड़ गए। 10 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारती राजा भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने निर्देशकों में से एक हैं जिन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। महान निर्देशक मणिरत्नम से लेकर पटकथा के जादूगर के भाग्यराज तक बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हैं जो भारती राजा को अपनी प्रेरणा मानती रहीं। भारती राजा तमिल सिनेमा के वो क्रांतिकारी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बंद स्टूडियो के शीशों को तोड़कर फिल्मों को गांव की असली मिट्टी, खुली हवा और यथार्थ की खुशबू से सराबोर कर दिया था। 70 के दशक के दक्षिण भारतीय सिनेमा का मतलब था भव्य सेट और स्टूडियो के भीतर पूरी शूटिंग, लेकिन भारती राजा ने आकर तमिल सिनेमा का पूरा भूगोल बदल दिया। भारती राजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को तमिलनाडु के थेनी जिले के एक खूबसूरत गांव अल्ली नगरम में हुआ था। उनका असली नाम था चिन्नासामी। गांव के खेतों, तालाबों, लोकगीतों और ग्रामीण संस्कृति ने उनके मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। वे अक्सर गांव के लोगों के बर्ताव को बहुत बारीकी से देखते थे। फिल्मों में आने से पहले वे स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क की नौकरी पर थे, पर उनका दिल थिएटर में धड़कता था। आखिरकार नौकरी छोड़कर वे चेन्नई आ गए। सन 1977 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई 16 वैथिनिले। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। जब भारती राजा ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से आउटडोर की तो चेन्नई के कई बड़े स्टूडियो मालिकों ने कहा, ये पागल लड़का पूरी

की फिल्म खराब कर देगा। आउटडोर में ना अच्छी लाइटिंग होती है ना आवाज साफ आती है, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में भारती राजा ने कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी को कास्ट किया था।

इस फिल्म में पटकथा के बीताज बादशाह के भाग्यराज उनके सहायक निर्देशक थे। भारती राजा की फिल्में सिर्फ गांव की खूबसूरती नहीं दिखाती, वे गांव में फैली रूढ़िवादिता और जातिवाद पर करारा प्रहार भी करती हैं। किसक के पोगुम रेल 1978 में आई ये फिल्म एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है, जो अलग अलग गांवों में सामाजिक ताने बाने और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है। 1978 में आई सिगप्पू रोजक्कल, ग्रामीण फिल्मों के उस्ताद भारती राजा ने सबको चौंकाते हुए कमल हासन और श्रीदेवी को लेकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई थी। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। 1987 में आई वेदम पुदिथु, ये फिल्म जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड पर तीव्र प्रहार करती है। तमिल सिनेमा में इतिहास रचने के बाद भारती राजा ने हिंदी सिनेमा का रुख किया। 1986 में उन्होंने बनाई सवेरे वाली गाड़ी, ये उनकी तमिल कल्ट फिल्म किसक के पोगुम रेल का हिंदी रीमेक था। कलाकार थे सनी देओल और पूनम ढिल्लो।

0: सन 1980 में भारती राजा ने अपनी फिल्म सिगप्पू रुज़ाक्कल का हिंदी रीमेक किया रेड रोज के नाम से।
1: हम जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: पिछले एक हफ्ते से मेरी बहन घर वापस नहीं लौट।
0: 1984 में आई आज का एमएलए राम अवतार। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शबाना आजमी ने काम किया था। 1983 में आई कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरे के अभिनय वाली फिल्म लवर्स।

1984 में आई कानून क्या करेगा, सितारे थे सुरेश ओबेरॉय और दीप्ति नवल। भारती राजा को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। 1982 में फिल्म अनाथा रथम के लिए, 1986 में फिल्म मुथल मरियाथाई के लिए, 1988 में फिल्म वेदम पुदिथु के लिए, 1985 में फिल्म करुथम्मा के लिए, 1996 में फिल्म अंथी मंथराई के लिए और साल 2001 में कडाल पुक्कल के लिए। भारत सरकार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। विनम्र नमन।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का जुलाई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।
1: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है देवव्रत मिश्र का सितार वादन। वाराणसी के प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्मे देवव्रत मिश्र ने अपनी मां प्रमिला मिश्रा से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और अपने पिता पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के मार्गदर्शन में सितार की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार देवव्रत मिश्र ने ठुमरी परंपरा और बनारस घराने के गायकी की विशिष्ट बारीकियां अपने दादाजी ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र से सीखी। इस प्रभाव ने उनके सितार वादन को एक अनूठी पहचान दी। सितार वादन की शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट और गोल्ड मेडल के साथ संगीत प्रवीण देवव्रत मिश्र ICCR के सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में कई प्रतिष्ठित मंचों पर सितार वादन की सफल प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें तानसेन संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह, सप्तक संगीत समारोह और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला प्रमुख हैं। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे कई देशों में अपने सितार वादन से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। देवव्रत मिश्र को नेशनल यूथ फेस्टिवल अवार्ड, स्वरमणि अलंकरण, काशी रत्न संगीत शिखर सम्मान, BHU कौस्तुभ सम्मान, जर्मन बेस्ड जैज क्रिटिक अवार्ड और वर्ल्ड म्यूजिक विजनरी अवार्ड USA से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार प्रशांत मिश्र। देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का आरंभ राग जोग से कर रहे हैं। विलंबित और द्रुतगत 3 ताल में निबद्ध हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक टुनाइट वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाई देवव्रत मिश्रा। बॉर्न इनटू डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिक घराना ऑफ वाराणसी, देवव्रत मिश्रा received initial music training from his mother Pramila Mishra and underwent formal training in the sitar under the guidance of his father Padmashri Pandit Shivnath Mishra. An A-grade artist of Akashwani, Devvrat Mishra received distinctive lesson of Thumri tradition and vocal style of the Banaras Gharana from his grandfather, the great Thumri exponent Pandit Mahadev Prasad Mishra, an influence that lent a unique identity to his sitar playing. Postgraduate in sitar and Sangeet Praveen with gold medal, Devvrat Mishra is also an empaneled artist of ICCR. He has delivered successful sitar performances on numerous prestigious platforms, both in India and abroad. Notable among these

आर द तानसेन संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह, सप्तक संगीत समारोह एंड द इंटरनेशनल ध्रुपद मेला. ही हैज कैप्टिवेटेड ऑडियंसेस विथ हिज सितार रिसाइटल्स इन मेनी कंट्रीज सच एज USA, कैनेडा, स्पेन, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी. देवव्रत मिश्रा हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल यूथ फेस्टिवल अवार्ड, स्वरमणि अलंकरण, काशी रत्न, संगीत शिखर, BHU कौस्तुप सम्मान, जर्मन बेस्ट जैज क्रिटिक अवार्ड एंड द वर्ल्ड म्यूजिक विजनरी अवार्ड USA. इन टुनाइट्स प्रोग्राम अकम्पनींग हिम ऑन तबला इज प्रशांत मिश्रा, एन ए ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी. देवव्रत मिश्रा इज बिगनिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ राग जोग, विलंबित एंड ध्रुतगत सेट टू तीन ताल.

एंड ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी. देवव्रत मिश्रा इज बिगनिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ राग जोग, विलंबित एंड ध्रुतगत सेट टू तीन ताल.

0: आप सुन रहे थे राग जोग। देवव्रत मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग गोरख कल्याण में सितार वादन। मध्य लय रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत तीन ताल में है।
1: यू जस्ट हर्ड राग जोग। देवव्रत मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितार रिसाइटल इन राग गोरख कल्याण। मध्य लय इज सेट टू रूपक ताल एंड द्रुत इज इन तीन ताल।

0: राग गोरख कल्याण के बाद देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का समापन दादरा ताल में निबद्ध राग मिश्र पीलू में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग गोरख कल्याण, देवव्रत मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र पीलू सेट टू दादरा ताल।

0: ये थी सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र पीलू में धुन। कलाकार थे देवव्रत मिश्र। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आपके साथ तबले पर संगति की प्रशांत मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र पीलू प्लेड ऑन सितार by Devvrat Mishra in tonight's national program of music. Accompanying him on tabla was Prashant Mishra. Earlier recorded at Akashwani Varanasi, this program came to you from Delhi station of Akashwani.
2: Medium wave 438.6 meter अर्थात 684 kilohertz और FM 100.9 megahertz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। अब सुनते हैं मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ये थी मौसम की जानकारी। इसके साथ ही हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

कंट्रोल रूम, हेलो कंट्रोल रूम, दिस इज स्टूडियो. हेलो कंट्रोल रूम, हेलो कंट्रोल रूम, हेलो कंट्रोल रूम, दिस इज माइक नंबर 1 टेस्टिंग एंड द क्लॉक 8:40, 41, 42, 43. This is announcer mic number 2 testing and the clock reads 4:48, 51, 52, 53. Now computer 1.

0: Now computer do.
1: योग से व्यायाम से हमें स्वास्थ्य आयुष और

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 की आषाढ़ माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:28:33 हुए हैं। आज की अपनी पहली सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का अभिवादन करते हैं।

मीडियम वेव 432.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:30 हुए हैं। शुभारंभ।

0: Es que te hetsu ni anmol vichar.
1: जीवन में संतुलन ही सच्ची सफलता का आधार है। जब हम अपने विचारों, समय, कार्य और संबंधों में संतुलन बनाए रखते हैं, तभी जीवन सुखी, शांत और सार्थक बनता है। हर बात में अति से बचना ही बुद्धिमानी है। संतुलन ही श्रेष्ठ मार्ग है।
0: अनमोल विचार के बाद आरंभ होता है भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं मातृवंदना संवेद स्वरों में।